शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से महकते हुए पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में हमेशा यही करते आए हैं, विचार करते हैं भला हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं इस दुनिया में, कैसे हमें जीना चाहिए। ये गंभीर विषय है, आसान नहीं है, ये फन नहीं है, ये अपने आप को समझने की कहानी है। और इसी कहानी के लिए हम कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं जो हमें समझा सकें, एक सरल भाषा में बता सकें भला क्या है आध्यात्म। तो आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहन कृष्णन साहब। मोहन कृष्णन साहब का मैं स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ईश्वर की कृपा से वो कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। मोहन साहब,
2: जय श्री राम, नमस्ते। मैं मोहन कृष्ण अभी चेन्नई वासी हूँ। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में
1: जी,
2: और पढ़ाई वहीं हुआ था, और फिर मैं रिजर्व बैंक में नौकरी ले लिया और सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में सेटल हो गया। और मुझे 30 साल की उम्र से महात्मा इनोके इनके साथ सत्संग का मुझे सौभाग्य मिला और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सका हूं। और समझिए 18 अध्याय भगवत गीता का मैंने एक बहुत ही संत के उनके चरण में बैठ के मैं इसकी अध्ययन किया था, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं सेवानिवृत्ति लिया हूं और लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूं, जो सेवा हो सके वो करता हूं।
1: बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम हमको समझने के लिए है और आप से हमें उस सहायता की अपेक्षा है जिससे हम अपने आप को, हमारे सुनने वाले अपने आप को पहचान सकें। तो एक शब्द है, एक विधा है, एक धारा है जिसको आध्यात्म कहते हैं। तो एक साधारण मनुष्य को समझने के लिए मोहन जी हमें बताएं आध्यात्म क्या समझें हम, अध्यात्म का क्या मतलब हम माने।
2: अध्यात्म को समझ के लिए जरा बारीकी की सोच की जरूरत है। इस संसार में दो ही चीज है, एक है अहम मैं और दूसरा है इदम ये सब
1: जी।
2: इदम जो ये सब है उसे अनात्मा कहते हैं, और अहम जो मैं हूं उसको कहते हैं आत्मा। और ये आत्म विचार को

0: अध्यात्म कहते हैं, उसके साथ जो संबंध बनाए रखना है उसे अध्यात्म कहते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सीधे सीधे सी तौर पे मोहन साहब, क्या मैं ये समझूं कि आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं?
0: हाँ, आत्मा की अध्ययन, आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं।
1: वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यहां पर दोस्तों आपने गौर किया हो, मोहन सर ने दो चीजें बताई, एक तो अपना अध्ययन अध्यात्म, और नहीं अहम एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और दूसरा था इदम। मैं ठीक कह रहा हूं ना सर?
0: जी जी ठीक कह रहे, इदम
1: इदम। मतलब देखिए, ये शब्द मुझे, सच बोलूं मुझे नहीं पता था, और हमारे अच्छा। सुनने वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इदम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि आध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए, और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और आध्यात्म में फर्क है? नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है?
0: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान।
1: जी,
0: अभी जैसे मनुष्य में एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जो क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना, आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया, मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
1: जी जी जी, जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं
0: जी,
1: उचित आचरण करते हुए, हाँ, बस उसी को धर्म कहते हैं,
0: उसी को धर्म कहते हैं।
1: क्या बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
2: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए, सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग।
0: वाओ,
1: हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी
1: मैं किस लिए, वो कहते हैं भज गोविंदम एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही
1: है। उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं ना किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, वही वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अर्थ है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाएं। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले लें और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं, लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है। वो आनंद लेता है ईश्वर की, ये देख ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में लिखते निकलता है बस शिवोहम शिवोहम, शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं, तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़कर भी उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए, करते रहिए, छोड़िएगा नहीं, वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
1: अच्छा, अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
0: ओके,
1: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
0: जी,
1: और मैं बोल रहा हूं समीर जी आप हैं
0: जी जी, जी।
1: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूं, बीबी से पूछ के बताता हूं
0: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं हूं।
1: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूं, इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूं।
0: क्या बात है जी।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
0: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा,
1: उंगली डाल के देखना पड़ेगा। जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुर आदि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूं वो अनात्मा है।
0: ओके जी।
1: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं
0: जी जी जी।
1: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
0: हाँ,
1: ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है। कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
0: जी मैं हूँ। करेक्ट, ब्यूटीफुल।
1: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
0: जी।
1: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
1: अच्छा, यहां दो चीज है। एक तो है विश्वास
0: जी।
1: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइएबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइएबल बिलीफ।
0: वाओ, ओके।
1: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैं तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
0: जी। जी,
1: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं मां के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
0: करेक्ट।
1: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
0: जी।
1: एप्पल, एप्पल जो है, जो सेब जो है कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था। वो वक्त आने, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीज से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
0: सुंदर।
1: और कुछ दिनों के बाद ये जो है, जो प्रकट हुआ, वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट। इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
0: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों। कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी 90.4।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा। लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरी जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चलता हूँ
0: जी,
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूँ तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी।
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट? मैं IAS बनना चाहता था। वो कहते नहीं, IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजिशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल की उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता है ना, ईश्वर अनुग्रह है मुझे गुरु मिले, और गुरु ने मेरी सोच, मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते हैं आयो पावम, बेचारा।
0: ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह, मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर, और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई, रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट। और माई एक्सपेक्टेशन इज, मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीज है। एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो

0: कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूँ, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है। कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है हमारी गैलेक्सी, या इससे बाहर भी और कुछ है
0: जी?
1: ये नक्षत्र लोक क्या है, वो सोच उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है
0: जी।
1: अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है? इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।
0: तो यार जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: तो जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने, और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं।
0: जी
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+b होल स्क्वायर सीखना चाहिए। तो
0: सही
1: आप
0: बात है।
1: ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा।
0: जी।
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही। उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप 1 कर्म योग, स्टेप 2 उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स एब्सोल्युटली जरूरत है। कर्म योग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन।
0: जी
1: इसमें सब कुछ आ जाते हैं।
0: जी श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
1: निध्यासन,
0: नित्यासन।
1: निधि निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या,
0: अच्छा
1: निधि ध्यासन।
0: निधि ध्यासन।
1: निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर धी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
0: ओके ओके ऑलराइट। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने 3 स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया एलजेब्रा को समझने के लिए, पहले आप a+b होल स्क्वायर तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एलजेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
1: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ,
0: जी
1: बाकी सब ईश्वर कृपा है।
0: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा। ईश्वर कृपा गुरु है, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे 2 शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है,
0: थैंक यू
1: क्योंकि
0: सर।
1: जरा टेक्निकल है, जरा
0: जी
1: समझने में।
0: ऑफ कोर्स।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो का एक बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम, जिंदगी के रंग पेट्स के संग। आज हमारे साथ हैं मेघा चंद्रन जी, जो फाउंडर हैं #AdoptDon'tShop की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित किया है। कभी जो डॉग्स को पसंद नहीं करती थी, मेघा जी आज सैकड़ों अनंत पपीज की माँ हैं और 500 से ज्यादा पप्स को प्यार भरा घर दिलाने में अपना योगदान दे चुकी हैं। उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है क्रिश, जिससे एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बदल दिया। तो आइए स्वागत करते हैं मेघा जी का, और सुनते हैं प्यार, करुणा और इंसानियत से भरी उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी। तो मेघा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: गुड इवनिंग। पेट्स या डॉग्स बोलो, मेरे दिल के बहुत करीब है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी।
1: वी आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड मैम। आपकी जर्नी आज से एक डेकेड पहले शुरू हुई और आपने इतनी सारी चीजें अचीव करी हैं। ओवर 500 पेट्स को, पप्स को आपने फॉस्टर होम्स प्रोवाइड करवाए हैं, एंड आपकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है #AdoptDon'tShop, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में जाना। तो आप मुझे सबसे पहले आपकी जो पेट लाने की, घर में आपके पेट आने की जो जर्नी थी, आपका वो डिसीजन क्या था, किस तरह से आपने वो डिसाइड किया, आपका पहला पेट कौन था, कैसा था, कैसे उसका नाम रखा गया, उसकी अगर कोई बैक स्टोरी हो तो हमारे साथ साझा करें।
2: एक डिकेड 10 साल पहले आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलती मुझे डॉग्स से एलर्जी है, या फिर मुझे डॉग्स इतने अच्छे नहीं लगते, या उनसे डर लगता है। सो क्योंकि तब तक मैं बोलूंगी आई वाज रियली इग्नोरेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ दैट आई कुड हैव हैड। बट एक क्रिसमस इवनिंग 2016 के क्रिसमस इवनिंग पे एक पपी जो हमारे कार के नीचे पास हुआ, बस उसको मेरे हस्बैंड ने जब उठाया एंड उसको घर लेके आए, बाद में हमने बहुत ट्राई किया अगर किसी को चाहिए उसी दिन रात को, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक करता है, हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, रेस्क्यू के बारे में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पेट रेस्क्यू करता है या पपीज को रेस्क्यू करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कुछ नहीं पता था। उसको घर लेके आए एंड 25 दिसंबर से 31st जो 6 दिन वो हमारे घर पे रहा, तभी थोड़ा फासला कम हुआ मेरे और डॉग के बीच में। मेरे हस्बैंड उसको ध्यान रख रहे थे, बहुत छोटा पपी था, 20-25 दिन का। एंड जैसे वो हमें क्रिसमस इवनिंग को मिला था और उसके फोरहेड पे एक अच्छा सा तिलक जैसा बना हुआ था व्हाइट कलर का, सो माई हस्बैंड्स थियरी वॉज कृष्णा कम क्राइस्ट, सो उसका नाम क्रिश रखा हमने। एंड वो क्रिश जाते जाते जब देखा, एंड आई वॉज इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माई प्रेगनेंसी, मदरहुड की इंस्टिंक्ट, पता ही नहीं चला कब वो मेरा पहला बच्चा हो गया। एंड ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। जो क्रिश आया उसके बारे में पता चला ऐसे कितने सारे पप्पी होते होंगे जिनको घर नहीं मिलता है, जो अपने माँ से बिछड़ गए होंगे, अकेले सरवाइव नहीं कर पाते, इतने छोटे कि वो बिजी स्ट्रीट पे, रोड पे सरवाइव नहीं कर पाते, उनका क्या होता होगा। क्रिश को हम मिले, हमको क्रिश मिला, हमने एक दूसरे को रेस्क्यू किया, अच्छा हुआ। लेकिन इसके ये एक आई ओपनिंग जर्नी था टू बिगिन दिस पार्ट। उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक। जब ही जो पपी मिला माँ से बिछड़ा हुआ जो एक डेढ़ महीने से छोटा है, सर्वाइव नहीं कर सकता है, अकेले है, बिजी स्ट्रीट में है, एट अ टाइम उसको मैं पिक करने लगी, उसको फॉस्टर करने लगी और एडॉप्शन डालने लगी। जैसे एडॉप्शन डालने लगी तभी एक चीज आता था कि इसको मैं अच्छे से हम लाते पालते वैक्सीनेट करते सेफ्टी प्रोवाइड करते और देते तब ऐसा लगता है कि दिल का टुकड़ा दे रहे हो। तो ये जिनको देते हैं हम, जो घर पे वो जाता है वो फैमिली का पार्ट बना के रखेंगे, पूरी लाइफ देखेंगे, तभी वो उसके लिए सारे एडॉप्शन गाइडलाइंस जो है AWBI के वेबसाइट पे है उसको फॉलो किया, पढ़ा, उसको समझ के उसको फॉलो करके देने लगे। आज अगर मुड़ के देखूं तो ये 500 पेट्स जो भी घर में गए, मुझे वो फैमिली सारे पता है, उन पेट्स उन्होंने पेट्स को कैसे रखा है, वो कैसा हिस्सा है, वो फैमिली हमारे लाइफ के कैसे हिस्से बन गए। इट इज ब्यूटिफुल जर्नी टू बी फ्रैंक। एंड एक ही था कि जो स्ट्रीट पे इतने ठोकर खा के बिना खाना पीना कभी इतने मौसम के उतार चढ़ाव में ऐसे सर्वाइव करते, वही इंडी डॉग को थोड़ा प्यार और सेफ शेल्टर एंड फूड अगर मिलता है, हेल्दी फूड एंड वाटर, देन दे कैन डू ब्यूटिफुल एज अ पेट। सो व्हाई नॉट टू बिगिन दिस, वही एक मोटो था। एंड क्रिस के आने से पहले लाइफ इतना ही था कि ऑफिस गए, फैमिली, हमारा त्योहार, हमारा काम, यू नो नॉर्मल लाइफ व्हाट यू कॉल ऑफ एन ह्यूमन। In fact, I would say I was a pretty selfish cocoon life of myself. ये बोल सकती हूँ मैं। उसके आने के बाद पता चला लाइफ में पर्पस क्या है, he defined a purpose for it. एंड ये भी उसने मुझे सिखाया कि सिर्फ लेना या मांगना या उम्मीद रखना नहीं होता है, देना भी आना चाहिए। ये सोसाइटी को, ये इसमें हम क्या देते हैं, हम किसको देते हैं, हम किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी नेसेसरी है। एंड मैंने टू डू अ लिटिल बिट बींग अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, मैंने ये रास्ता चुना। नाउ दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऑल दिस पप्स एंड रेस्क्यूड डॉग्स।
3: ब्यूटिफुल मैम, कितनी यूनिक जर्नी थी। कहाँ आपको पेट्स पसंद नहीं थे, डॉग्स पसंद नहीं थे, एंड देन वन रेस्क्यूड पप चेंज टू एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ। और जैसे आपने बहुत एक ब्यूटिफुल लाइन कही, आपने उसे रेस्क्यू किया और उसने भी आपको रेस्क्यू किया। तो क्रिश, एक तरह से आई थिंक इट वॉज एक्चुअली जस्ट गॉड सेंट, जो आपकी लाइफ में आना ही था, वो डेस्टिन था, ताकि आपको अपनी लाइफ का ये पर्पस मिल सके, विच इज परहैप्स द बिगेस्ट एंड द ट्रूएस्ट पर्पस एनीबडी कैन डू एंड गिव इन दिस लाइफ, टू सर्व दीज एनिमल्स, जो बोल नहीं सकते, जो खुद के लिए कर नहीं सकते। और इतने सारे देन यू नो पप्स को घर दिलवाना और इतना बारीकी से इस काम को करना, इतने एहसास के साथ, इतनी सटीकता के साथ। तो जो रूल्स आपने हमें मेंशन किए वो क्या कहते हैं, अगर अडॉप्शन के कुछ रूल्स हों वो अगर आप साझा करना चाहें तो वो क्या कहते हैं, किस तरह से ये, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू हुई, हैश अडॉप्ट डोंट शॉप, ये किस तरह से इसका बीज डला, इसका नाम आया, अगर आप कुछ बताना चाहें।
2: डेफिनेटली कोई भी प्रोसेस जब हम ज्यादा इसमें करना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ प्रोसेस। और ये इसीलिए क्योंकि रेस्क्यू करना एक है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनकी पूरी जिंदगी हमारे हाथों में होती है। वो कहाँ सेफली रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके घर में पलते हैं, और कैसी फैमिलीज है जो उनको अच्छे से रखेगी, कहीं अबेंडन नहीं करेगी, आधे से पालने के बाद छोड़ नहीं देंगे रोड पे या फिर किसी और को नहीं दे देंगे। ये सब नेसेसरी था कि उनकी पूरी लाइफ की सेफ्टी हम कवर करें। तब लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, रूल्स सेट हो, और हमारे इंडियन AWBI का इतना ब्यूटीफुल सेट आउट ऑल रूल्स है, वो सब पढ़ के हम उसको फॉलो करके उसके हिसाब से चले। तो
3: अगर इसका फुल फॉर्म हम जान सके मैम थोड़ा सा,
2: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज AWBI, एंड करेक्ट, ऑनलाइन यू कैन चेक ओवर देयर, वी हैव अ गुड गाइडलाइन सेट एंड टाइमली रिव्यूड। उसको सब नॉर्मल पब्लिक को भी ये पढ़ना चाहिए। मैं अगर आप मुझे पूछो तो बच्चों को ये वाला इवन स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको पता चले एनिमल्स के क्या राइट है, उनके लिए हम कैसे वॉइस रेज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम।
3: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
2: एंड बस यही प्रोसेस सेट करने के बाद कोविड का टाइम आया. हाँ, कोविड में बहुत सारों को पेट चाहिए था, लेकिन कौन कैसे रखेगा, वो सीरियस है नहीं है. कोविड हटने के बाद, कोविड का डर उठने के बाद, सेफ्टी जोन में आने के बाद, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे ये पेट पेरेंटिंग की जर्नी, ये सब देखना बहुत जरूरी था. इसीलिए हमने तभी वो सेट किया ये ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई ऑल्सो बिलीव इनको एक जगह पे, ऐसे एक रूम में एक जगह पे जमा करके उनको ऐसे रख दो, और उनका क्या बोलते हैं, ऐसे सिर्फ खाना पीना दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं चलता है. ये छोटे पपीज थे, उनका ऐसे ही देखभाल होता है, उनकी टेम्परेचर मापी जाती है, उनको भी फीडिंग बॉटल फीड की जरूरत होती है, उनका सोना, उनका इनपुट आउटपुट, एवरीथिंग वॉज हेल्थ वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल टू मेक देम सर्वाइव फर्स्ट 1 or 2 months. इसीलिए इंडिविजुअल फैमिलीज को ढूंढना पड़ा हमें, जो पैसों के लिए या इसके लिए नहीं, बट दिल से हेल्प करना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे. तो बहुत सारे वॉलंटियर फैमिलीज आए आगे, ऐसे ही 4-5 वॉलंटियर फैमिलीज, वो लेडीज, वो कपल्स आगे आए टू फॉस्टर देम. वो 1-2 महीने रखते हैं इनको, अच्छे से पालते हैं, खाना पीना इनको तंदुरुस्त बनाते हैं, पहला वैक्सीन हम देते हैं, देखते हैं फॉस्टर फैमिली से उनके बारे में पूछते हैं, पपी कैसा है, हाइपर है, खेलता है, दांत आया है, सोता है, उसको और कोई मेडिकल या ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या है, सब पहले से उसको ह्यूमन हैबिटेट में प्रैक्टिस करवा के बाद में हम परमानेंट फैमिली या अडॉप्टिंग फैमिली ढूंढते हैं, सो दैट अडॉप्ट करने वाले का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको कोई बीमार
3: शॉकर्स नहीं मिले,
2: शॉक नहीं, एग्जैक्टली शौक ना हो, उनको भी कोई दिल दुखने वाली घटनाएं ना हो, जैसे वो गया सडनली उनको पता नहीं है उसके हेल्थ के बारे में. ये सो हम वैक्सीन देने के बाद जब हमें गारंटी होती है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, दे विल सर्वाइव एंड थ्राइव हेल्दी इन द परमानेंट फैमिली, देन वी स्टार्टेड. सो डिफाइनिंग दिस प्रोसेस वॉज एन एक्सपीरियंस जो हमने सीखा.
3: और ये बहुत सही बात आपने कही कि इसके रूल्स को, इसके गाइडलाइंस को, इसके एसओपीज को एक्चुअली स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमें सच में एट दिस एज ऑल्सो मुझे नहीं पता कि एनिमल वेलफेयर के क्या राइट्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, किनको आप इन्वोक कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को परेशान करता है, उन पे क्रूल्टी करता है, उनको स्टोन थ्रोइंग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, बट हम बिल्कुल अनअवेयर है एज सिटीजन्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमें हमारे साथ साझा की कि हम जाएं और पढ़ें ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको एक बार स्क्रोल थ्रू करें और समझें कि एनिमल्स के क्या राइट्स हैं, ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें और एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें स्ट्रेस के लिए. आगे चलते हैं मैम थोड़ी सी मस्ती भरी बातों के बीच. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिश के साथ, क्रिश के आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, और उसके साथ कौन से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स थे जो आज भी आपकी आंखों में खुशी और आंसू साथ ले आते हैं?
2: हाँ, क्रिश की लाइफ स्पैन तो कम थी, ही स्टेड विद अस ओनली 6.5 years.
3: ओके,
2: बट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे अच्छी तरीके से याद है जब माई डॉटर वॉज बॉर्न, क्रिश वॉज अराउंड 8 months. और उसके लिए वो ऐसा था कि कोई नया खिलौना है या क्या है, ये हाथ पर हिलाती है, क्या करती है बच्ची, क्या कर रही है. एंड लेकिन बस उनका एक डिफरेंट बॉन्ड होता है बच्चों का और डॉग्स का. जब मेरी डॉटर को मैं ऐसे सुला के बेड पे, व्हेन शी वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड, 3 to 4 months, क्रिश उसके बाजू में ही बैठा रहता है. वो थोड़ा सा बेड के कॉर्नर में आती तो वो बाक करता, मुझ पे चिल्लाता कि ध्यान दो जल्दी से. उसका थोड़ा सा ऐसे हिलती, वो थोड़े रोने जैसे होती, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता क्या हो रहा है. हम बोलते हैं कि बच्चों को नुकसान हो सकता है, काट लेंगे, ये वो, ये बिल्कुल गलत है. बच्चों को अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना सिखाओ, और उनको खाना पीना वैक्सीन दो, उनको भी एक सेफ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करो. बच्चे और डॉग्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या बच्चे और कोई भी एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो देखने की खुशी कुछ और होती है. वो आई कैन, माय वर्ड्स विल फेल, आई कैन नॉट पुट प्रॉपरली इन द वर्ड्स आई कैन से, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू लुक एट देम. तो
4: टू बी पार्ट ऑफ टुगेदर।
3: जी जी, अभी हम एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनेंगे इन प्यारी बातों के बीच, और उसके बाद मैं इसी पे आना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि जब आपके घर में क्रिश आया तब उस टाइम आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो प्रैक्टिकली योर बेबी एंड क्रिश ग्रू टुगेदर। तो मैं ये बहुत कीनली जानना चाहूंगी कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न के आसपास एक पेट का रहना कैसा होता है, कैसे वो बड़े होते हैं। बट पहले हम एक गीत सुनेंगे आपकी फरमाइश पे। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: मेरा फेवरेट गीत होगा वो चार्ली का, चार्ली 777।
3: गीत का नाम?
4: यू कैन प्ले एनी सॉन्ग ऑफ चार्ली, वो इमोशनल ट्रैक जो है चार्ली का।
3: ओके, तो चलिए सुनते हैं चार्ली 777 का ये ब्यूटीफुल सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मेघा मैम। आगे चलते हैं। जैसे मैंने सॉन्ग के ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी एंड देन एक चाइल्ड के अराउंड एक पेट का होना किस तरह से उसको डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं बच्चों के अराउंड पेट्स को, जब यू नो फॉर एग्जाम्पल अ मदर इज एक्सपेक्टिंग, तो बहुत घर में डिस्कशन होता है कि अगर ऑलरेडी एक पेट है तो यू नो शुड वी डू अवे विद द पेट, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या वो उसकी ग्रोइंग अप के लिए अच्छा होगा। मैं बहुत पर्सनली एक फ्रेंड को जानती हूँ जिन्होंने ये पूरा यू नो ये डायलेमा सफर किया और अल्टीमेटली उनको अपने पेट से दूर होना पड़ा, उनको अपने पेट को किसी को अडॉप्शन में देना पड़ा जब वो खुद प्रेग्नेंट थे। तो बहुत सैड था वो मोमेंट उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए जिनके साथ वो पेट बड़ा हुआ। तो इस पे अगर आप थोड़ा लाइट थ्रो करें मैम।
1: डेफिनेटली, मैं एक चीज में बहुत लकी थी। माय गायनेकोलॉजिस्ट वाज वेरी वेरी नेचर ओरिएंटेड, एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अलोंग 30-40 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस शी हैड इन हर फील्ड। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, जो नेचर करेगा वो कोई दवाई नहीं कर सकती है। सो वॉट एवर वी डू मेडिकली इन मॉडर्न मेडिसिन और दिस, अगर आपको याद हो इफ यू गो बियॉन्ड 50-80 इयर्स के पहले, लेडीज गाय भैंस बकरिया बिल्ली कुत्ते इन सब के बीच में तंदुरुस्ती से घर का काम करते हुए उनकी डिलीवरीज काफी हेल्दी एंड पौष्टिक होती थी। हमारे पास अभी मॉडर्न मेडिसिन का एक स्ट्रेंथ है, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक है, मोर नॉलेज शेयर करने वाला सोशल मीडिया है, सर्कल्स है, सपोर्टिव सर्कल्स है, सब है। उसमें एक चीज ये नेचर का भी एक ऐड कर लो और भी ब्यूटीफुल हो जाता है मदरहुड जर्नी। एक चीज इम्पोर्टेंट है, जब आसपास हो वो सिर्फ डॉग्स का नहीं, कोई भी हो, इवन हमारे घर में किसी को खांसी होती है, फैमिली मेंबर्स को खांसी होती है तो बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ा दूर रहो क्योंकि नाजुक होता है ये समय। सो हम क्या उनको बाहर भेज देंगे? नहीं, अगर हमारे घर में कोई ऐसा हो जिनको टर्मिनल इलनेस हो, तभी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या उनको कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रोन टू एलर्जीज हो, हम क्या उनको दूर कर देंगे? नहीं, पेट्स फैमिली का हिस्सा है, उनको ये खुशी में शामिल करना हमारा ड्यूटी है। और यहीं से फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉरालिटी वो न्यूबॉर्न के लिए स्टार्ट होता है। एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बच्चों को बच्चों के साथ रख के ही पाला जा सकता है, उसको बच्चा समझना पड़ता है घर का और वैसे ही, और उसको भी हेल्दी बनाना पड़ता है, उसको वैक्सीनेट करके रखो, उसको साफ करो। हाँ, बाल दिखते हैं बच्चों के आसपास या प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास बाल है, हेयर फॉल है, ये सब सुनते हैं, उनका ग्रूम कौन करेगा? आज हमारे बच्चों का ग्रूमिंग कौन करता है?

0: हम ही करते ना, उनके बाल तो मैं ही बनाती हूँ, मेरी लड़की के बाल मैं ही बनाती हूँ, उसके बाल ठीक हो वो नहाती है, वो मेरा ड्यूटी है, तो मेरे पेट्स नहाते हैं वो साफ है, उनके वो भी हेल्दी है, वो भी हाइजीनिक है, उसकी ड्यूटी भी मेरी हुई, हम उनको तो कंप्लेन नहीं कर सकते. सो यस, दिस इज अ बिगिनिंग, इट्स अ लेसन, इट्स अ जर्नी,
1: इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज, आई थिंक इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज. यस यस, ब्यूटीफुल. तो ऐसा कभी हुआ कि आपके आपका चाइल्ड जब बड़ा हुआ, आपकी डॉटर जब बड़ी हुई, तो उसने कुछ लेसन्स लर्न किए, क्योंकि नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है जब घर में पेट होता है, तो ऐसे कोई मोमेंट्स जहां पे आपको लगा कि आपके बच्चों में बहुत सारी और वैल्यूज ऐड हुई हैं उस पेट के घर में आने से, तो अगर वो शेयर करना चाहें.
0: हाँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. क्रिश के आने के बाद एक बार ऐसा हुआ, 15-20 दिन समझ लो, क्रिसमस के बाद 20 डेज अप्रोक्सीमेटली 15 जैन को एक कॉल आया मुझे कि किसी ने पटाखे जला के एक सीनियर डॉग, 4-5 ईयर्स ओल्ड डॉग को उसको हार्म किया है. उसको 30 डिग्रीज पूरे बर्न्स हो गए, चमड़ी निकल गई है ये. एंड तभी कुछ तो लगा, बड़े कुत्तों को छूने की अभी भी मुझे आदत नहीं थी. ऐसे 20 दिन आ गया था, वो मेरे साथ बैठता था, गोदी में बैठता था, एक एक बॉन्डिंग बिगिन हो गई थी. लेकिन बड़े कुत्तों को कैसे रेस्क्यू करते, उतनी हिम्मत होगी मेरे में, वो नहीं पता था. बस और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, मैं ऐसे ही ऑटो लेके चली गई, वहां पे उठा के उसको ऑटो में डाला एंड उसको वेटनरी के पास ले गई. एंड जब मैं उसको उठा रही थी, थोड़े लोगों ने हेल्प किया और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया, मैडम ध्यान से, ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये तो ट्रक्स के पीछे सब भागता है, ये दो चार लोगों को भी उसने काटा है, यहाँ यहीं पे रहता है, सब ध्यान से करो. मंदिर के बैक गेट में वो सोया हुआ था, बनशंकर के मंदिर के, और मैं उठा के उसको ले गई. आप मानो या ना मानो, उसका फेस उसने मेरे तरफ ही रखा था. एक भी बार उसने दांत दिखाया, दांत बताया, कुछ नहीं. उसको पता था कि उसको हेल्प चाहिए और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ. काफी समझदार होते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. उस दिन ले गई, उसको रेस्क्यू किया, 20-25 दिन हुए उसको ठीक होते, खाना खाते स्टार्ट करते, ड्रिप्स से बाहर निकलते, उसको स्लो रिकवरी थी बट ही रिकवर्ड. एंड पूरी प्रेगनेंसी आफ्टरनून जब मैं खाना खाती थी, अपना ऑफिस का काम खत्म करके एक घंटे का ब्रेक लेके मैं अपना खाना खाती थी, तो मैं ऑटो पकड़ के जाती, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे, उसके लिए टिफिन कैरियर ले जाती, उसके साथ बैठती, उसको खिलाती और आती. और ये मैंने तब तक किया जब तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा गोइंग फॉर अ डिलीवरी. डिलीवरी टाइम पे भी मैं बता के गई थी अपने हस्बैंड को कि 3-4 दिन मैंने आया इन हॉस्पिटल, आप फीड करो उसको, वो ये देखेगा. एंड एक ब्यूटीफुल मेमोरी है, वो बोलते हैं ना 25 दिन या 41 डेज के बाद ही प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे को निकलना चाहिए. सो जब मंदिर जाने का परमिशन मिला बच्चे को, उसको मैं 41st डे पे, After my daughter was 41 days old, when I took her to temple, उस दिन रात को मैंने उसको बोला, आज पहली बार एक स्पेशल लाइफ फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी करके. एंड आई टुक हर ऑन दैट डे नाइट टू मीट द डॉग. That dog which I had rescued, and every day night my husband used to feed, and afternoon I used to feed. तब तक वो काफी हेल्दी हो चुका था, 6-7 मंथ्स हमने उसका केयर किया था. एंड वो इतना खुश हो गया मुझे और पपी को देख के, क्रिश को देख के, आना को देख के, वो ऐसे राउंड राउंड घूम के खुशी अपनी जाहिर कर रहा था. मैंने उसको बच्चा बताया, ही लिक्ड हर लेग. एंड व्हेन माय डॉटर बिगेन टू वॉक, अंडरस्टैंड एंड टॉक, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम रोज रात को बनशंकरी में खाना खिलाने जाते हैं रोड पे, वो मेन स्ट्रीट जो है टेम्पल वाला रोड वहां पे. सो वो जब बोलना उसने शुरू किया, उसने पहले ही यही चिल्लाना स्टार्ट किया. वो भी हमारे साथ रोज रात को आती थी, हम उसको बेबी सीट में बिठाते, वो देखती कि सारे डॉग्स आते हैं खाना खाते, वो लोग उसको देखते खेलते, कभी कभी कार का डोर में ओपन रखती, वो आके मिलके जाते बच्चे से. एक दिन एक एपिसोड नहीं हुआ उसके साथ, एक काटना, एक दांत लगना, कुछ नहीं हुआ. वो सबको छूती थी, मैं उसका हाथ साफ करती थी पूरा फीडिंग होने के बाद, उसने अगर उनको टच किया उसको क्लीन करती थी, इनको भी बाहर पूरी क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते थे, बट उनको उनकी बॉन्डिंग बनाने दिया. एंड वो जाके रोड पे जोर से चिल्लाती, उसका नाम हमने राजा रखा था क्योंकि पंचशंक्रि का राजा जैसा था वो, व्हाट यू से अल्फा अल्फा नेचर
1: अल्फा डॉग
0: अल्फा डॉग, एंड इसलिए वो राजा अन्ना करके बुलाती, वो जो उसे चिल्लाती छोटी बच्ची थी राजा अन्ना करके जो से, और राजा ऐसे आता कि मेरा मेरे लिए आए, उसको इतना अच्छा लगता, वो भाग के आता कार के पास। यस, तो ये एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है जो बच्चे और डॉग्स में हमें देखने के लिए मिलता है, और ये पूरा सब क्रेडिट जाता है क्रिश को, उसी ने मुझे सिखाया एंड उसी ने आर्ना को सिखाया, आर्ना इज माय डॉटर, सो यस उसी ने उसको भी सिखाया।
1: राइट राइट, बिग हेलो एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू आर्ना, जिनकी पास इतनी खूबसूरत, इतनी रेजिलियंट, इतनी ब्रेव, इतनी करेजस मदर है, जो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग है और इतनी क्लियर है अपने थॉट्स और अपने पर्पस के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस आर्ना, आई होप यू ऑल्सो ग्रो अप टू बी एज अमेजिंग एज योर मदर, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम entire SN Radio family. And क्या राजा अभी भी है मैम? Is he still there?
0: राजा अभी भी है।
1: Oh, amazing.
0: और 9 years हम रोज राजा से मिलने जाते थे।
1: What a bond.
0: 3 साल पहले ऐसा हुआ कि उसके उसको हर्ट हुआ था, पूरी रात हम घूमे 4 बजे तक सुबह ढूंढते रहे, वो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ वो नहीं मिला, थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन सुबह पता चला किसी ने उसको नियर बाय वेटरनरी में एडमिट किया था क्योंकि उसको एक्सीडेंट होके उसको आंखों में लग गया था। आज वो लव फॉर फॉरगॉटन नाम के एक शेल्टर में रहता है। मंथली वी हैव पैसिवली अडॉप्टेड हिम, सो महीने में 2 से 3 बार हम वहां जाते हैं, कोई भी त्योहार हो, आर्ना का बर्थडे हो, मेरे दूसरे पेट्स का बर्थडे हो, हमारा वहां जाना होता है। कभी भी मेरा मन थोड़ा भारी लगता है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस होता है रेगुलर लाइफस्टाइल से पूरा, तो जाके बैठना है किसी फ्रेंड के साथ, तो मैं राजा के साथ जाके LFF में बैठती हूँ। मेरी बेटी को अगर आप संडे सैटरडे पूछोगे कि फ्री हो कहीं घूमने जाना क्या, तो वो पहले यही बोलेगी LFF जाना है, राजा से मिलना है, सारे फ्रेंड्स से मिलना है। उसको आदत है शेल्टर विजिट करना, वहां पे जाना, खेलना। तो राजा अभी भी है एंड राजा आज भी वही खुशी से देखता है बच्चे को, वो दोनों बहुत खेलते हैं, वो राजा को इतना प्रेम से ऐसे घुमाती है, खेलती है, आज भी वो उसको राजा अन्ना बुलाती है, एंड स्टिल दैट बॉन्डिंग कंटिन्यूज एज इट इज, एंड इट्स नाइस टू सी 9 years एंड टचवुड, आई वांट हिम टू बी हेल्दी।
1: या टचवुड, लॉट्स ऑफ लव टू राजा अन्ना एंड लॉट्स ऑफ good times to Raja Anna, may his brave soul, may his brave spirit maintain and he live to be 10 more years. And बहुत ही खूबसूरत आपने एनेक्डोट हमारे साथ साझा किया, कैसे आपकी डॉटर और राजा अन्ना और क्रिस सभी साथ में बड़े हुए और बहुत ही ब्यूटिफुल मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए। मैम अगर मैं पेट केयर के लिए, अब बहुत सारे लोग जैसे अडॉप्ट भी करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए होंगे इन 10 सालों में, तो कोई अगर ऐसी टिप्स हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जो हर पेट पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी होंगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी पेट केयर की बातें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, अगर वो आप शेयर करें?
0: वन थिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल इज कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स जैसे हम अपने पेरेंट्स को कभी लाइफ टाइम छोड़ नहीं सकते, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हमारे भाई बहनों को नहीं छोड़ सकते, हमारे अच्छे फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते, वही भावना अगर आपको आपके पेट के प्रति है, लाने के बाद आप वही कमिटमेंट मेंटेन करोगे, आप देश बदलते हो, शहर बदलते हो, जॉब बदलते हो, कुछ भी होता है, आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट सेफ प्लेस भी रखोगे, कल को हमें कुछ हो गया बच्चों को कौन देखेगा, जैसे हम पेरेंट्स से उठते हैं वैसे ही वो पेट को कौन देखेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, ऑल ऑल्टरनेटिव, ये कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि एक बार पेट होने के बाद वो शेल्टर्स में या फिर स्ट्रीट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्ट्रीट पे पलने वाले बच्चे पहले से स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो पैक में पलते हैं, पैक उनको सिखाता है और उनको वो ट्रिक्स एंड ये सब आते हैं, जो पेट होते हैं वो ट्रिक्स नहीं सीखे होते उन्होंने। सडनली ऐसा मत समझो कि हाँ इंडियन डॉग है, हिंदी है, छोड़ दो गली के कुत्तों के साथ रह लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो कुत्ते इसको नहीं अपनाते, ये स्ट्रीट को नहीं अपना पाएगा, एक व्हीकल या एक ट्रैफिक से टकरा जाएगा सडनली, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो एक ही चीज है, वो आपको पूरी लाइफ कमिट करके वो आपके साथ रह रहा है, वो कमिटमेंट को हमें भी रखना है. सो यस, कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल इन दिस केस.
1: एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली आंसर. बहुत विजन के साथ आपने इसका आंसर दिया, सरल सटीक और बिल्कुल विजनरी, कि ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. आज लिया, शौक पूरा किया और कल वापस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है. तो मैम चलिए सुनते हैं एक और गीत आपकी फरमाइश पे, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी बातों के बीच. बताएं.
0: श्योर. ये पूरा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ माई मदरहुड. सो आई समटाइम व्हेन आई रिमेम्बर क्रिश, फ्यू सॉन्ग्स आई रिमेम्बर, दे पुल माई मदरहुड स्ट्रिंग्स, यू नो, वेरी स्ट्रांगली. एंड वन इज दैट गगनतू फ्रॉम KGF.
1: ओ वाओ, ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो चलिए सुनते हैं गगनतू फ्रॉम KGF.

0: आगे चलते हैं मैम, क्या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है जब घर में ऐसा लो सा माहौल था और उस समय आपके पेट्स ने, आपके जो अडॉप्टेड पेट्स हैं या जो आपके सेंटर में पेट्स आते हैं उनके साथ उन्होंने कभी सेंस की हो वो एनर्जी कि आप लो हैं या घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो कुछ ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है कि आपके पेट ने कोशिश की हो आपको यू नो टू स्प्रिंग यू बैक इन टू लाइफ एंड टू चीयर यू अप, तो ऐसा कुछ?
1: डेफिनेटली क्रिश के जाने के बाद थोड़ा अजीब सा था. एंड जब क्रिश 2 साल का हो रहा था और आधना 1 साल की हो रही थी क्लोज टू, तभी एक हमारे लाइफ में एक चुलबुली सी एंट्री हुई थी टिकटॉक की.
0: टिकटॉक
1: यस, इंडी फीमेल गर्ल. ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मंडे था, शिवजी के हम दोनों शिवजी के पूजा में बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड. एंड क्विकली हमने 5-10 मिनट्स में पूजा खत्म कर, निकल नहीं पा रहे थे कि कॉल आया कि एक पप्पी रोड पे घुस गया, बड़े डॉग्स उसको घेर के खड़े, क्या करना है करके एक नेबर से कॉल आया. तो नीचे गए, तभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, ऑफिस के लिए निकल रहे थे. उसको उठा के रूम में रखा, हमारे बेडरूम में खाना पानी सब रखा और डोर क्लोज किया एंड हम निकल गए. एंड ऑफिस में शाम को आके देखा, हाँ रूम तो क्लीन करना पड़ा, बट बाद में पता चला फीमेल डॉग है, 2 मंथ्स ओल्ड, फुल कंप्लीट जेड ब्लैक एंड कोट एंड वेरी वेरी प्लेफुल, वेरी वेरी नॉटी. एंड ऑपोजिट एंट्री क्रिश, एक सोफिस्टिकेटेड पूरा ऐसा ह्यूमनाइज्ड बच्चा जैसा पला था, क्योंकि और ये ऑलरेडी शी वाज इन दबांग गर्ल
0: लाइक
1: दैट. सो एक महीना रखा एंड मैंने उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया एडॉप्शन के लिए. 2-3 बहुत अच्छी फैमिलीज आई. हर बार जब फैमिली आती तब मेरे हस्बैंड बोलते नहीं ये नहीं, नेक्स्ट देखते, ये नहीं कब, थोड़े दिन बाद देखते थोड़े दिन. फाइनली मुझे उनको पूछना पड़ा कि वाई ही इज अवॉइडिंग हर एडॉप्शन व्हेन वी आर गेटिंग अ गुड फैमिलीज. तब उन्होंने बोला एक वी बोथ वांटेड ऑलवेज टू गिव होम टू अ डॉटर अ फीमेल, वी वांटेड टू अडॉप्ट. एंड उन्होंने बोला 2 पैर हुए तो क्या हुआ, 4 पैर हुए तो क्या हुआ, इतनी अच्छी बच्ची है हम क्यों नहीं रख सकते. प्रिपेयर तो हम नहीं थे ऑलरेडी, 1-2 साल का एक, 1 साल का है और इसमें ये 2 महीने की, तीनों का तो ओ माई गॉड, हाउस ऑन फायर. बट क्रिश वॉज एन प्रोटेक्टिव एल्डर ब्रदर, देन टिकटॉक वॉज दैट फ्रेंडली नोटोरियस सिस्टर कंपनी,
0: यंगर सिब्लिंग. यस
1: यस, ये दोनों मस्ती करते थे, वो बाग करके ऐसे ऊपर से ऐसे बच के बैठ जाता था. सो हाँ, घर थोड़ा गंदा रहता था, यहाँ वहाँ खिलौने गिरे रहते थे. तीनों जब सोते थे तभी घर आराम
0: शांत होता था,
1: शांत होता था. बट ये अलग है, ये वाली फीलिंग अलग होती है और वो देखना अच्छा लगा. सो टिकटॉक जब पार्ट हुई, हमेशा से वो ऐसे हैप्पी रहती थी, बट जब क्रिश बीमार हुआ वो 1-2 महीना हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था. एंड में उसको खोलने के बाद तो ऐसा लगा था मुझे कि मेरे लाइफ का बहुत मेजर पार्ट गया, बिकॉज उसी ने सब लिखा था, उसी ने सब सिखाया था. उसके बाद तो बहुत एमलेस थी मैं कि अब क्या कैसे. तब टिकटॉक ने हमें संभाला. आप मानो या ना मानो उनको समझ में आ जाता है कौन सी सुख की घड़ी है कौन सी दुख की. वो आके शांत से हमारे बाजू में, शी विल कीप हर फेस ऑन अवर लैप, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी. बहुत सन्नाटा होता था बिकॉज ऑफ द लॉस दैट वी हैड फेस्ड. वो आके बैठती, वो आके अपने खिलौने लेके आके हमें पुश करती कि खेलो मेरे साथ. एंड सडनली हमें ऐसे लगा जो जो क्रिश को अच्छा लगता था वो सब वो उसने अपनाया. क्रिश को ट्रैवल बहुत अच्छा लगता था, जब तक क्रिश था टिकटॉक को ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता था. वो घर में रहना ज्यादा पसंद करती थी, अकेले भी चलेगा मुझे ये, मुझे घर पे छोड़ दो, मुझे ट्रैवल नहीं करना. लेकिन क्रिश के जाने के बाद अभी वो हमारे साथ सभी जगह पे ट्रैवल करती है, सभी जगह पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, आना के क्लासेस में, आना के फ्रेंड्स को मिलने के लिए, कहीं भी हो, फैमिली वेकेशन, शी इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, शी लव्स ट्रैवलिंग. वो पहले ऐसे खड़ी हो जाती है
0: कि मैं भी चलूंगी,
1: मैं भी. सो वो अपने आप को इतने अच्छे से ढाल लेते हैं. उनको जब पता आता है कि उनको एक रोल प्ले करना है हमारे लाइफ में, दे हैव टू रेस्क्यू, दे हैव टू सपोर्ट, दे डू इट सीमलेसली एंड ब्यूटीफुली.
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इसी से आई एम श्योर आपने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे होंगे, कुछ लाइफ लेसन सीखे होंगे इन पेट्स के अराउंड। तो अगर आप कोई दो लेसन्स मुझे बता सकें जो आपने अपने पेट से सीखे।
1: टू लेट गो एंड टू बी टू नॉट कीप ग्रजेस मेनली। अब एक बार उनको डांटोगे, एक एक थप्पड़ ऐसे मारोगे कुछ गलती करने पे, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनको कितनी भी चोट लगी हो इसे, आप उनको थोड़ा आवाज दोगे या थोड़ा ऐसा पट करोगे, दे विल फॉरगेट इट, दे विल फॉरगेट द ट्रेन एंड गेट बैक टू।
0: एब्सोल्युटली फॉरगेट, यस यस।
1: हम लोग इतना इतना ये रखते हैं कभी कभी हेट्रेडनेस, वी फील सो मच विथ, दे ब्रिंग द प्योर लव, they don't have any grudges, anything, they don't plan for their future, they leave to their presence like anything,
0: truly
1: complete present mein. And second thing, unme jo inclusion hai hame nahi ho sakta, aap bahut sare pet parents se mil sakte ho, bahut sare people who have animals in farms, you can ask them, they all will vouch. Dogs, cats, pigs, cows, goats, they all can survive together. Why today human is getting so intolerant with surviving with those domestic animals?
0: Absolutely.
1: So they teach you and teach you in very basic inclusion.
0: Inclusion.
1: They have become the part of an global Vasudeva Kutumbakam. When we will be embracing that?
0: Absolutely. Absolutely. So beautifully put. Actually, they are the epitomes of being inclusive and being welcoming and being, you know, not holding grudges against each other and just being in the moment. So beautiful to watch them grow and be. तो बहुत ही खूबसूरत बातें मैम आपसे हो रही हैं। इन्हीं बातों के बीच मैं एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगी आपसे।
1: When I meet Rajana, I like and I play this song sometime. हाँ, उनको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको पता है म्यूजिक क्या होता है। वो सिर्फ he looks at me and we sit silently on a bench, we can say. I like this song, तेरे जैसा यार कहाँ।
0: Wow, lovely, beautiful. तो चलिए सुनते हैं तेरे जैसा यार कहाँ, राजाना के लिए, टिकटॉक के लिए, क्रिश के लिए और मैम के लिए।

0: बहुत ही खूबसूरत और एप्ट गीत है ये बिल्कुल। आखिर में मैम मैं आपसे दो सवाल और पूछूंगी। एक तो जाते जाते जो लोग सिर्फ एक एक अपने आप को सस्टेन करते हैं आसपास एनिमल्स के, आप उन्हें घर नहीं लाते, आपको शायद पसंद नहीं है, आप डरते हैं, बट क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसे आपने कहा को एग्जिस्ट करना और इंक्लूड करना, तो उन लोगों के लिए जिनको ना पेट्स पसंद हैं या वो डरते हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, बीइंग अ पर्सन हु हैज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर ओन और जो इतना आई एम श्योर काम करते हैं टू रेस्क्यू एनिमल्स एंड स्ट्रेज, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
1: इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू हैव फोबिया, इट इज ओके टू फियर समटाइम्स बिकॉज आई हैव बीन देयर, लेकिन एक चीज हम सबने सीखी है, आई एम श्योर एवरी हाउस होल्ड हैज टॉट अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी पेरेंट्स हैं, सब पलते हुए हम सबने सीखा है बी काइंड। तो अच्छा ना लगना एक है, नुकसान पहुंचाना, उनका बुरा करना वो गलत है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ इट। नहीं अच्छा लगता है ठीक है, आप खाना नहीं दे सकते हो ठीक है, आप उनको घर नहीं ला सकते हो एब्सोल्युटली फाइन, सबकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे अवेलेबल नहीं होते कि वो कर सके ये सब, ठीक है, उनको पानी नहीं रखते हो, खाना नहीं देते हो, अच्छा नहीं लगता है, घर पे नहीं लाते हो, ठीक है, लेकिन वो जब रोड पे सोते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दो, एक बार हॉर्न ना मारो, थोड़ा देखो, उनको पत्थरों से मारना, लकड़ियों से मारना, गर्म पानी फेंकना, उनको पैरों से लात मारना, अगर वो बारिश में कहीं खड़े हैं, शेल्टर ले रहे हैं, उनको वहां से भगाना, ये सब इनह्यूमैनिटी है। सो वी कैन बी एटलीस्ट एन ह्यूमन, इफ नॉट एन इंक्लूसिव, वी नॉट बी अ डॉग पर्सन, वी नॉट बी एन एनिमल पर्सन, विच इज ओके, बट एटलीस्ट वी कैन बी अ ह्यूमन, राइट? सो ये एक चीज है कि जिनको अच्छा लगता है उनको भी मैं यही बताऊंगी कि जरूरी नहीं है।

0: काफी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सो कुछ भी नहीं है वो अगर आपके पास आते हैं, दे आर वैगिंग द टेल व्हेन यू आर वॉकिंग, डोंट शू देम, जस्ट लुक एट देम। इफ दे आर ओके विथ योर टच, इफ दे कम देमसेल्स नियर यू, पेट देम, दे डोंट नीड, दे आर ओके बींग हंग्री, ओके बींग थर्स्टी, व्हेन यू पेट देम देयर डे इज नीड,
1: that's enough,
0: welcome them, that is enough. So we have many ways to be kind, and all this has been a part of our culture, of our society, of our upbringings. All of us have been taught this. We just forget this as we grow,
1: truly, and become so self-centered and self-absorbed.
0: Exactly.
1: Yes,
0: exactly.
1: Yes. Beautiful ma'am. जाते जाते ऑफकोर्स हम बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट एक सरफेस व्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर हाल ही में, उस पर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर आप उसे साझा करना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा?
0: पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबको समझ में नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग जो एनिमल को हेट करते हैं वो समझते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया उनको उठा के फेंक दो। नहीं, वो नहीं है। इट इज नॉट दैट। ओनली फ्यू प्लेसेस मेंशनड लाइक हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओवर देयर वेयर द क्राउड्स, ह्यूमन क्राउड्स गेट मोर दिस वन एंड मोर ऑफ एन वल्नरेबल पीपल आर देयर लाइक पेशेंट्स और किड्स हु आर नॉट फेमिलियर टू हैंडल, वहां से उनको निकालना है। उसका ये मतलब नहीं है हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, सोसाइटी से निकाल सकते हैं, आरडब्ल्यू में रूल्स बना सकते हैं। नहीं, ये गलत है। पहले रूल्स को समझिए, पहले ये कीजिए। सेकंड थिंग, आज ये चर्चा हो रही है, आप लोग अगर समझ रहे हो, जो जिनको डॉग्स अच्छे नहीं लगते अगर समझ रहे हो कि आप जीत रहे हो, नहीं, इसमें हार हमारी और हमारे सिस्टम की है, एनिमल्स की नहीं है। हमने उनको टाइम पे स्टरलाइज किया होता, हमने उनको अच्छे से वैक्सीनेट किया होता और रखा होता, देन वी वुड हैव बीन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी टुडे। हम फेल हुए यहाँ पे, वो फेल नहीं हुए। वो उनको नहीं पता है क्या करना है, उनको नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाना है, खटखटाना है, ऑपरेट करवाना है अपने आप को, या फिर अपने को वैक्सीन लेना है, उनको नहीं पता था। हम फेल हुए यहाँ पे, सो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है इसमें। एंड थर्ड थिंग, ऐसा जब भी मेजर रेवोल्यूशन आता है, हमने बहुत सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में देखा है कि लोगों के दिल बड़े होते हैं, खोलते हैं वो दरवाजा, खोलते हैं जहाँ ये लोग सफर कर रहे हैं, या जहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है कि उनको यहाँ से हटाना है और कहीं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इनटू अ नॉन एग्जिस्टिंग और नॉट इवन फंक्शनल शेल्टर्स और विच इज नॉट इवन देयर, विच कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस टूडे वी हैव, आई वुड रिक्वेस्ट अवर पीपल, माई फ्रेंड्स एंड माई कंट्रीमैन टू ओपन देयर डोर्स लिटिल मोर काइंडर, बिकम लिटिल मोर काइंडर, ओपन। इतने डॉग्स नहीं है जितने हमारे घर है इंडिया में। एक एक भी खोलेंगे, एक एक भी एक एक सोसाइटी खोलेगा, एक एक भी एक अपार्टमेंट में एक दो डॉग रखेंगे, वी विल सेव देम ऑल। न्यूटर करो उनको, वैक्सीनेट करो उनको, खाना पीना प्रोवाइड करो, उनकी पॉपुलेशन ह्यूमनली कम होती जाएंगी, एंड हमारे बच्चे भी वही काइंडनेस साइंस से, साइंस थ्रू ये काइंडनेस मेंटेन करना सीखेंगे। एंड हम बच्चों के सामने मारपीट करके ये सब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी उनको डिपिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट शो देम दिस, वी नीड टू बिल्ड काइंड ऑफ सोसाइटी। यस,
1: ट्रू। ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज, आपकी बातें, आपकी सोच, आई एम श्योर आज SN रेडियो के जरिए हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट होके जरूर होगा। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी सोच है। कृष की यादें और आपका अडॉप्ट डोंट शॉप का संदेश हम सबके दिल में जरूर पहुंचा है मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी प्रेरणादायक बातें, इतनी विजनरी बातें, इतनी खूबसूरत मैसेजेस हमारे साथ साझा करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग। याद रखिए, एक छोटा सा प्यार, एक छोटी सी कटोरी पानी, एक वक्त का खाना या अपनेपन की एक जुबान पूरी दुनिया बदल सकती है। अडॉप्ट इफ यू कैन एंड केयर ऑलवेज, एंड सबसे ऊपर चूज काइंडनेस। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी पेट स्टोरी के साथ।
2: तो दोस्तों,

0: आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको जोसेफीन बेकर से, जो एक प्रसिद्ध कलाकार रहीं और समाज सेविका थीं। बर्बरता के अनगिनत जंगलों से होकर दुनिया यहां तक पहुंची है, जो अमेरिका आज दुनिया भर में मानव अधिकार के कागज बांटता फिरता है, वहां कभी श्वेतों ने अश्वेतों का जीना मुहाल कर रखा था। अमेरिका के कुछ इलाके तो इतने बदनाम थे कि दंगा छिड़ते ही अश्वेतों को अपने घर डेरे से भागकर कहीं छिपना पड़ जाता था। एक ऐसा ही इलाका था पूर्वी सेंट लुई, जहां एक अश्वेत लड़की घरेलू नौकरानी का काम करती थी। न पिता का कोई ठिकाना था और ना मां को ही बेटी की कोई चिंता थी। महज 8 साल की उम्र में ही अपने लिए रोटी कमाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। काम लेने वाले 24 घंटे काम लेते थे और छोटी सी छोटी गलतियों पर भी बहुत पीटते थे। वो अपने लिए रोटी कमाते कमाते 11 साल की हो गई। अक्सर दोनों हाथ काम में लगे रहते, कभी कपड़े धोते हुए तो कभी कपड़े सहेजते हुए, और नजरें स्कूल की खुली किताब की ओर चली जाती थी। पढ़ने का खूब मन करता था। वो सोचती थी, काश उसके भी माता पिता होते तो वो स्कूल जा पाती, अच्छी जिंदगी जीती। उस दिन हाथ में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था उनके। उसे मालकिन ने जला दिया था क्योंकि कपड़े धोने में कुछ ज्यादा साबुन लग गया था। अब एक तरफ तो पूरे घर का काम था, दूसरी ओर स्कूल की पढ़ाई, और तीसरी ओर हाथ का दर्द और जलन। तभी फिर एक बार पूर्वी सेंट लुई में हल्ला मच गया। श्वेत शायद फिर बर्बरता पर उतर आए थे। अश्वेत जान बचाने के लिए बदहवास भागे जा रहे थे। उस लड़की ने काम रोककर खिड़की से देखा। नीग्रो लोगों के घर फूंक दिए गए थे। आसमान धुएं से भरने लगा था। जान बचाने के लिए सब लोग भाग रहे थे। श्वेत मालिकों के घरों से भी अश्वेतों को खोज खोज कर निकाला जा रहा था और मारा जा रहा था। हैवानियत का गजब का मंजर था। वो लड़की भी भाग खड़ी हुई। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां वो मुंह छिपा सकेगी। दूसरे बच्चे भी जान बचाए सड़कों पर चीखते रोते भाग रहे थे। वो ये सोचती हुई भाग रही थी कि हम बच्चों ने भला क्या बिगाड़ा है, बच्चों को तो बख्श दो। काश दुनिया में ऐसी नफरत ना होती तो बच्चों से सभी लोग प्यार करते, बच्चों से प्यार करते तो किसी भी तरह की हिंसा से बच जाते। खैर, दंगा तो थम गया पर दिल के अंदर हमेशा के लिए दर्द रह गया। वो बहुत बुरा दिन था और बहुत काली रात। पास बहती हुई मिसिसिपी नदी के चमकदार जल में भी किसी महिला या बच्चे की चीख पुकार घुली मिली सी लगती थी। पूर्वी सेंट लुई से उस बच्ची का मन उखड़ गया। अगर किस्मत में अपनी मेहनत पर ही गुजारा लिखा है तो कहीं और, ठीक वहीं चला जाए। जिंदगी ने मौका दिया, वो न्यूयॉर्क चली आईं। सड़कों पर ही रहतीं, सड़कों पर ही नाचतीं, कुछ पैसे मिल जाते, बाद में नृत्य मंडलियों के साथ जुड़ गईं। वो समझ गईं कि मंच पर चढ़ना काफी नहीं है, मंच पर सभी को नजर आना भी बहुत जरूरी है। फिर क्या था, मंच पर वो कुछ ऐसा करने लगीं कि सबका ध्यान खींचने लगा। लोग उन्हें जोसेफीन बेकर नाम से जानने लगे। फिर एक दिन कलाओं की नगरी पेरिस से बुलावा आया। उदार पेरिस ने नए अश्वेत कलाकार को हाथों हाथ लिया। वो बहुत तेज नाचती थी, मानो अगली बार कोई नाचने ना देगा। फिर उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, सड़क से उठकर महलों में पहुंच गईं, दुनिया के पहले अश्वेत सितारों में गिनी जाने लगीं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों ने जो आतंक मचाया, तब वो अन्याय के खिलाफ जासूस बन गईं। युद्ध के बाद उनका सम्मान बहुत बढ़ गया, बड़े बड़े लोग उनके नृत्य गायन के मुरीद होने लगे। लेकिन बर्बर अमेरिका उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ। एक मौका आया जब 1963 में उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पक्ष में वॉशिंगटन की प्रसिद्ध सभा में भाषण दिया। अश्वेतों पर जुल्म के खिलाफ बेकर उस सभा में एकमात्र महिला वक्ता थी। उन्होंने कहा, मैं राजाओं रानियों के महलों और राष्ट्रपतियों के घरों में गई हूं, लेकिन अमेरिका के किसी होटल में जाकर एक कप कॉफी नहीं पी सकती। यह सोचकर मैं पागल हो जाती हूं, गुस्सा आता है, तो आप जानते हैं मैं अपना बड़ा मुंह खोल देती हूं। और फिर देखिए, जब जोसेफीन अपना मुंह खोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। वो जर्मनी के चंद रत्नों और राष्ट्र नायकों में शुमार रखती हैं। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि अलग अलग धर्म और अलग अलग नस्ल के 12 बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा था। एक ऐसा परिवार बना रखा था जिसे वो द रेनबो ट्राइब कहती थी। दुनिया 10 दिसंबर को जब भी मानवाधिकार दिवस मनाती है, जोसेफीन बेकर को जरूर याद किया जाता है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। दोस्तों, गूगल मैप में अब एक और सुविधा आनी चाहिए। गूगल मैप हमें यह भी बताना चाहिए कि आगे आरटीओ खड़ा है, अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो यहीं से वापस लौट लो।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, आखिर वो देश कैसे तरक्की करेगा? कोई गम के साए में डूबा हुआ था और कोई ये देखकर खुश हो रहा था कि उसकी आंखों के आगे से जनाजा निकल रहा है। मैं हैरान हूं इस मुल्क की सोच से, क्योंकि जिस मुल्क में किसी के घर में छाया मातम किसी और के लिए शगुन बन जाए, वो मुल्क आने वाले 70 सालों में तो क्या 700 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता? इस मुल्क में कहीं करोड़ों रुपए सड़ रहे हैं तो कहीं करोड़ों भूख से मर रहे हैं। इस मुल्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो चलाया जाता है, लेकिन फिर भी दिन रात बलात्कार का कोहराम है। जिस मुल्क का शरीर और समाज दोनों बीमार हो चुके हों, वो आखिर कैसे तरक्की करेगा? मैंने देखा है इस मुल्क में आस्था पर अंधविश्वास को हावी होते हुए। मैं हैरान हो जाता हूं जब खुद को सभ्य समाज का पढ़ा लिखा वर्ग बताने वालों की आंखों में अंधविश्वास की चादर चढ़ी हुई पाता हूं। जब तक इस मुल्क में अंधविश्वास के नाम पर खून का खेल यूं ही चलता रहेगा, जब तक आस्था की असमत से अंधविश्वास का दाग नहीं हटेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैंने देखा है इस देश के बच्चों को जो अपना भविष्य खरीदने के लिए मजबूर है, जो डोनेशन के नाम पर काला धन बांट पाता है, वही यहां बेहतर शिक्षा का हकदार बन पाता है। जो मुल्क खुद के भविष्य पर ताले लगाता हो, आखिर वो मुल्क कभी कैसे तरक्की कर सकेगा? मैंने देखा है यहां मजहब के नाम पर खून की नदियां बहते हुए, भाई को भाई की जान लेते हुए। मैंने देखा है लोगों को भगवे और हरे के लिए लड़ते हुए। जब तक ये मुल्क भगवा और हरा छोड़ तिरंगा नहीं उठाएगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस दिन ये मुल्क केवल एक नेता नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की तरक्की का एहसास कर लेगा, जिस दिन इस मुल्क में सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिल जाएगा, जब इस मुल्क के लोगों को दूसरों के दुख में दुख का एहसास हो पाएगा, जब इस मुल्क का प्रत्येक वासी अपनी अपनी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाएगा, उस दिन सही मायनों में ये मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आइए दोस्तों, सुनाता हूं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ रचनाएं। बाधाएं हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मति हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहूति में, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।

जिंदगी सिर्फ एक एहसास है, जी से जियो तो मीठा एहसास है, तू खट्टा मीठा एहसास है, बरस दर बरस जी मैंने जिंदगी, यहां तक चल के आए हैं हम, ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, आगे भी परवान चढ़ाए रखना, ए जिंदगी जी से जी है मैंने तुझे, ओ जिंदगी यकीनन जी से जियो तो मीठा एहसास है जिंदगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? जब शनै शनै उम्र बढ़ जाएगी, इत्र की जगह आयोडेक्स की खुशबू आएगी। कहता हूं अब भी मिल लिया करो, ये घड़ियां पलट कर नहीं आएंगी। अभी तो आंखों में नूर है बाकी, अभी तो आंखों में नूर है बाकी, फिर खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, अभी तो यार हैं चलते अपने साथ, फिर केवल छड़ी ही नजर आएगी। सुन लो आवाज दोस्तों की, सुन लो आवाज दोस्तों की, फिर कानों में मशीन नजर आएगी। हंस लो खिलखिलाकर आज, हंस लो खिलखिलाकर आज, फिर नकली बत्ती सी ही झलक दिखलाएगी। जब दोस्त बुलाए चले आओ, फिर डॉक्टरों से फुर्सत ना मिल पाएगी। समझ जाओ यारों, समझ जाओ, ये मस्त उम्र फिर नहीं आने वाली।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: गप्पू ने पूछा, अरे यार तुम गटर में कैसे गिर गए? चप्पू ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, मुझे लगा सोशल डिस्टेंसिंग का गोला है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
6: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
7: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों

0: के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
3: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
3: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
3: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
4: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

0: विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशो, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशो, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
6: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
6: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूँ।
6: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात, जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ। राम राम भाई।
3: राम राम भाई, राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
2: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
3: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
2: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
3: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
2: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
3: अच्छा?
2: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
3: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
2: चलो।
3: मैडम जी नमस्ते।
4: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
2: नमस्ते मैडम जी।
4: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
2: जी धन्यवाद।
4: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
3: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
4: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम, हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
3: अच्छा, तो मैडम जी, क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
2: देखा, मैंने कहा था ना,
3: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद, और हरिया तुम्हारा भी धन्यवाद,
2: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
4: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
5: हर सपना सच हुआ हमारा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
2: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
3: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप आदाबर्ज आइए आइए तशरीफ रखिए।
3: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
1: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है,
3: लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
1: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
3: मोहानी साहब
2: जी,
3: ये पर्दे की ओट से निकाल कर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
3: क्या मतलब?
1: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
3: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
3: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
3: लाइए
2: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
1: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
3: लिख दिया,
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद ग्रामी
2: है, मश्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी
2: चक्की की मशक्कत भी।
3: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
3: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत।
2: क्या
3: क्या
1: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
3: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
3: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
6: जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
6: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
3: क्या?
6: जी, अब एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
2: अरे मान साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
3: आप भी मान साहब। लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थे।
2: नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
6: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
2: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
3: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
1: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
5: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
2: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
5: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
2: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया।

0: वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर। बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
0: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
2: भगत सिंह।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
6: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
7: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
5: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं।
8: भगत सिंह
5: बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
7: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
8: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
7: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
5: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय, और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में चर्चा में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
13: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ।
12: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय, इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे

0: गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं, तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं। उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज हम परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं, और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले, अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी है, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं, और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
1: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
0: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं, तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो, या तंबाकू खा लो, या थोड़ी सी शराब पी लो, या गांजा ले लो, और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया, और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
1: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है, या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: तो नशा सिर्फ शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है, और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है, दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है, और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान समय की ये पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें, तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें, तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं, बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
1: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है, और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है, और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो जो

0: सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है, और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदी हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है, या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है, तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं, या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है, और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है।
1: जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, नशे से दूर होने के लिए इसे व्यक्ति कहता है आज मेरा शराब पीने का मन है, या कह कहता है कि आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा, और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है, और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है, वो है आत्मा, और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है सिगरेट पीकर के आता है, तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पीकर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए, और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है। और मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने एक सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी है, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
1: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं, या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
1: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारी दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाएं। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाएं और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है वह उन्नत से उन्नत खेती करे, अपनी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही हम अपनी खेती में आ रहे नए बदलावों को समझे और अपनी खेती में नए से नए उपकरणों का इस्तेमाल करे, नई से नई किस्मों का इस्तेमाल करे और हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी जो कृषि चल रही है और हमारे जो अलग दूसरे किसान है उनके साथ कैसे एक नवीनतम तकनीक द्वारा कैसे हम उन्नत और उपयोगी कृषि कर सकते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं को मध्य नजर रखते हुए हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: किसान साथियों, अभी बरसात का समय चल रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो अच्छी खासी बरसात हो चुकी है। तो किसान साथियों, अभी समय आ गया है, अभी हमारी फसलों में आपको कीटें दिख जाएगी, खरपतवार हमारे खेतों में बहुत से दिखने लगेंगे। तो आज का जो हमारा खेती बाड़ी का जो टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे कैसे हम टमाटर, बैंगन और मिर्ची की खरपतवारों को उसमें कैसे उसकी फसल का हम प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे अंगूर की खेती में जो बेल होती है उसमें भी अभी कुछ कीटनाशक आ जाते हैं, तो उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
9: बैंगन मिर्च और टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या खास बातें आप इस वक्त बताना चाहेंगे?
10: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मौसम है, जो ही बारिश प्रारंभ होती है
9: जी,
10: पहली बरसात के बाद ये तीनों फसलें जो हैं, आप बैंगन की भी खेती प्रारंभ कर सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च की भी खेती इस मौसम में किसान भाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि उन्हीं किसान भाइयों को अधिक फायदा होता है जिनकी फसल जो है जितनी अगेती मार्केट में आती है। तो जो किसान भाई अगर नर्सरी ज्यादा जल्दी अगर उगा लेते हैं तो उनकी फसल स्वाभाविक है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी आएगी। और जैसा बैंगन जो है पूरे भारतवर्ष के भिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, उनको ये देखना है कि आपके एरिया का जो मार्केट है वहां किस प्रकार की बैंगन की प्रजाति की प्रेफरेंस मार्केट में है। जैसे कई जगह गोल मार्केट में प्रेफर किया जाता है, कई जगह लंबी प्रजाति होती है, कई जगह कम बीज वाला लोग पसंद करते हैं, कई जगह जैसे महाराष्ट्र का रीजन है वहां जो चूचू बैंगन होता है, वेरिगेटेड होता है, उसमें अधिक बीज वहां वो पसंद करते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जो टमाटर की फसल है, खास करके जो हम खरीफ मौसम में और बारिश की मौसम में, एक विषाणु जो होता है लीफ कर्ल, जिसको किसान भाई मरोड़िया बीमारी बोलते हैं, उससे हमको कैसे बचाना है। मिर्च में भी इस मौसम में अगर हम करेंगे तो बारिश के मौसम के लिए कुछ खास प्रकार की ही किस्मों का चयन करना होता है और कुछ खास प्रकार से इसकी अगर हम नर्सरी भी तैयारी करते हैं तो जो विषाणु जनित यानी वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनको हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, आज हम इस पे हम अधिक से अधिक अगर हम फोकस करें
9: तो विस्तार से चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि बैंगन मिर्च टमाटर की अच्छी उपज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती की जा सकती है। पहले बात करते हैं टमाटर की। जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई पौधशाला में करते हैं। इसके लिए मुक्त परागित किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम बीज को 1 ग्राम कैप्टन या थीरम से उपचारित करके 17x3 फीट के आकार की 8 ऊंची क्यारियों में लगाएं। हल्का पानी का फवारा देते रहें। आप टमाटर की पूसा रूपी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार और पूसा हाइब्रिड 2 इसमें लगा सकते हैं। जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है। टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए उपाय जरूर करें। वहीं बैंगन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अच्छी जमाव क्षमता वाले 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों के बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। आप अगेती बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा शामला, पंजाब सदाबहार और काशी प्रकाश किस्में लगा सकते हैं। मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना, कैसे आपने जो मिर्ची की खेती है, मिर्च का पौधा है वो कितना सेंटीमीटर पर होता है, और अगर आप पूसा किस्म का जो आप लगाते हैं उसमें ये किस्म काफ़ी अच्छी होती है और आपको अधिक से अधिक लाभ इस किस्म के द्वारा मिल सकता है। किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ अंगूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: अंगूर के बगीचे जो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर ही अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो वनस्पतिक जो वृद्धि है वो हो रही है पौधों की। इसमें बारिश के मौसम में कीटों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, और जैसे कि मिलीबग, कैटरपिलर्स जो स्पोडोप्टेरा है, और लाल रंग का एक स्टेम बोरर तना छेदक, उसका भी इस समय काफी अटैक हो जाता है
3: जी।
2: और साथ ही साथ में थ्रिप्स है, उसकी भी काफी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश आने के बाद में नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है, तो उसके ऊपर में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीटक है जो कि अंगूर के अंदर बारिश के मौसम में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, विस्तार से आज हम जानेंगे कि ये जो कीट है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने से ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित होती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, ऐसे में अंगूर में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका हो जाती है। ऐसा ही एक कीट है लीफ हूपर। ये ज्यादातर उत्तर भारत में अंगूर की बेलों में मिलता है। ये कीट जून से अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये निम्फ और परिपक्व पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से पत्ती के सूखने और टूटने से पहले इसका रंग पीले से भूरा हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते खाने वाली चैफर बीटल भी अंगूर की बेलों को नुकसान पहुंचाती है। चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है और रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है। बालों वाली सुंडियां नई बेलों की पत्तियों को खाती हैं। इनके साथ साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा और पतला कीड़ा होता है, टहनियों, शाखाओं और तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिल्कुल सुखा देता है। इन कीटों से बेलों को बचाने के लिए पॉलीथियोन या मेलाथियोन या डायाजिनोन का 0.05% से 0.1% का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितंबर तक करते रहें। लेकिन किसी भी दवा के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कीटे हैं अंगूर की कोमल पत्तियों को खा जाती है और उनके अपनी जो बेले हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही उन्हें सुखा भी देती है। तो इस ऐसे समय में हमें कैसे और कितने समय में हमें दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने जाना। यहाँ पर हम रुक करेंगे मिर्ची, बैंगन और टमाटर की खेती के ऊपर। अभी बारिश का समय चल रहा है तो इसमें कौन सी किस्में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किस्में आजकल बाजार में मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी किस्म का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें खराब किस्म का पौधा मिल गया था तो मिल जाए तो उसमें हमारी जो पैदावार है यह काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें ज़रूरी है, ज़रूरत है अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव करना, अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करना और अपनी बागवानी में लगाना। तो चलिए किसान साथियों, जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम तौर पे क्या होता है, जब किसान भाई सोचते हैं कि कोई भी टमाटर हम खरीफ में लगा सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे जो किसान भाई टमाटर लगाते हैं वो जाड़े के मौसम में लगाते हैं, उसमें जो ये विषाणु जो जनित बीमारियां होती हैं जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं या किसान भाई उसको मरोड़िया बीमारी कहते हैं, ये नहीं होता है। लेकिन अभी जो किसान भाई लगाएं उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसी प्रजाति लगाएं जो अधिक तापमान पर टमाटर में फलन

0: की क्षमता रखती हो, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं जुलाई अगस्त में तो अक्टूबर तक जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ खास करके रात का तापमान 20-22 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है। तो एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि चूंकि बारिश के मौसम में नमी भी रहती है, तापमान भी अधिक रहता है, तो जो सफेद मक्खी होती है इसका प्रकोप काफी होता है। और ये सफेद मक्खी जो होती है वो वेक्टर होता है जो हमारी मरोड़िया बीमारी के लिए। तो इस मौसम में हमें उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। और इसके लिए जैसे वाराणसी में जो हमारा भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उनकी कुछ प्रजातियां जो उत्तरी भारत के लिए हैं, जैसे काशी अमन एक प्रजाति है, इसका आप एक चयन कर सकते हैं। अगर जो लोग कर्नाटक में या उस इलाके में अगर देख रहे हैं तो वहां की काफी पॉपुलर प्रजाति है अर्का रक्षक, जो हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर की प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और काशी के जो हमारा वाराणसी का है इनके द्वारा कुछ और प्रजातियां विकसित की गई हैं, जैसे काशी अमूल है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा भी कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है वहां से भी इस वर्ष एक प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वायरस जनित यानी वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो लीफ कर्ल असिस्टेंट टोमेटो लीफ कर्ल असिस्टेंट 6 नाम के वैरायटी इसी साल अभी आइडेंटिफाई की गई है, तो इनका आप चयन कर सकते हैं। आपको ये 100% ध्यान रखना है कि कोई भी प्रजाति लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तभी इस मौसम में आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो इन जो किस्म है इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है जब भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं, खासतौर पर खरीफ के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं हमें कि इस मौसम में किस तरह की कीटों का प्रकोप हो सकता है, खासतौर पर कैटरपिलर के बारे में आपने भी बताया था कि इसका प्रकोप हो सकता है, तो किस तरह से ये फसल को प्रभावित करता है और कैसे इससे बचा जाए।
2: जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है बारिश के बाद में और बादल हो जाते हैं तो जो कैटरपिलर है जो स्पोडोप्टेरा है उसको जैसे लोकल लैंग्वेज में सुंडी भी कहते हैं
1: जी,
2: तो वो क्या करता है कि पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है और कच्चे अगर थोड़े स्टेम है तो तना है उसको भी खा सकता है और पत्तों को पूरा अगर ज्यादा अटैक हो जाए ज्यादा आक्रमण हो जाए इसका तो पत्तों को पूरा खा सकता है वो, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बाधित होती है पौधे की। इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जो हमारे बगीचों में मित्र कीटों को बढ़ने के लिए मौका देता है। आर्द्रता ज्यादा होगी मित्र कीट काफी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, तो हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग बताते हैं कि आप करें अपने किसान भाई अपने बगीचों के अंदर में। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो कि कैटरपिलर के जो पतंग होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। एक चीज अंगूर के बगीचों में खासतौर पर ध्यान रखनी है कि बाकी फसलों में क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप होता है वो बगीचे के फसलों के अंदर खेत के अंदर लगाया जाता है, पर अंगूर के बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाया जाता, अंगूर के बगीचे से 15 से 20 फीट दूर उसको लगाया जाता है ताकि जो कीट है अंगूर के बगीचे के वो बगीचे से बाहर चले जाए और लाइट ट्रैप में जाके मर जाए। अगर लाइट ट्रैप को हम बगीचे के अंदर लगाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है कि जो लाइट ट्रैप है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनके ऊपर में कैटरपिलर का ज्यादा अटैक हो सकता है क्योंकि वहां पतंग ज्यादा आएंगे उस पर अंडे ज्यादा देंगे
1: जी,
2: और उसके ऊपर में आसपास में पौधे हैं वो ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं पौधे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बगीचे के बाहर ले जाके लाइट ट्रैप को लगाए उससे दूर रखें। और बाकी फसलों में एक और चीज होती है कि जो लाइट ट्रैप है वो फसल से ऊपर लगाया जाता है, पर अंगूर के अंदर में क्या होता है कि जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर लाइट को लगाया जाता है, तो ये जो मुख्य बातें ध्यान देनी है हमको। और साथ ही साथ जो बायोजेंट्स हैं जो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है जो स्पोडोप्टेरा के लिए जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
4: किसान साथियों यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए चर्चा करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
2: जी हाँ, जो नर्सरी, देखिए नर्सरी का जो प्रबंधन होता है, जो भी हमारी पूरी फसल प्रबंधन है, उसका आधार जो होता है बीज, और बीज से जो हमारी उगाई हुई नर्सरी होती है। और जैसा मैं बार बार किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जब नर्सरी में अगर हम पौधों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, नर्सरी में दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक होती है जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, यानी जहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं कुछ उनके जो रोगों के जो स्पोर्स होते हैं वो पहले से मृदा में या मिट्टी में रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और जो किसान भाई जागरूक हैं वो सॉइल सोलराइजेशन इसको जानते हैं, यानी जिस एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं वहाँ की मिट्टी को हम सौर ऊर्जा की मदद से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी रोग और कीटाणु के जो स्पोर्स हैं उनसे हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पहली चीज मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम था उसमें अगर हम सफेद रंग की पॉलीथीन से जिस एरिया में हम नर्सरी बनाते हैं उसको सीधा हमको पहले उसकी जुताई कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है, और उसके बाद कम से कम 400 गेज की जो सफेद रंग की पॉलीथीन है उससे उसको हम अगर ढक देते हैं और चारों किनारे से फिर मिट्टी डाल देते हैं तो अंदर का जो तापमान होगा वो काफी बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम 30-35 दिन तक रखते हैं, ये बिना किसी खर्चे के है, मैं इसलिए आपको ये भी बता रहा हूं, ये जैविक तरीका भी है, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके, अगर जो किसान भाई ऐसा रखते हैं, अगर 15-20 दिन तक अगर हम ऐसा रखें तो उसके अंदर के जो भी स्पोर्ट्स हैं जो पिछले सालों के या और भी किसी जो जैसे सॉइल में हमारा डाइथेन, ये हमारी जो बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की बीमारी आती है जो हमारी नर्सरी में, खास करके जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ एक मेजर समस्या है, ये सब सारी समस्याएं उसमें खत्म हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें वायरस जनित बीमारियां हैं, इनके जो बाहक कीट होते हैं उनके भी कुछ अंडे उसमें अगर हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, मिट्टी की जो मृदा की जो सेहत है वो भी इससे अच्छी होगी, पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, चूंकि ये बारिश का मौसम है तो हमेशा नर्सरी जिस एरिया में हम बनाते हैं वो मिट्टी बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, यानी वहां के पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहां फुल धूप लगनी चाहिए। कई बार किसान भाइयों को ये लगता है कि अगर हम थोड़ी छांव में, चूंकि गर्मी बहुत है, अगर हम थोड़ी छांव में अगर हम नर्सरी उगाएंगे तो अच्छी बनेगी, लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि नर्सरी के एरिया में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश कम आएगी तो जो उसके जो जड़ कम बनेंगे और पौधा ऊपर की तरफ अधिक बनेगा। जबकि हमें नर्सरी में यह ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें ऐसी वातावरण बनाना है जिससे पौधा का जितना विकास ऊपर की तरह हो उतना ही विकास उसका जड़ों का नीचे की तरह हो। अगर आपके नर्सरी के पौधे ऐसे बनते हैं जिनकी जड़ जितनी लंबी होती है तना भी अगर उतना ही लंबा होता है, ये नर्सरी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको ऊंचे जमीन पे बनाना है, फिर हमको करना है कि करीब 1 से 1.5 फुट की चौड़ाई की हम, और कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची और हल्का, जिसमें दोनों किनारों पे भी ढाल दे के हम 1.5 मीटर या 2 मीटर लंबी हम क्यारी बना सकते हैं। और क्यारी के ऊपर जब भी हम, अगर चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के जिसका अगर हम नर्सरी में अगर हम उपयोग करेंगे तो बाकी भी अगर कोई जो मृदा जनित बीमारी है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चूंकि इस मौसम में हम बार बार वायरस की समस्या को हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वायरस एक बार लग जाता है पौधे पे, हमको उखाड़ के ही उसको खत्म करना पड़ता है या पौधे को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, यही एक नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले अगर हम नियंत्रित करें, नर्सरी में आमतौर पर हमारे 35 से 40 दिन तक हमारी फसल जो होती है वो नर्सरी में होती है। इस दौरान अगर हम इसको कीट से अगर हम बचाने के लिए, जैसे हम अपने आप को कीट से बचाने के लिए हम मच्छरदानी या हम लगाते हैं रातों को सोने के लिए, इसी प्रकार अगर हम नेट हाउस का अगर हम प्रयोग करें, यानी जिस एरिया में अगर हम नर्सरी बना रहे हैं वहां हम कम पैसे में है, अगर उसको हम कीट अवरोधी जाल होता है 40 मेस की या 50 मेस की, अगर उसके अंदर अगर हम नर्सरी तैयार खास करके करते हैं तो 35 से 40 दिन तक जो आपके पौधे होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उसमें किसी प्रकार की वायरस से उसको हम मुक्त रख सकते हैं। उसके बाद जब हम खुले खेत में लाएंगे तो उसमें हम कुछ उपचार करके फिर हम चाहेंगे कि खेत में भी वो पौधा हमारा स्वस्थ रहे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी नर्सरी से हम स्वस्थ पौधे हम बना सकते हैं और कम खर्चे में और बिना किसी रसायन के उपयोग के भी हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
3: तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो अच्छी उपज है उसकी उम्मीद की जा सकती है। उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि ऊंची ऊंची जमीन पर बनाए और इसके साथ ही वहां पर जो धूप है वो पूरी तरह से पहुंच सके इसका इंतजाम करना बेहद जरूरी है, ताकि जो जड़ है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके और जल जमाव न हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं और अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव, बताएं हमें कि और किस तरह के कीटों का प्रकोप इस मौसम में हो सकता है अंगूर के बागों में, जैसे मिलीबग का भी प्रकोप कई बार होता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है?
4: मिलीबग जो है कीट, ये क्या करता है कि जड़ों के अलावा जो भी अंगूर के अंदर में ऊपरी भाग है उसमें कहीं भी रस चूस सकता है, जहां भी फ्लोएम है वहां पर रस चूसेगा और जो ऊर्जा पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खाना जो पौधे को भी यूज होना था वो मिलीबग देता है और पौधा काफी कमजोर हो जाता है।
3: जी जी,
4: जब फल का मौसम होता है, जब अंगूर लग रहे होते हैं तो फलों पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है मिलीबग का, पर ये अभी फल का मौसम नहीं है, अभी ऑफ सीजन है। तो इस समय मिलीबग क्या नुकसान कर सकता है कि गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल या मई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो मिलीबग एक बार ज्यादा तापमान की वजह से कम हो जाता है, पर जैसे ही जून जुलाई का मौसम होता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो एकदम से बिल्कुल सही मौसम मिलता है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, और मिलीबग काफी ज्यादा संख्या के अंदर में बढ़ जाता है। तो किसान कई बार काफी चिंतित हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिलीबग आ गया मैं क्या करूं, और कई सारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं बगीचों के अंदर में, पर मिलीबग एक ऐसा कीट है जितना हम ज्यादा रसायन यूज करेंगे, जितने कीटनाशक ज्यादा यूज करेंगे, उतनी आने वाले टाइम में, आने वाले समय में इसकी समस्या बढ़ती जाएगी। और बारिश के मौसम में मिलीबग का हमारा अनुभव ये है कि अगर हम बारिश के मौसम में जैसे मिलीबग काफी तेजी से बढ़ता है और ऑफ सीजन के अंदर में ज्यादा नुकसान अंगूर के अंदर में ये नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि हमको अंगूर के पौधे की चाहिए होती थी उतनी हो जाती है तब तक, तो जो मुख्य तना है उसके ऊपर में हमको ज्यादातर जो मिलीबग है उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। वहां पर अगर हम एक से डेढ़ महीने तक कुछ भी ना करें, कोई भी रसायन का प्रयोग ना करें और उसको मिलीबग को वैसा का वैसा छोड़ दें, तो मिलीबग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो सही मौसम मिला है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए वो सही मौसम उसके जो मित्र कीट है उनको भी मिला है, तो वो मित्र कीट है उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, एक डेढ़ महीने में अगर हम छोड़ देते हैं वैसे तो मिलीबग काफी अच्छे तरीके से अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। पर जो किसान नियंत्रित जल्दी करना चाहते हैं और ज्यादा चिंतित है वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मित्र हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनका जैव नियंत्रण के लिए जो एजेंट्स होते हैं, जैसे मेटारिजियम एक है फंगस है, फफूंद है, जो कि कीटों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है, तो उसका प्रयोग आप मुख्य तने को धोने के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मिलीबग को भी कंट्रोल नियंत्रित में किया जा सकता है और उपाय आपके सामने है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है फसल में, और ऐसे में जो बीज है अगर उसके स्तर पर ही कुछ उपाय कर लिए जाए तो कई रोगों से बचाव पहले ही हो सकता है, तो ऐसे में बीजोपचार की कितनी महत्ता बढ़ जाती है और बैंगन मिर्च टमाटर के मामले में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए?
2: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ बातों का ध्यान अगर हम जिस समय हम बीज हम लेते हैं, पहली चीज जैसे है जब हम बीज का चुनाव करते हैं जैसे मैं बताया भी, तो प्रजातियों के चुनाव में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जो बीज हम लाते हैं खरीद के उसको हम अगर हम ट्राइकोडर्मा से हम अगर हम जैविक तरीके से अपनाना चाहते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम बीजोपचार हम कर सकते हैं। इससे हमें खास करके जो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास अगर वो नहीं उपलब्ध है तो अगर हम रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो जैसे कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है या थीरम है, इनसे हम 2-3 ग्राम प्रति केजी बीज में इनसे भी हम उपचारित करके इनको हम नर्सरी में लगा सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां हैं। जैसे अगर हम बैगन की बात करें, बैगन में कुछ बीमारी आती है, जैसे फोमोप्सिस है, फोमोप्सिस ब्लाइट काफी भयंकर बीमारी होती है। ये खास करके ये बीज से ही जाता है। अच्छा। जैसे अगर बैगन का अगर जब हम बीज लेते हैं तो अगर कोई पौधा जिसमें फोमोप्सिस है यानी गला हुआ फल होता है उससे अगर हम बीज लेते हैं तो बीज वहां इन्फेक्टेड होता है और ये बीज फिर अगले पौधे में जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर हम बीजोपचार अगर हम कर लेते हैं तो इसकी संभावना कम होती है। इसके साथ साथ एक दो चीजों मैं और बताना चाहूंगा कि बीजोपचार के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर किसान भाई बिल्कुल जहां फसल लगा रहे हैं उसी समय से अगर उसका ध्यान रखें तो हमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैंगन लगाएं या मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इस मौसम में वायरस जनित बीमारियां आती हैं और इसके बाहर खास करके सफेद मक्खी होती हैं और कुछ जो थ्रिप्स वाली जो बीमारियां हैं वो भी जैसे मिर्च में भी आती हैं। इनके लिए जैसे जिस खेत में आपको लगाना है उससे अगर 15-20 दिन पहले अगर उसके बॉर्डर पे अगर हम मक्का की अगर हम 3-4 लाइन लगा लें या जो सोरघम होता है वो ज्वार होता है अगर उसकी अगर हम 3-4 लाइन अगर हम पहले से लगा के रखते हैं तो जब हम खेत में हम पौध अपना हम लगाएंगे ट्रांसप्लांट करेंगे उससे पहले वो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगर कोई सफेद मक्खी या बाकी कीड़े आते हैं तो उनके पत्तों में आप देखते हैं कि रेशे होते हैं उस पे वो चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने लिए मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना से बचाने के लिए उसी प्रकार हमको पौधों को भी जो बॉर्डर क्रॉप्स इनको हम कहते हैं या कैच क्रॉप्स कहते हैं या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं कि जो इसके जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर में जो किसान भाई लगाते हैं टमाटर में या बैगन में भी निमेटोड की एक समस्या होती है, इसलिए जब हम अगर हम बैगन या टमाटर की जब नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय में अगर हम थोड़ी गेंदा जो होता है जो गेंदा का फूल होता है उसकी भी हमें थोड़ी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और टमाटर के 10 से 15 लाइन के पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर हम गेंदा फूल की भी अगर हम लगा देते हैं तो उसमें टमाटर ये इसमें निमेटोड की भी समस्या कम होगी और खास करके जो कुछ फल छेदक जो कीड़े होते हैं उसकी भी समस्या कम होती है। तो इस प्रकार हमको जब नर्सरी प्रबंधन करें वहीं से हमको ये सोच रखना है कि हमें कम रसायन का उपयोग करना है जिससे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा।
3: बिल्कुल, इसलिए उचित है कि इन बातों का ध्यान शुरुआत में ही रख लिया जाए कि किस तरह से रोगों की आशंका हो सकती है और कम से कम रसायन में अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बागों में हम देखते हैं कि कई बार लीफ हॉपर या बीटल जैसे कीटों का भी आक्रमण हो जाता है, इससे फसल को कितना नुकसान होता है और इससे बचाव के लिए अगर कुछ उपाय आप बता सकें हमें।
4: कीटक हैं जो कीट हैं जिनकी आपने बात की कि लीफ ऑपर और जो चाफर बीटल है वो
3: जी।
4: लीफ ऑपर पत्तों के नीचे से रस चूसता है पत्तों का और पत्ते मुड़े तुड़े हो जाते हैं और ज्यादा उसका प्रादुर्भाव हो जाए तो लीफ बर्न भी कई बार हो जाता है। पत्ते मुड़े तुड़े हो जाएंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लीफ ऑपर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लाइट

0: हमने बताया था कि जो कैटरपिलर के लिए हम बताते थे कि बगीचों के बाहर लगाइए, तो वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लीफ पॉपर लाइट्रेट में काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं हमें और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लीफ पॉपर के लिए जो मुख्य है उसको नियंत्रण करने के लिए वो है कीटनाशकों का प्रयोग। लीफ पॉपर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जो कि अंगूर में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर्ड हैं भारत देश के अंदर में, उनका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक खास चीज लीफ पॉपर के बारे में ध्यान रखने की ये है कि अंगूर के अंदर में हमने जो अनुसंधान किया उसमें हमने ये पाया कि शाम के समय अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनपे जो लीफ पॉपर है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है दिन की बजाय। तो अगर हम जो पेस्ट जो कीटनाशक का प्रयोग है अगर हम शाम रात के टाइम में करेंगे उस समय करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा उसका नियंत्रण मिलेगा। एक और चीज है कि जैसे कि मैंने बताया कि लीफ पॉपर पे लाइट ट्रैप के द्वारा उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। लीफ पॉपर प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, जो सफेद रंग का प्रकाश है उसकी तरफ में वो ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। अगर जो किसान भाई हैं रात के समय फवारणी करने जा रहे हैं कीटनाशक की, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे की तरफ में जहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है वहां पे अगर सफेद रंग का ज्यादा वाट का बल्ब लगा ले तो क्या होगा कि वो बल्ब की वजह से जितने भी लीफ पॉपर हैं वो उसके पास में आकर्षित होंगे और जहां पे हमारा फवारणी जा रहा है, जहां पे हमारा स्प्रे जा रहा है उसके पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हमारा लाइट के पास में लीफ पॉपर है और साथ में हमारा जो स्प्रे है वो जा रहा है तो इमीडिएटली उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा जो है इसको कंट्रोल करने में। जो कीटनाशक है जो आप प्रयोग कर रहे हैं रात के समय कीजिए और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बल्ब लगा के रखिए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नियंत्रण लीफ पॉपर का दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा जो कीटक है जिसकी बात की आपने चाफर बीटल, चाफर बीटल बारिश जब शुरू होती है तब बाहर निकलता है और काफी कम समय तक ये बगीचों के अंदर में रहता है। चाफर बीटल का जो ग्रभ होता है वो जमीन के अंदर रहता है जिसको हम पाइक ग्रभ कहते हैं, जो कि गन्ना या दूसरे अन्य फसलों के अंदर में सब्जियों में मूंगफली में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो व्यस्त अवस्था होती है वो चाफर बीटल का है। ये क्या करेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा, अंगूर के अंदर में व्हाइट ग्रभ की समस्या नहीं पाई जाती पर आसपास के खेतों से वो आ सकता है और वो क्या करेगा बाहर निकलने के बाद बारिश के बाद में किसी बड़े पेड़ के ऊपर में जाके बैठने की कोशिश करेगा। तो आपके अंगूर के बगीचे के पास में अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे के अंगूर के पौधे आप देखेंगे तो उनमें आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। फिर दूसरा कि जो सीमा के ऊपर में बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो पौधे हैं अंगूर का उसके ऊपर में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों को रात के समय, चाफर बीटल रात के समय निकलेगा दिन के समय छुपा हुआ रहेगा, तो रात के समय जाके देखिए आपको सैकड़ों की संख्या में पौधों के ऊपर में बैठे हुए दिखाई जाएंगे। और क्या होता है कि किसान आजकल जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से वीडियो और उनके फोटो डालते हैं तो बाकी किसान भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके बगीचों के अंदर में चाफर बीटल है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा कीटक है जिसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रात के समय जब चाफर बीटल के पौधों के ऊपर बैठा हुआ है तो उसी समय हमको उसी टाइम में फवारणी करनी है। हमको लैम्डा साइलोथ्रिन जो 4.9 CS का जो फॉर्मुलेशन है, आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर पत्तों के ऊपर फवारणी करेंगे तो सुबह के समय आप देखेंगे, रात के समय फवारणी करेंगे सुबह के समय आप देखेंगे जितने भी चाफर बीटल आपके पौधों में बैठे हुए थे आपको नीचे मरे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छा।
1: किसान साथियों, अभी आपने कृषि एक्सपर्ट से जैसे कि सुना, हमें मेहनत करनी है लेकिन उसे सही दिशा में करने की आवश्यकता है। हम दवाइयां हमारे खेतों में बहुत डालते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से समय में डालना उचित होता है और कौन से समय में नहीं। यहाँ पर जैसे कि हमने कृषि एक्सपर्ट से सुना, रात के समय में हमें इस दवाई का प्रयोग करने से और उसी के साथ हमें जो सफेद कलर का जो प्रकाश है उससे जो कीट है वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा हमें कम मेहनत पे अधिक रिजल्ट मिल पाएगा। जो सफेद प्रकाश है वह उससे कीट है वो आकर्षित होता है और वही उसी जगह पे जब हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हमें पूरा ज्यादा एरिया वहां कवर करने की जरूरत नहीं है, हम उस सफेद प्रकाश के मदद से अधिक कीटों को सफेद प्रकाश अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमें अधिक फायदा होगा और वहां हमारी लागत भी बचेगी, साथ ही हम हमारा समय बचा सकेंगे और एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकेगा। किसान साथियों, इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों आपने अंगूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने मिर्ची टमाटर और बैंगन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसे यहाँ पर किसान साथियों वक्त है कि हम एक किसान भाई का एक सवाल लेते हैं जिन्होंने हमें आग्रह किया था कि उनके जो मिर्ची के पौधे हैं उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल जल्दी ही झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, यह क्यों होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है, तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है।
3: जी,
2: जैसे मैं अभी बार बार बात भी कर रहा था, कोई भी जो फसल होती है चाहे टमाटर है मिर्च में है, इसका एक नियमित तापमान होता है, उसी तापमान पे इसमें फल लगेगा। जैसे आप हर बार देखते हैं कि जो ही उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। क्यों होता है ऐसा? कि जो ही तापमान अगर 24-25 डिग्री से, खास करके रात का तापमान अगर 24 डिग्री से ऊपर होता है तो टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मिर्च में भी है कि मिर्च में भी अगर रात का तापमान अगर 25-26 डिग्री से अगर ज्यादा होने लगता है तो उस समय में मिर्च में भी फल लगना बंद हो जाता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं, अच्छी बात है कि हम अगर बेमौसम का उगाएंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कारण से ये समस्याएं होती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है तब भी उसमें फलन बंद हो जाता है और जब तापमान बहुत अधिक होता है और खास करके ये जो रात का तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर, तो उसमें फल लगने में समस्या होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे एक प्लानो फिक्स करके आता है, कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक आप इसमें फलन जो है वो प्रारंभ इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश हो गई है और मौसम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो मिर्च में ये समस्या जो है धीरे धीरे फिर खुद ही खत्म हो जाएगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मिर्च की हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस समय मिर्च की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की किस्मों का चुनाव करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आजकल बहुत सारे किसान हैं जो हरी मिर्च के लिए खेती करते हैं।
3: जी,
2: और जो भी उनको प्रजातियां हरी मिर्च के लिए, बहुत सारी ज्यादा प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अगर हम खास करके जो हमारे सरकारी संस्थानों से, और इसमें लेकिन हमको अगर ऐसी प्रजाति अगर हमें मिलती है जिसमें जो लीफ कर्ल वायरस है इसके प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा अगर आपने भी दिखाया और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रजाति होती है ऊपर की तरह गुच्छे में फलती है तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, आमतौर पे किसानों की ये भी डिमांड

0: जो राज्य हैं वहां से उनकी प्रजातियां ले सकते हैं, या जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं, जैसे CH1 CH3, ये काफी पॉपुलर प्रजातियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मौसम के अनुसार, इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार, और किस तरह के आपके नजदीक में बाजार की स्थिति है, वहां पर मांग किस तरह की निकल रही है, उन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर में कीटों के बारे में हमने यहां पर बात की और कई तरह के कीटों से बचाव के उपाय भी आपने बताए, कुछ और बताएं कि इस मौसम में और किस तरह के कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है।
2: पिछले कुछ सालों से अंगूर में एक लाल रंग का तना छेदक है, उसका काफी ज्यादा आक्रमण होता जा रहा है और ज्यादातर बागों में, पहले मैं महाराष्ट्र में मिला था, अभी कर्नाटक में भी उसको हम काफी मात्रा में मिल रहे हैं। लाल रंग का जो तना छेदक है ये अंगूर का कीट नहीं था, ये मुख्यतः जंगल का कीट था जो कि अभी अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। नुकसान पहुंचाने का इसका तरीका क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में लाल रंग का एक जो कैटरपिलर टाइप का जो होगा वो छाल के नीचे पौधे के हमको खाता हुआ दिखाई देगा
1: जी।
2: एक जाल बनाएगा और विष्ठा होगी उसकी, वो ही छाल के नीचे ही उसका चिपका हुआ हमको दिखाई देगा। चूंकि ये छाल के नीचे खा रहा है, हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो चुका है। दो महीने तक ये छाल के नीचे खाएगा और उसके बाद में ये तने के अंदर जाके वहां पर खाना शुरू कर देगा। एक बार अगर वो तने के अंदर चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता
1: जी।
2: कोई भी कीटनाशक है जो इसके ऊपर में काम नहीं करेगा, एक बार अंदर चला गया तो कोई भी तरीका नहीं है इसे हम कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल रंग का जो तना छेदक है उसको हम कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें
1: जी।
2: करने का तरीका क्या है इसका कंट्रोल करने का, कि अगर हम बगीचे के अंदर में छाल है जो ढीला छाल है पौधे में, पुराने पौधे होते हैं ढीला छाल हो जाता है, उसको निकाल दें तो ज्यादातर कीट ये जो है उसी से ही नियंत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो कीट की एक आदत होती है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद में खेत में अन्य तरीके के बहुत से मित्र पशु होते हैं, जैसे लिजार्ड्स होते हैं और भी बाकी तरह के होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो ज्यादातर उसी में ही हमको नियंत्रित मिल जाएगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में अगर इस कीट का प्रादुर्भाव है बगीचे में तो हम क्या करेंगे कि ढीला छाल है उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में हम एक जो हमारा बायोलॉजिकल फंगस है, बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला, जिसका नाम है मेटारिजियम, उसका क्या करेंगे कि 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से सिर्फ मुख्य तना और जो कॉर्डोन से अंगूर के उसको हमको धोना है छाल निकालने के बाद में, 10 से 15 दिन बाद में उसको फिर से हम एक बार और एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा नियंत्रण हमको इसका मिल जाता है। काफी ही खतरनाक कीटक है, सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना है जिसमें हमको इसके लिए काम करना है, इसको नियंत्रण करना है। और इस समय जो किसान भाई और बहन है वो सचेत रहें कि आपके बगीचों में जाके देखें छाल के नीचे लाल रंग का कोई कीटक तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है जो कि आपको खा रहा है अंगूर के अंदर में, अगर है तो उसको उसी टाइम में उसका नियंत्रण कर लीजिए। क्योंकि एक बार ये 2 महीने चले गए फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे होने वाला जो नुकसान है वो काफी ही ज्यादा घातक होता है अंगूर के बगीचों के लिए और अंगूर की उत्पादकता काफी कम हो जाती है।
1: जी, ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते अगर कीट आपको नजर आ रहे हैं तो उनसे बचाव के जो उपाय है वो जल्द से जल्द अपनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चौधरी, अब आपसे जानना चाहेंगे बैंगन की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंगन के आकार को लेकर, रंग को लेकर, बीजों के बारे में भी आपने बताया कितने तरह के विकल्प जो है वो किसानों के पास होते हैं, ऐसे में किन किस्मों को उन्हें चुनना चाहिए?
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसान भाई भी इन बातों का ध्यान रख के ही प्रजातियों का चयन करें। जैसे बैंगन में आम तौर पे जो सबसे जो पॉपुलर प्रजातियां होती हैं वो जो बैगनी रंग का बैंगन होता है
1: जी।
0: और उसमें जो लंबी प्रजाति अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां अभी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गोल प्रजाति जो है, खास करके जो लोग भरता बनाते हैं तो लंबा बैंगन में बीज अधिक होता है, गोल बैंगन में आमतौर पर बीज कम होता है, तो जो भरता के लिए लोग गोल बैगन पसंद करते हैं तो उसमें आप पूसा उत्तम ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पूसा हाइब्रिड 9 है, जो हमारा वाराणसी का सेंटर है उसकी काशी संदेश है, इनका आप चयन कर सकते हैं। जब आपने रंगों की बात की, जैसे आजकल हरे रंग का बैगन है
1: जी।
0: वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है, हमारे संस्थान के यहाँ से भी पूसा हरा बैगन 1 विकसित किया गया है तो इसका चयन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल सफेद रंग का बैगन जो है, और कुछ बैगन ऐसे

0: भी हैं जो बिल्कुल देखने में, बैगन को अंग्रेजी में हम एग प्लांट कहते हैं, जो देखने में बैगन बिल्कुल अंडे की तरह होता है। तो ऐसा भी अगर बैगन आप लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सफेद बैगन 2 और एक है पूसा सफेद बैगन 1, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं हमारे संस्थान की भी, पूसा अंकुर है जो महाराष्ट्र के लिए, जो मैं बात कर रहा था जो वेरीगेटेड बैगन होता है उसमें आप पूसा बिंदु है, इनका आप चयन, जो छोटा बैगन होता है लेकिन इसमें बीज थोड़ा अधिक होता है इसलिए जब सब्जी बनाते हैं तो इसके जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, यानी वो गलती नहीं है। तो जिस इलाके में जैसी डिमांड हो ऐसी बैगन की प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास है और इन प्रजातियों का चयन करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अंगूर के बागों को थ्रिप्स और माहू से कितना खतरा है और किस तरह से इससे बचाव के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
2: थ्रिप्स सबसे महत्वपूर्ण कीट है अंगूर के अंदर में, जो अंगूर में नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से। अभी जो वेजिटेटिव सीजन है, जो ऑफ सीजन हमारा का चल रहा है, इसमें जब नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है शाखाओं की, तो उसमें थ्रिप्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जमीन से ऊपर कोई भी अंगूर का भाग जो कि कोमल है उस पे थ्रिप्स नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके अंगूर में अभी भी आपको वृद्धि चाहिए तो नई ग्रोथ पे आपका थ्रिप्स दिखाई देगा। बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर तेज बारिश आ गई तो थ्रिप्स 2 या 3 दिन के लिए अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। उस समय आपको कोई भी कीटनाशक की फवारणी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मौसम की भविष्यवाणी देखें कि अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी है क्या। अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, तो थ्रिप्स उसमें बिल्कुल कम हो जाएगा। पर यह नियंत्रण आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नियंत्रण नहीं मिलेगा आपको। तो हमें कीटनाशक है उनका प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है, तो जो पंजीकृत कीटनाशक है उनका प्रयोग हम अंगूर के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि जिन बगीचों में वृद्धि पूरी हो चुकी है, हमको ऑफ सीजन में क्या चाहिए कि कैन डेवलपमेंट करना है, कैन का विकास हो गया है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो कि अतिरिक्त वृद्धि है जो हमें नहीं चाहिए, तो उस पे थ्रिप्स का नुकसान आ सकता है, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है अंगूर के अंदर में। पर वो ग्रोथ अननेसेसरी है, हमको वो नहीं चाहिए। अगर उस पे थ्रिप्स का प्रादुर्भाव होता है तो भी हमें उस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अतिरिक्त वृद्धि है, उसको हम हाथ से अगर टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे, समय समय पे 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में एक बार उसको निकाल देंगे, तो थ्रिप्स अपने आप से उसके अंदर में नियंत्रित हो जाएगा। तो हमें कुछ कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी कम खर्चे के साथ हम इसको नियंत्रण कर
3: सकते हैं। झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: जी, सबसे पहले तो जो ये मौसम है इसमें हमें पोषक प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम आमतौर पर चाहते हैं कि किसान भाई की उपज ज्यादा से ज्यादा हो, जो किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है लेकिन उन्हें गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है। कम से कम हमें 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम कुछ बेबेडिया बसियाना या जो और भी हैं, जैसे एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, अन्य प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक मींस जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इनको भी अगर हम उपयोग करते हैं तो खेतों की जो हेल्थ है, मृदा की जो सेहत है वो अच्छी बनती है। इसके अलावा हमें खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं वो भी साफ रहते हैं, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रोग और कीटाणु भी कम मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई इसमें अगर चाहें तो हर्बिसाइड है एक, जैसे पेंडीमिथिलीन है जो स्टॉम्प के नाम से मिलती है, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से जब हम रोपाई करते हैं उससे जस्ट पहले हम चाहें तो इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन तक आपका खेत जो होगा वो वीड फ्री रहेगा। उसके बाद फिर आप जब भी हमको मिट्टी चढ़ानी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो 35-40 दिन के बाद आप एक बार हैंड वीडिंग करा सकते हैं और फिर पौधों पे जड़ों पे मिट्टी हम चढ़ाते हैं, तो इससे उनको एरेशन भी अच्छा मिलता है और उनको जो पोषक तत्व स्वयं में हम स्प्लिट डोज जो हम डालते हैं, आमतौर पर जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो हम लोग संस्तुति करते हैं कि 100-60-60 ये हम डाल सकते हैं।
1: जी जी,
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, कैसे हमें मिर्ची, बैंगन और टमाटर की जो फसलें हैं उसमें कैसे उसमें कीटों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कीटों से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमने ये जाना कि हमें उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उन्हें कैसे उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, साथ ही जो मिट्टी अभी बारिश की वजह से धूल के नीचे उतर जाती है उसे कितने दिनों में हमें फिर से चढ़ाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयास हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। तो किसान साथियों, यहां पर अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक दिल से जुड़ा हुआ शो, आपका अपना जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर के साथ। दोस्तों, जिंदगी कभी सीधी नहीं होती, कभी खुशियों से भरी होती है, कभी इम्तिहान लेती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली शख्सियत, मिसेस विनीता सोमानी जी, एक होममेकर, एक सोशल वर्कर, एक बेकर और एक एंटरप्रेन्योर, बट सबसे बढ़कर एक फाइटर, एक सच्ची फाइटर। तो आइए मिलके वेलकम करते हैं विनीता सोमानी जी का।
2: यस तनुषा,
1: तो विनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
2: थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आपसे बात करना, सब लिस्नर से बात करना, एंड शायद मैं कुछ किसी की एक की भी जिंदगी सुधार पाऊँ तो बहुत खुशनसीब समझूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, जिस जज्बे से आपने अपनी जिंदगी जी है, आई एम श्योर आप एक नहीं 100,000 लोगों के जीवन को टच करते हैं और हम इक्वली एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, बिकॉज आप एक इतनी स्ट्रांग, इतनी क्लियर और इतनी लेवल हेडेड शख्सियत हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर मेरे श्रोतागण भी बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए डीप डाइव करते हैं आपकी जिंदगी में मैम। पहला सवाल हमारा यही है कि आपने जीवन में बहुत लंबा सफर एक होममेकर के रूम में बिताया, मतलब आपके लिए बहुत लंबा टाइम आपने घर में, अपने घर को संवारने में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बड़ा करने में, उनको आगे ले जाने में, अपने आप को भूल के उस सब प्रोसेस में लगाया, लेकिन साथ ही आप हमेशा सोशल कॉजेस से हमेशा एक्टिवली जुड़े रहे। वही वो एक ऐसा पार्ट था आपकी लाइफ का जो हमेशा एक्टिव रहा, इवन इफ वो फोरफ्रंट पे नहीं था। तो ये जो सेवा का जज्बा है, ये क्या आपके बचपन से जुड़ा हुआ है? कोई ऐसा इंस्टेंस है आपके बचपन का या कोई घर का माहौल ऐसा है जिसने आपके अंदर ये जज्बा जगाया, या सिर्फ समय के साथ आपके अंदर ये जज्बा जगा? किस तरह से आपके अंदर ये जो ह्यूमेन कॉन्सेप्ट है, ये जो ह्यूमेन टच है आपकी पर्सनैलिटी का, ये कैसे डेवलप हुआ?
2: यही बोलूंगी कि देखिए, बचपन से जो देखते आते हैं उसका असर जरूर पड़ता है आपकी जिंदगी में। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत परोपकारी थे। मेरे फादर तो गरीबों के जैसे बोलते हैं मसीहा जैसे थे, बहुत वो शायद अमीरों के किसी फंक्शन में ना जाए लेकिन अगर स्टाफ के किसी ने बुलाया है तो वो 100% जाते थे और वो यही कहते थे बेटा बड़े फंक्शन में कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। लेकिन गरीबों, मतलब गरीब नहीं बोलूंगी बट थोड़े से जो अंडरप्रिविलेज्ड हैं, उनके यहाँ जाओगे तो वो बहुत, जो स्वागत आपको वहां मिलता है ना, उससे आपको आंखें भर आती हैं। फ्रेंकली वो बहुत ज्यादा करते थे, मंदिर में बहुत विश्वास रखते थे, मंदिर में जितने लोग भी गरीब लाइन से बैठते थे एक थैला भर के चेंज ले जाते थे, सबको देते थे रास्ते भर में। तो ये देखते देखते कहीं ना कहीं किसी मन के किसी या दिमाग के किसी कोने में ये सब बातें बैठ जाती है। और फिर उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि आपकी कमाई का एक हिस्सा दान में जरूर जरूर देना चाहिए, कभी भी देने से कम नहीं होता है, आपकी इनकम हमेशा बढ़ता है, आप दो दोगे आपको 10 मिलेगा। एंड बिलीव मी, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है कि कभी लगता है कि अरे ये डिमांड आई है किसी संस्था की लेकिन इतना दे दें कैसे देंगे, बट देते हैं एंड यू वोंट बिलीव, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ये एक शुरू से देखते आए हैं। और फिर दूसरा, मेरे मम्मी पापा कैंसर से पीड़ित थे दोनों, तो उनकी तकलीफ देख के ना बिखरी जाती थी और उस समय इतनी एडवांस दवाइयां भी नहीं होती थी। फिर जब वो लोग गुजर गए तब और मेरा शादी हुई तो ये जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे फिर मैं अपनी सेवाएं देने लगी। یہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ میں بھی اس تکلیف سے گزروں گی, لیکن ہاں ان کے بیچ پیشنٹس کے بیچ بیٹھ کے ان کو سمجھانا, جو بہت فورتھ سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں ان کے گاؤں والوں کو سمجھانا کہ مت اپنا زندگی خراب کرو, مت سب کچھ داؤں پہ لگاؤ, یہ تو جائے گا ہی جائے گا بیکاز نہیں ہے اب اپائے کچھ. تو یہ سب کرنے میں بہت تسلی ملتی تھی, بہت بہت تسلی. تو ایک طرح سے دیکھیے بیچ تو بچپن میں ہی بو دیا تھا ماں باپ نے, اور دھیرے دھیرے پھر ایک کرتے کرتے کرتے کرتے من بہت خوش ہوتا ہے, بہت اچھا لگنے لگتا ہے. تو یہی سب کرتے ہوئے آئی تھنک یہی ہے.
1: تو کیسے آپ نے اپنے جیون میں فلانتھروپی کو کس بیوٹیفل طریقے سے اپنایا, اپنی فیملی میں دیکھے, اپنے فیملی کے سٹرگلز دیکھے, اور اس کو اپنے آپ کے اپنے جیون میں ایک امپیڈیمنٹ نہیں بننے دیا بلکہ اپنی گروتھ کو فیول کرنے کے لیے کیٹلسٹ کی طرح یوز کیا. اور یہی میں ہمارے شروتاؤں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جیون میں جب سٹرگلز آتے ہیں تو وہ آپ کا امتحان لیتے ہیں, اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو ایک بیٹر ورژن کی طرف لے کے جائیں, جس طرح کے ایکسپیرینسز ونیتا جی نے ابھی ہمارے ساتھ ساجھا کیے. میم آئی ایم ریئلی سوری فار دا لاس آف یور پیرنٹس. میں سمجھ سکتی ہوں کسی پیرنٹ کو لوز کرنا کیا ہوتا ہے, بٹ آپ نے بہت ہی گریس کے ساتھ اپنے اس پورے لاس کو ڈیل کیا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے شروتاگن اس ٹرینڈ سے کچھ پروتساہن لیں اور اپنے جیون کو اسی طرح شیپ کریں کہ جب کوئی پریشانی آئے, چاہے ہیلتھ کی, چاہے فائنینشیل, چاہے کسی بھی طرح کی, تو اس کو ایک امپیڈیمنٹ سے زیادہ اپنے لیے ایک فیول کی طرح یوز کریں اور آگے بڑھیں, اور اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے جیون کو سواریں. تو دوستو, جب زندگی امتحان لیتی ہے, حوصلہ ہی سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. سنتے ہیں ہمارا آج کا پہلا پریرنا دینے والا گیت, رفو, فلم تمہاری سلوک.

0: क्यों क्या हुआ? आई डिड याद ही नहीं आया कि भाई अच्छा इस वजह से भी कुछ हो सकता है. तब बोले कि टेस्ट तो आपका पॉजिटिव आया है. फिर तो जो आंसुओं की झड़ी लगी है, मैं उस सब में तो कोई स्ट्रेंथ वेंथ नहीं थी, सच्ची बताऊं आंसू ही आंसू थे. तो बाद में तो मैंने डॉक्टर्स को बताया, तब बोले कि तुम्हारी टंकी में पानी बचा है कि बचा है, या तुमने अपने आंसुओं से ही भर लिया. ये जरूर था, उस समय बहुत हिल गई थी मैं
1: जी.
0: बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करी, लेकिन जब मैंने फिर अपने आप को संभाला, यही सोचा कि इस तरह से मैं अगर टूटूंगी तो हस्बैंड बच्चे सब कैसे, मतलब और तो कोई है नहीं परिवार में, बस हम चारों ही हैं, तो कैसे संभलेंगे सब लोग. फिर ये सोच करके, और देखिए मम्मी पापा की तकलीफ भी जब याद आती थी तो दिल बहुत कांप उठता था कि बाप रे इतनी तकलीफ. लेकिन उस समय के दौर में और इस समय के दौर में एडवांटेज ये है कि दवाइयां बहुत एडवांस हो गई हैं, उस समय इतनी दवाइयां एडवांस नहीं होती थी. फिर ये सोच के कि नहीं अब तो भगवान साथ है, ये जरूर मैं कहूंगी कि कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये मेरा अंत है, ये मेरा पॉजिटिव नेचर बोल दीजिए, या मेरा चिन्मय मिशन की टीचिंग बोल दीजिए, या मैंने विपश्यना जो 2 साल किया है वो बोल दीजिए. कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ ये तो मेरा अंत है
1: जी.
0: परिवार का, दोस्तों का साथ, भगवान में अटूट विश्वास, ये सब मिला के बस यही लगा कि ये परीक्षा की घड़ी है, धीरे धीरे बस हिम्मत रखूंगी तो जरूर निकल जाएगी. इन सब ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया. दोस्तों का साथ, आते थे रोज, बैठते थे घंटों, खाना बना के लाते थे, अपने घर का खाना. तो उस समय जो भी कीमो ईमो से गुजरे होंगे वो समझेंगे कि बहुत तबीयत खराब होती है कीमो में, लेकिन हाँ सबका साथ, ये समय भी गुजर गया बहुत बहुत स्ट्रांगली.
1: बताएं क्या बात है मैम, क्या जज्बा है. और सल्यूट है हमारे सारे कैंसर सर्वाइवर्स को, आपको, और बहुत सारे उन लोगों को जो इस बीमारी से लड़ते हैं. सिर्फ जो उससे गो थ्रू करता है वो समझ सकता है कि वो क्या प्रोसेस होता है और कितना रिग्रेस प्रोसेस होता है वो पूरा थेरेपीज का. मैं समझ सकती हूँ किस तरह से वो समय गुजरा होगा आपके लिए, और बहुत सारी संवेदनाएं आपको. और खैर आपने उस समय भी इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, आपके लिए न्यू नॉर्मल हो गया था बेसिकली. वो आपका नॉर्मल था कि हर बार इंजेक्शन लगवाना एंड देन ठीक हो जाना, कि जब एक्चुअली इट हिट यू तो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक्चुअली इट हैज कम, लाइक इट इज देयर टू स्टे. तो ये इटसेल्फ शो करता है कि आपने कितना समझौता किया समय के साथ, कितना एक यू मेड पीस कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. बहुत विच इज ब्यूटिफुल एंड विच इज कमेंडेबल, एंड आई एम सो हैप्पी कि यू कुड कम आउट ऑफ इट. एंड आज हम ये बातचीत कर रहे हैं मैम. अब हम थोड़ी पॉजिटिव चीजों की तरफ चलेंगे, जहां पे आपने अपने पैशन को अपना पर्पस बना लिया. आई थिंक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जैसे आपने बताया चिन्मय मिशन से आप जुड़े हैं, यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू हैव अ बिलीफ इन गॉड एंड अनडाइंग बिलीफ एंड फेथ. तो आई थिंक योर स्पिरिचुअल सेल्फ ऑल्सो अलाइंड यू वेरी वेल टू कीप योर सेंटर. जी
0: एब्सोल्युटली
1: जी. तो उसी से अगर जब आपके पैशन की बात करें, आपके कुकिंग की पैशन की बात करें, और एपेटाइट को शुरू करने की जो आपकी जर्नी थी वो कैसी थी, उसने आपको क्या पहचान दी, और आज जब आपको पूरा देखते हैं, अपने पूरे सफर को देखते हैं, अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है मुश्किलें ज्यादा थी या आपकी अचीवमेंट ज्यादा थी? आपके लिए सफर किस तरह से रहा?
0: उस समय तो अचीवमेंट का तो फ्रेंकली ध्यान ही नहीं आया था, बस ये सोचते थे कि ये साल निकलेगा, पूरा साल लग जाता है ट्रीटमेंट कराने में, रिकवर करने में. तो यही था कि ये साल निकलेगा कैसे. और उस समय परिवार का साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत जरूरी होता है. मेरे हस्बैंड बोले तुम ना गैराज को कन्वर्ट कर देता हूँ, और सब लोग तुमको इतने सालों से मांग रहे हैं क्लास करो, तुम पीछे हट जाती हो कि नहीं अभी नहीं, तो तुम करो. तो तुम ये साल अपना रिसर्च करो, क्लास शुरू करो, धीरे धीरे करो. क्योंकि कीमो लगती थी, हर हफ्ते 16 कीमो लगी, फिर उसके बाद तबीयत खराब होती थी, फिर 2-3 दिन रिकवर करने में लगता था. अच्छा, उसी साल मैंने मेरी बेटी की शादी भी करी, सगाई की शादी. तो पूरे साल में ये सब कुछ करके, और फिर मैंने एक एक धीरे धीरे करके क्लास करना शुरू करा. वो सर में वो बांधती थी दुपट्टा, क्योंकि कीमो के बाद बाल जाने लगते हैं, और वो जो बाल जाते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो ट्रॉमा शायद दवाइयों से ज्यादा होता है, कि जब वो गुच्छे की गुच्छे आपके हाथ में निकलते हैं ना, वो ट्रॉमा तो
1: बिल्कुल आपकी कॉस्मेटिक जो ब्यूटी है वो पूरी जा रही है आपके आंखों के सामने.
0: तो उस समय तो फिर मैंने विग बनवाया और वो किया, दुपट्टा लगाती थी, सब कुछ, बाहर नहीं निकलती थी
1: जी.
0: तो फिर उसके बाद फिर क्लास कन्वर्ट किया इन्होंने क्लासरूम, तो शुरू में मुझे लगा कि अरे लोग ऐसे सहानुभूति की वजह से मेरे क्लासरूम में आ रहे हैं कि चलो इसका हौसला बढ़ाया जाए, इसको

0: इनकरेज किया जाए, लेकिन जब क्लासेस की में स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, क्लासेस की संख्या बढ़ने लगी, तब मुझे खुद पे भी विश्वास थोड़ा ज्यादा बढ़ा कि भाई नहीं, ठीक ठीक ही सिखा रही होंगी जो इतने बढ़ रहे हैं, कि मुझे क्लासरूम को एक्सटेंड करना पड़ा गराज को।
1: राइट।
0: और फिर धीरे धीरे अवार्ड आने लगे, रिकग्निशन बढ़ी, तारीफ मिली, तो वो सबसे तकलीफ तो मैं फ्रेंकली बिल्कुल भूल गई। इतना मजा आने लगा मेरे को स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सबसे। आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू देम। और मेरे को लगा कि मैं अपना अगर ये कुछ गिफ्ट या हुनर शेयर कर पा रही हूँ, और लोग जैसे जब मैं केटरिंग कर मतलब सामान बना के भी भेजती थी लोगों को, और जब लोग बोलते थे कि आंटी आपने उसके यहाँ ये सामान भेजा था क्या, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल आपका था, सच मानिए इतनी खुशी होती थी कि भाई यू नो इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, इतना लोग तारीफ कर रहे हैं। तो वो सबसे फिर तकलीफ तो बिल्कुल भूल गई, सच्ची बताऊं वो दौर था तकलीफ का, लेकिन वो सबसे कोई चीज में भी अपने आप को आप इन्वॉल्व कर लें तो आपकी तकलीफ नेगेटिव हो जाती है। लेते लेते सोचते रहे कि अब मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है, तो फिर वो और बहुत बड़ा महसूस होता है।
1: करेक्ट।
0: तो उसको निगेट करिए, उसके बारे में सोचिए मत, और पॉजिटिव रहिए।
1: बिल्कुल, अपने दिमाग में मेंटल वेब्स मत क्रिएट करिए, अपने पैशन को समझ के उसको फॉलो करिए, ऐसे अंधेरे के समय में भी लाइट ढूंढिए। जैसे मैम ने गराज से शुरू किया, विच इज कमेंडेबल, अगेन मैं बहुत ही अमेज्ड हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे श्रोतागण इसे सुने और समझें कि कई बार हम यही सोच के रह जाते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। आप जो हमें सुन रहे हैं श्रोतागण, आप समझें कि आप अपने घर के गराज से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, अगर आपका पैशन, अगर आपका जो मोटिवेशन है वो करेक्ट है और स्ट्रीमलाइंड है, और आप सच में कुछ करना चाहते हैं जीवन में। मैम, अगर आपकी कोई फेवरेट रेसिपी के बारे में अगर बता सकें, कोई भी एक रेसिपी जो हमारे श्रोतागण को बता सकें, जो वो नोट कर सकें, और ऑल्सो कुकिंग का जो पैशन है वो आपको बचपन से था या वो अगेन वो विथ टाइम डेवलप हुआ, ये जर्नी कैसे डेवलप हुई? कुकिंग की तरफ जो आपका प्यार है वो शुरुआती दौर से था या कैसे डेवलप हुआ? एंड अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं एक रेसिपी छोटी सी, कोई भी, अगर केक की रेसिपी हो या एनी फेवरेट डिश ऑफ योर्स।
0: जी, तो सच बताऊं तो मैं शादी तक तो पहले तो स्कूल, फिर उसके बाद हॉस्टल, तो मुझे तो दालों के नाम भी नहीं मालूम थे कि ये अरहर, मेरे को सारी पीली दाल एक सी लगती थी।
1: जी जी, हमारी भी यही हालत है, ऑरेंज वाली दाल।
0: एग्जैक्टली, तो ये मालूम ही नहीं था कि कौन सी दाल कैसी है क्या है। शादी के बाद 22 साल में तो शादी ही हो गई थी कॉलेज से निकलते के साथ ही, बट मेरे हस्बैंड इज अ बिग फूडी, उनको बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, मैं कानपुर की लड़की हूँ, वहाँ पे उस समय तक कुछ इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, खाली साउथ इंडियन होता था या नॉर्थ इंडियन होता था, बहुत ज्यादा क्विजींस थे नहीं कानपुर में।
1: बिल्कुल।
0: बट माय हस्बैंड इज वेरी वेल ट्रेवल्ड और बहुत शौक है खाने का, तो साथ साथ जाना उनके हर बार, और फिर शेफ को बुलाना, कैसे बनाया है, क्या है, दल्ला दलाल की किताबें लेके आए, तुम सीखो। हाँ, और फिर आपको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि इतनी मैं इन्वॉल्व हो गई, मैं तल्ला दलाल की इतनी जबरदस्त फैन हो गई कि मैंने उनकी सारी रेसिपीज फॉलो करी, आई एम मोर ऑर लेस अ सेल्फ मेड कुक। फिर मैंने उनको इनवाइट किया, मैं एक क्लब की प्रेसिडेंट थी उस समय, शुभम क्लब की। फिर मैंने उनसे उस समय फिर नया नया मैंने ईमेल लिखना शुरू सीखा, उनको ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, मैम आपको आना पड़ेगा, मैम आपको आना पड़ेगा। फिर वो आई हमारे पास, रही हम 2 दिन का क्लास किया। आई कांट बी मोर थैंकफुल टू माई हस्बैंड टू प्रमोट मी इन दिस फील्ड। खाने का पूरा क्रेडिट जो मैं दूंगी वो उनको ही दूंगी कि उन्होंने इनकरेज किया। बुरा था तो बोला कि बुरा है, ये नहीं कि नहीं अच्छा ही है, तुमने बनाया तो अच्छा है, ऐसे नहीं। अगर खराब है तो बस बहुत खराब है, यू हैव टू इम्प्रूव,
1: इम्प्रूव, राइट।
0: हाँ, तो ये सब करके
1: एक सही क्रिटिक होना बहुत जरूरी है। जी,
0: एक सही क्रिटिक होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हर बात में आप उसका मन रखने के लिए तारीफ कर दे।
1: जी,
0: सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रेसिपी आप बताइए, केक की तो फिर बहुत प्रोपोर्शन वगैरह चाहिए आपको। मैं
1: एनी इजी रेसिपी जो बहुत बेसिक घर पे हमारे श्रोतागण आज ट्राई कर सके या कल डिनर में ट्राई कर सके।
0: हाँ, तो उसको आप ऐसे करें, आप जैसे हम लोग जो चार्ट बनाते हैं ना
1: जी,
0: तो आजकल मैं चार्ट को ग्लासेस में देती हूँ।
1: ओ वाओ।
0: तो आप नीचे में, हाँ, तो उनको शॉर्ट ग्लासेस में, आपको आपकी अगर आपको बाहर भेजने तो प्लास्टिक ग्लास में भी दे सकते हैं। छोले बनाए, या हम लोग मटरा बनाते, मटरा जो सफेद मटर होता है उसको रात को भिगोए, सुबह में 7-8 सीटी दें, उसमें उसको कुछ सेकने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको खाली हल्का सा घी डाल के, जीरा डाल के उसको भून लीजिए
1: जी,
0: और उसमें फिर नमक और हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दीजिए। फिर आप अलग से टिक्किया बना ले आलू की, और अगर आलू में आप मैदा नहीं डाल के कोई और आटा डाल दे या कॉर्नफ्लोर डाल दे तो उसे कुरकुरी भी बनेगी, नुकसान भी कम करेगी। वो टिक्किया बना लें, फिर आप नीचे में हरी चटनी लगाएं, थोड़ी सी मीठी चटनी लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा मटरा डालें, नहीं सॉरी पहले मटरा डालें, थोड़ा हरी चटनी मीठी चटनी, फिर टिक्किया डालें, फिर एक लेयर उसका आप मटरा का दें, और फिर आप थोड़ी सी और दोनों चटनियां दें और ऊपर टॉप कर दें आप धनिया से। इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को ना ये ऐसे टिक्की छोला सब जगह खाते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता है, पर उसको एक प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट आल्सो, कि आप खिलाओ लेकिन इसको जब आंखों को से देख के अच्छा लगेगा लोगों को तो जरूर खाने का मन करेगा, लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाने अच्छा लगेगा खाना तो ही लोग दोबारा मांगेंगे, खाली देखने में अच्छा है इसलिए नहीं मांगेंगे। तो देखने में भी अच्छा प्रेजेंट करिए और टेस्ट पे बहुत बहुत ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल, मेरे मुंह में तो पानी आ गया यार, ये टाइम इतना अच्छा है चाट पकोड़े खाने का, एकदम ठंडा ठंडा चाट खाने का, तो बहुत ही फ्लेवर आ गया मेरे मुंह में, मैं जरूर ट्राई करूंगी, आई एम श्योर मेरे श्रोतागण भी जरूर ट्राई करेंगे। और मैम आपके जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो अनडाइंग स्पिरिट है और आपकी जो फाइटर स्पिरिट है कि ये करना है तो करना है, अपने ड्रीम्स को एक प्रॉपर शेप देना, उनको एक क्लैरिटी से देखना और उनपे काम करना, जैसे कि मैम ने बताया कि तरला दलाल तक को मैम ने अप्रोच किया, उनको मेल्स पे मेल्स किए और अल्टीमेटली वो जरूर उनके प्रेजेंस में आई, उन्होंने उनके साथ एक मोमेंट शेयर किया। तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जीवन में, अगर आप तय कर लें, अगर आप ठान लें तो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने सही मोटिवेशन, अपने सही एक्शंस के साथ, अपने सही इंटेंट के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत उड़ान रही मैम आपकी, इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, किनारे फिल्म क्वीन।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक विनीता मैम। अब मेरा आज का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंट्रीगिंग सवाल जिसको पूछने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ, आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स तो मिले बट आपको शेफ संजीव कपूर जी से रिकॉग्निशन मिला, तो मैम ये सफर कैसा रहा, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका एक्सपीरियंस क्या था और इस पूरे वाकया के बारे में साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: तो फोन आया कि भाई आपको चूज किया गया है दिल्ली में, ऐसे सब्जेक्ट पूरे इंडिया से हम सब जगह कंपेयर करते हैं कि कहाँ के शेफ्स अच्छे हैं, कहाँ के क्लासेस अच्छे हैं, ये तो आपको दिल्ली आना है और ऐसे ऐसी तारीख को आना है, शेफ संजीव कपूर आपको अवार्ड देंगे। मैंने कहा किस चीज का अवार्ड देंगे, बोले मोस्ट पॉपुलर क्लासेज इन जयपुर।
0: तो
1: मैंने अपना तारीख देखी, मैंने कहा अप्रैल फूल तो नहीं है, कोई मेरा काम खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लग रहा था।
0: करेक्ट।
1: सो आई सेड लेट मी सी सम कजिन पुलिंग माय लेग और व्हाटएवर, बट फिर वो जब सच हुआ, वो सपना, मतलब एक सपना ही बोलेंगे इसको, सोचा नहीं था कभी। सारा दिल्ली गए हम लोग, पूरा परिवार मेरा साथ में गया, सब लोग आए फंक्शन में, संजीव कपूर जी ने के साथ फोटो खिंचवाई, उनसे अवार्ड लिया, मैं आपको बता नहीं सकती तनुषा, इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट, इट वॉज वेरी वेरी एकदम रोमांचित करने वाला जो पल था ना वो था। एक बार तो आंखें भी भरी आई कि अच्छा भाई क्या किया है मैंने जो ये डिजर्व कर रही हूँ, बट
0: अपने आइडल्स के सामने उनसे अवार्ड लेना,
1: मतलब तरला जी को जयपुर बुलाना, संजीव जी से अवार्ड मिलना, ये दो चीजें तो माइलस्टोन
0: है। जी जी बिल्कुल।
1: और फिर वही लगता है ना कि भाई कभी जब तकलीफें सब अपनी भूल जाते हैं, मतलब आप कुछ खराब हो, जैसे कुछ खट्टा आपने खाया उसके ऊपर मीठा खा लिया तो खट्टापन सब भूल जाते हैं, तो उसी तरह से सब तकलीफें भूल के जो इतने सुनहरे पल आए ना, तो तकलीफें तो बहुत पीछे छूट गई, ये सब अच्छा ही अच्छा टचवुड होने लगा।
0: भगवान ने आपको बहुत ही एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट किया फॉर ऑल द लॉसेस एंड ऑल द पेन।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
0: आई थिंक आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं और एक चोजन वन है। और मैं फिर से कहना चाहूंगी अगले सवाल में, मैं चाहती नहीं हूं इसको दोबारा लाना, बट मैं इसलिए लाना चाहती हूं हमारी इस बातचीत में क्योंकि लोग इस बात को समझें कि कई बार मुश्किलें, सिर्फ एक मुश्किल आके या दो मुश्किल आके जीवन रुकता नहीं है, मुश्किलें बार बार आती हैं और बार बार आपको उसी जज्बे के साथ उस मुश्किल से लड़ना पड़ता है क्योंकि जीवन है और जीवन आपको ऑप्शंस नहीं देता, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। तो मैम जब आपको दोबारा कैंसर से डील करना पड़ा, वो कौन सा साल था और वो कैसा सफर था, क्या हुआ उस समय उस दौर में, वो बताएं अगर हमारे श्रोताओं को। और आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैसे हेल्प किया, अगर चिन्मय मिशन की कुछ गाइडलाइंस या जो उनकी अंडरलाइंग टीचिंग्स हैं उसके बारे में उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया, अगर उसको जोड़ के हमारे को बता सके आप इस सवाल का जवाब।
1: जी यहाँ मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अपन ने सबने सुना है कि मैनिफेस्टेशन होता है। अब ये मैनिफेस्टेशन मतलब आपके मन में जो भी चीजें घूम रही हैं, अच्छी या बुरी। तो जब मैं 2010-2011 में कैंसर से गुजरी, फिर उसके बाद हमेशा एक कहीं ना कहीं कोने में मन के और दिल के कोने में ये डर जरूर रहता था कि सब लोग कहते हैं 10 साल बाद वापस कैंसर आ जाता है। अरे अब जब मेरे 10 साल पूरे होने को हुए, मेरे को लगा रहे 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, वापस तो नहीं हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मेरी विग और मेरी जो प्रोस्थेसिस ब्रा थी और जो सामान था सब उस समय का, सब मैंने संभाल के रखा हुआ था कि अगर मुझे कभी कैंसर दोबारा हुआ तो सब मुझे काम आ जाएगा, जो मैंने बहुत गलत किया मेरे हिसाब से। मेरे को उस समय डोनेट कर देना चाहिए था और सोचना नहीं चाहिए था उसके बारे में, लेकिन ये मन में एक चोर जिसको बोलते हैं वो हमेशा रहा कि अरे दोबारा तो नहीं आ जाएगा। और आप देखिए, अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, ये मैनिफेस्टेशन सच में ट्रू हुआ। मुझे 10 साल बाद 2020 में दोबारा से हुआ कैंसर, दूसरी वाली ब्रेस्ट में, फिर वही सब कुछ। और इस बार तकलीफ बहुत ज्यादा थी क्योंकि इस बार मेरा थर्ड स्टेज आ गया था, सेकेंड स्टेज था। वही है कि भाई अच्छा नहीं, टेस्ट करा लेंगे, अब ये जरूरी है, अभी वो जरूरी है। तो एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगी श्रोताओं को कि प्लीज किसी को भी, किसी भी चीज को निग्लेक्ट मत करिए, तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और एक्शन लीजिए, तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है।
0: बिल्कुल
1: बस फिर वो कराया, फिर वो तकलीफ ज्यादा।

0: करना, बट इट वॉज वेरी वेरी बैड, इट वॉज वेरी बैड, बट गॉड हैज बीन सो स्ट्रांग. और वही है चिन्मय मिशन में हमारे स्वामी जी हैं, साउथ अफ्रीका रहते हैं, स्वामी अभिदानंद जी, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे. मैं जाती हूँ जहाँ जहाँ उनके प्रवचन होते हैं, जब जब जा पाती हूँ. और फिर वो ये बोले मेरे को कि तुम स्ट्रांग रहो, तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो
1: जी.
0: मैं सुबह शाम दोनों टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, सुबह जब भी आंख खुलती है तो मैं लगा लेती हूँ, रात को जरूर करती हूँ. बोले आपको अगर किसी चीज से स्ट्रेंथ मिलेगी तो सिर्फ भगवान की पूजा से, आपकी खुद की मन की स्ट्रेंथ से इससे मिलेगी. नेगेटिव तो तुम्हें होना ही नहीं है, सब अच्छा है. और अगर आपको इस जन्म की नहीं है, आपके पता नहीं किस जन्म के प्रारब्ध हैं जो आपको भोगने पड़ रहे हैं, तो आप हताश मत हो, आप स्ट्रांग हो, गुरु जी में विश्वास रखो, स्वामी चिन्मयानंद जी में, और आप पूजा पाठ करिए. पूजा पाठ से विपश्यना, मैंने 2 साल विपश्यना किया, वो सब प्रैक्टिस से ना आपको बहुत, कहने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, पर आप जो भी करके देखेगा वो रियलाइज करेगा कि आपको मेंटली कितनी स्ट्रेंथ मिलती है.
1: बिल्कुल,
0: जबरदस्त स्ट्रेंथ मिलती है.
1: बिल्कुल,
0: तो पॉजिटिव सोचिए. और जो भी कोई अगर भगवान कुछ देता है नेगेटिव, तो सोचो कि भाई हाँ ठीक है, आपको मिली है, लेकिन आपको भगवान ने इस शक्ति भी दी है कि मैं इसको डील कर पाऊं.
1: बिल्कुल.
0: और रोज सुबह उठ के भगवान को आपको शुक्राना देना है हर चीज के लिए, हर पल के लिए, इस जिंदगी के लिए, इस अच्छी सेहत के लिए. आप उठिए, भगवान को छोटी छोटी चीज के लिए शुक्राना करिए.
1: बिल्कुल.
0: इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं आजकल, ग्रेटिट्यूड बहुत पॉपुलर हो रहा है, बट इसकी पावर इज वेरी स्ट्रांग. जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे कि ये मेरे साथ अच्छा है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरा घर धन धान से भरा है, मेरा परिवार सुख शांति में है, तो ये सब आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है.
1: बिल्कुल सही बात है मैम. बहुत ही टफ
0: में है, तो ये सब आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है.
1: बिल्कुल सही बात है मैम. बहुत ही टफ लाइफ रही, बट साथ ही मैंने कहा ना कि एडिक्वेटली आपको कॉम्पनसेट जरूर किया, आपको आपको टैलेंट्स दिए, आपको अवार्ड्स दिए, रिवॉर्ड्स दिए, बट हाँ आपको हर तरह से भगवान ने टेस्ट किया. और दोस्तों, आप जिस तरह से मैम ने बताया कि अगर कोई तकलीफ है तो उसे उसी समय एड्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे कैंसर केसेस इसीलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप समय पे टेस्ट नहीं करवाते और वो स्टेज बढ़ जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और अगेन, जिस तरह से मैम ने बताया कि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये सब जो आप इस जीवन में डील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेट्स हैं जो आपको चुकाने पड़ेंगे, जिनसे आप भाग नहीं सकते. तो कोशिश करिए कि उनको हंसकर चुकाएं, और क्योंकि रोने से तो अल्टीमेटली चुकाने तो हैं ही, हंसकर चुकाएं या रोके चुकाएं, तो कोशिश करें कि उन्हें एक स्माइल के साथ और ईश्वर में विश्वास के साथ चुकाएं और आगे बढ़े अपने जीवन में इसी एहसास के साथ और इसी हिम्मत के और हौसले के साथ. हम सुनेंगे हमारा आज का अगला गीत, जीते हैं चल, फिल्म नीरजा.

0: सेगमेंट की तरफ चलेंगे। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, खैर आपने पूरी जर्नी में, पूरी बातचीत में बहुत सारे अपने यू नो इंस्पिरेशनल थॉट्स शेयर जरूर किए, आपकी आपका जीवन ही एक इंस्पिरेशन है, बट एंड में अगर आप एक कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन या सलाह देना चाहें हमारे श्रोताओं को कि अपने दर्द को कैसे वो अपनी ताकत बना सकते हैं, तो वो वन लाइनर क्या होगा?
1: बस भगवान में विश्वास और खुद के ऊपर विश्वास। एक वो कहते हैं ना, एक गाना था आपको याद हो, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो बस इस पे बिलीफ रखिए कि कांटे अगर दिए हैं साम रास्ते में तो आप उनको पार करिए, आगे हरियाली ही हरियाली है। आप अपने आप पे हिम्मत रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान करिए, जरूर ये समय जरूर निकल जाएगा। आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए।
0: बिल्कुल मैम, अगर आप
1: जी
0: अगर आप गाते हैं तो दो लाइन गुनगुना दें हमारे श्रोताओं के लिए।
1: रुक जाना नहीं तू कभी हार के,

0: दैट्स इट, आई एम नॉट अ
1: बहुत ही
0: सिंगर.
1: खूबसूरत. नहीं, बट जो दिल से गा रहे हैं आप, वो दिल तक पहुंचेगी आवाज. और इस गाने का मैसेज खैर बहुत खूबसूरत है. थैंक यू सो मच विनीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: आप भी मेरी आंसू निकाल दिए तनुषा जी जाते
1: अरे
0: जाते.
1: मैम, मैं तो बीच में रो चुकी हूँ, मैंने बोला नहीं, बट देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई हैड टीयर्स, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट.
0: आई एम नॉट क्राइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम क्राइंग फॉर एवरीबडी हु इज गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम. डोंट लूज हार्ट.
1: जी,
0: बस खाली ये कहूंगी, डोंट लूज हार्ट. अपने आप में प्लीज हिम्मत रखिए, ये तौर जरूर निकलेगा, जरूर जरूर निकलेगा.
1: जी, हम एक बहुत प्यारा सा हग आपकी तरफ भेज रहे हैं, हमारी पूरी SM रेडियो फैमिली की तरफ से.
0: थैंक यू तनुषा जी, थैंक यू.
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी हल्के नहीं पड़ते, बस हम उन्हें देखने का नजरिया बदल देते हैं. विनीता सुमानी जी की आज की बातचीत ने हमें ये सिखाया कि हर मुश्किल के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई कहानी शुरू होती है, एक नया परिचय शुरू होता है जीवन का. विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग आपकी अपनी आरजे, आपके तरानों की हम सफर आरजे तनुषा के साथ. फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ. तब तक के लिए जिंदगी को थोड़ा और महसूस कीजिए और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में थोड़ी खुशियां घोलिए. नमस्कार.
0: थैंक यू, थैंक यू.
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी और रेडियो की जवानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
4: आप सभी को स्वच्छ का और सुजल का सादर नमस्कार।
3: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जवानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
4: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।

0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषी का भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
1: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात, जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल

0: पहले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: एक मिनट, रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
2: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
1: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छता ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
3: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
4: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
5: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
3: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
6: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
7: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
3: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब

0: जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढकती? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे, ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यार।

0: गेले घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को दूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, विमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
5: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई,
5: तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां कैसे ढक दी, क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया, दुर्गंध कहां गई, अरे मच्छर भी नहीं है, अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है। अरे
5: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
0: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
5: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
0: शौचालय प्यारा लागे रे मारा, शौचालय लागे रे मारा, शौचालय लागे रे।

0: गेले घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को सदूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
3: नमस्ते सर,
4: आप स्वच्छता के बारे में क्या समझते हो?
3: स्वच्छता न भरा मते घेर शौचालय जो है सब ने शौचालय में जाओ जो हाथ साबुन ही धोना शौचालय जाओ बाद घर में साफ सफाई रखवानी कसरू कूटू घर में साफ कर खाडा में डालवा नेबू पानी खराब नहीं हो जाए ये खाडा में डालवा निकास करवा खाडा में पानी पेलखा पानी भी साफ नहीं आत हेडपंप ना साफ पानी डाल छाणी ए रीतना ढाकी ढाकी मेलवा एक लोटी मेली ने लोटी ही निकाले गिलास में निकाले भी साफ मतलब घेर ने साफ सफाई रखवा ही छोरा गंदगी नहीं रहे छोरा ना छोरा साफ सफाई करवा गंदगी छोरा बीमार था घेर में बीमारी खाए।
4: ये बड़ी जानकारी तमन कई थी मिली?
3: ये जानकारी हम लिए हम चेतना सम्मा जोड़ाई हो ते फिर हर महीने हमारे बैठक बैठक में मीटिंग में हम बैठक ले ली फिर हर महीने हम सर हम बोला बैठक ले दी बैठक ले ली हमने तीन बैठक में जानकारी मिली कि घर में साफ सफाई रखवानो शौचालय जाए तो साबुन हाथ ने धोवाना हम ये चेतना समूह में जोड़ाए तीन में जानकारी में कि मतलब घेर में केव रखवानू घेर में केवी साफ सफाई रखवानी ये जानकारी हम फिर मिले तो हम फिर हमारे घेर ने हमन की केम साफ सफाई करवानू ये जानकारी हम सब फिर बैठक ही हम सब जानकारी में।
4: तो दीदी तुम्हारे घर शौचालय बना हुआ है कि नहीं है?
3: हमारा घर शौचालय बना वेलू से
4: ते तुम घेर थी बनायो कि सरकारी मिली?
3: सरकार ना भी सरकारी से पर सरकार ना भी आधा पैसा ना आधा हमारे घेर ना पैसा करी हमें एक असल बनाए ले दो शौचालय घड़ी घड़ी बनाए नहीं तो हमें असल बनाए ले दो।
4: दीदी आप तो मतलब घर से निकलने वाला कचरा उसको का एक जगह इकट्ठा करते कि आप फेंक देते हो?
3: घेर मान कचरो इकट्ठा करी नहीं खाडा में खाडो बनाए नहीं तो ना खाडा में कचरो पूरा नाखे।
4: दीदी आप बताओ कि जो अपना घर से निकलने वाला पानी जैसे बर्तन साफ करते नहाते धोते वो पानी को आप कैसे निकास करते
3: हैं? ये पानी हम बर्तन करी उंगली चित्रा धोबी ये पानी सब हम एक नाले बना भी नहीं एक खाडो पहाड़ में खोद में इतना खाडा में पूरा पानी जाए ते दिन मैं जमीन में रंजी जाए पानी એના ખાડામાં તો એવું એવું ફેલાડી ની ફેલાડી મચ્છર લેવા પડે ગંદકી હિ ફેર બીમારી થાય કરી એ ખાડો ખોદી મેં તેના ખાડામાં સબ પાણી જાય તે રંજી જાય મેં.
4: દીદી એક બાર આપકા પૂરા પરિચય દે દો.
3: મારું નામ સોનિયા વાસ્કેલ છે गांव माछिया से तहसील रामा जिला झाबुआ से सेतना महिला में हम 2020 ही जोड़ा ही ली।
1: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
0: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
1: सही कह रही हो सोचिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना, तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
0: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
1: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: हाँ सुजल, ठीक बोले। और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
1: अच्छा सोचिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
0: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
1: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
0: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
1: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
0: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
1: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है?
0: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
1: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
0: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा, समझा समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति, शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
1: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
0: हाँ हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
5: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
1: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
0: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
1: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
0: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
1: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है दोस्तों। स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए 1 गिलास पानी के बदले 3 गिलास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे।
1: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
0: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
0: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: हूँ से आरजे भावना, आपन हंगला भाइयों घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना। आप

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार. आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है.

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे, लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत।

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा, संगीत बनाने के अलावा, रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे न याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

0: ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।
1: अब नोट।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुलगते नहीं है हम। मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। फिर ये भी के शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, जिसने जैसा समझ लिया बस वैसा ही हूँ मैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर, SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों कहते हैं जिंदगी हम सब का कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्तहान जरूर लेती है। जिंदगी हर शख्स की हैसियत, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हसरतें, उसके शौक, उसके कारनामे, बुरे या अच्छे, देखकर ये तय करती है कि उस शख्स का किस तरीके का और कौन सा इम्तहान लिया जाए। शायद इसीलिए इस दुनिया में किसी के सब्र की आजमाइश मुश्किलों के दौर में होती है, तो किसी ज़र्फ यानी सेल्फ इस्टीम को बड़ी बड़ी कामयाबियों के बीच में परखा जाता है। मगर सच तो ये है कि इन इम्तहानों के साए में जब भी हमारा दिल उदास या तन्हा होता है, तब अदब की दुनिया और सुरों की महफिल ही हमारे टूटे हुए हौसले को एक नया मोड़ देती है। जब जहन थक जाता है तो खालिस नज़मों का एक मिसरा भी हमारी बिखरी हुई सोच को मखमली तसल्ली अता करता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी कश्मकश को समेटे हुए आगे बढ़ेगी। आज के हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक की महफिल में सुरों के इस सफर को हम कुछ ऐसे अनोखे फनकारों की मेराज से सजाने जा रहे हैं जिनके गाए कलाम आपकी रूह को इस जिंदगी के अलग अलग फलसफों से रूबरू कराएंगे। तो अपने जहन की मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और इन ताज़ा तरीन एहसासों के साथ इस हसीन शाम को अपने नाम कर लीजिए। फिर चलते हैं सुरों के इस नए मरहले की तरफ और आगाज करते हैं आज की हमारी पहली नायाब पेशकश का। दोस्तों, आप में से कई जन आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव रविशंकर से जुड़े होंगे। जिंदगी की जिन मुश्किल इम्तहानों का जिक्र मैंने आपसे किया, उन इम्तहानों की धूप में अपने मुर्शद यानी गुरु का साया ही वो मंजिल है जहाँ पहुँच कर हर कश्मकश खत्म हो जाती दिखती है, दिखती क्या हो ही जाती है। जब हम रूहानी रहनुमाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बेहद मुकद्दस पाक नाम उभरता है, आर्ट ऑफ लिविंग के बानी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को अमन, मोहब्बत और जीने का सही सलीका सिखाने के सुपुर्द कर दी है। उनकी मौजूदगी ही इंसानी वजूद को एक नई राह दिखाती है। और जब एक सच्चे मुरीद की अकीदत यानी आस्था अपने मुर्शद यानी गुरु के कदमों में झुकती है तो अल्फाज इबादत बन जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के बेहद अजीज और बाकमाल शागिर्द स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी ने गुरु भक्ति के इसी जज्बात को इस नगमे के जरिए पेश किया है। स्वामी जी की आवाज में जो एक रूहानी कशिश है वो इस बात की गवाही है कि ये नगमा उन्होंने गाकर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि अपने मुर्शिद की बारगाह में मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया यानी समर्पित कर दिया। मोहम्मद रफी साहब के गाए इस फिल्मी नगमे को जब स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा ने गुरु वंदना का रूप दिया तो इसके मायने ही बदल गए। जरा इस बंदगी के जज्बात को महसूस कीजिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। दोस्तों, यहाँ मोहब्बत का मतलब दुनियावी चाहत नहीं है बल्कि रूह का वो रूहानी मिलन है जहाँ एक मुरीद अपने मुर्शिद की पनाह में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की इस बेहद भावुक और सुरीली पेशकश। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। आपकी नज़र।

मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। और फिर ऐ फातिया कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। दोस्तों, जिंदगी के इम्तहानों की जिस कश्मकश का जिक्र आज हमारी इस महफिल की बुनियाद है, उसी सिलसिले को एक तारीखी मुकाम अता करता है हमारा ये नगमा। ये शाहकार फिल्म लाल किला का है, जो कि मुगल सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की कलम से निकला था। ये कलाम इंसान की मुकम्मल बेबसी, तन्हाई और वक्त की बेरहमी का सबसे साफ आईना है। असल तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब की पाक आवाज़ में रिकॉर्ड हुए इस दर्द को आज हम एक और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी आवाज़ का पैरहन दिया है हिंदुस्तान के एक बेहद सुरीले और संजीदा गुलुकार संजय सावंत ने। दोस्तों, संजय सावंत जी की अदबी ज़िंदगी भी बेहद दिलचस्प है। वो संगीत के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हमें टेलीविज़न इतिहास के शो इंडियन आइडल के पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत जैसे सिंगर को हमें हमारा तारुफ कराया। अभिजीत को संगीत अभिजीत के संगीत की शुरुआती रहनुमाई और तालीम देने वाले उनके अपने सगे चाचा यानी संजय सावंत ही थे। संजय सावंत का अपना अंदाज रफ़ी साहब की गायकी से बेहद मुतासिर रहा है और यही वजह है कि उनकी इस ठहरी हुई पुरअसर आवाज़ में ये गज़ल का सोज सीधे सुनने वालों के जहन पर तारी हो जाता है। तो आइए वक्त की इस बेहद संजीदा आजमाइश में डूबने के लिए रुख करते हैं इस खास पेशकश की तरफ। मुलाहिजा फरमाएं, संजय सावंत की खूबसूरत आवाज़ में ये अमर शाहकार। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। शौक फरमाए।

0: दोस्तों, हमारी आज की महफिल की बुनियाद ही उन जज्बातों पर टिकी है जो ज़िंदगी की आजमाइशों में टूटकर बिखर जाते हैं, जब इंसानी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तो वजूद की उस मायूसी को ज़बान देता है। हमारा ये अगला कलाम, ये नगमा है फिल्म शाहजहां का, जिसे संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। बुनियादी तौर पर कुंदन लाल सहगल साहब की आवाज़ में अमर हुए इस दर्द को, जब हम सरहदों के पार से आई एक ऐसी आवाज़ में सुनेंगे तो सुनकर बेशक हैरान हो जाएंगे। इस नज़्म को अपनी रूहानी तासीर दी है अफ़गानिस्तान के बेहद इल्मी और बाकमाल गुलूकार डॉक्टर मोहम्मद सादिक फितरत साहब ने, जिन्हें मौसीकी की दुनिया में नाशनस के नाम से जाना जाता है। नाशनस का मतलब होता है अजनबी या गुमनाम, जो कि अपनी पहचान छुपाकर सुरों की इबादत करता रहा हो। सहगल साहब की गायकी से इस कदर मुतासिर हुए कि ज़माने ने उन्हें अफ़गान सहगल का खिताब दे डाला। उनकी आवाज़ में वो धीमापन और बेदाग उर्दू लहजा इस बिखराव के दर्द को और भी गहरा कर देता है। वह महज एक गायक नहीं हैं, बल्कि मॉस्को यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले एक काबिल स्कॉलर भी हैं। उनका जन्म 1935 में अफ़गानिस्तान के कंधार के एक संभले हुए मजहबी घराने में हुआ, जहां संगीत सीखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो बचपन से ही रेडियो पर केएल सहगल को सुनते थे और उनके दीवाने भी थे। इस गज़ल के मशहूर मिसरे कुछ इस तरह हैं, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया हम जी के क्या करेंगे, फिर मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमां के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी रूठ गया हम जी के क्या करेंगे। तो आइए तन्हाई के इस बेहद संजीदा मरहले की और सुनते हैं इस खास पेशकश को। मुलायजा फरमाएं नाशनस के इस मखमली और तारीकी वर्जन में ये कलाम, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, नाशनस की आवाज में।
1: जब

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तिहानों की धूप जब बहुत कड़ी हो जाती है तो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अपने महबूब की तकलीफ को दूर से सिर्फ देखता नहीं रहता, वो आगे बढ़कर उसके तमाम दुखों को अपने नाम कर लेना चाहता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में रूहानी वफा के उसी ऊंचे मकाम को लिखा है, जहां आशिक अपने महबूब से कहता है कि अपने हिस्से की सारी बेचैनी और ये खामोश तन्हाई मुझे सौंप दो। बुनियादी तौर पर ये गज़ल जगजीत कौर ने गाई है और ख़याम साहब की लाजवाब मौसिकी में, लेकिन आज हम आज के दौर की एक बेहद इल्मी और बाकमाल गुलकार डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जम्मू की सरजमी पर पैदा हुई डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी ने बनारस घराने की शालीन बंदिशों और बेगम अख्तर की मखमली विरासत में ढलकर गज़ल गायकी को एक नई ताजगी अदा की है। इस गज़ल के साथ मेरी भी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये गज़ल न जाने क्यों मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। तो घर में जब कोई बड़े भाई बहनों के दोस्त आते तो अच्छी खासी महफिल सज जाती थी। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छा गाते थे, तो महफिलें अक्सर ऐसे सजा करती थी घर पर कई बार। तब मैं भी वहाँ जाकर चुपके से बैठ जाती थी, बहुत छोटी थी तब मैं। तब एक दिन भाई के फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें भी कोई गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से यही सोचकर कहा होगा, अच्छा चलो सुनाओ तो सही। और मैंने ये गज़ल पूरी की पूरी गा दी। फिर क्या था, महफिल में अचानक चुप सी लग गई। बड़ी बेपरवाही से सुनते बैठे सब दोस्तियाँ मुंह उठाकर बस मुझे ही देख रहे थे और सुन रहे थे। उनकी ऐसी तवज्जो देखकर मैं अंदर से घबरा गई कि शायद मैंने गलत गा दिया है। लेकिन गज़ल ख़त्म होने पर सबने जो तालियां बजाई और मुझे प्यार दिया, तारीफ की, वो मैं आज भी नहीं भूली हूँ। वो शायद मेरी पहली नन्ही सी पब्लिक परफॉर्मेंस थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहान की जिस आजमाइश का ज़िक्र आज हमारे सफ़र की बुनियाद रहा, उसका सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अक्सर उन चीज़ों या उन रिश्तों के पीछे भागता रहता है जो शायद उसकी किस्मत के दायरे में कभी थे ही नहीं। जॉन एलिया ने इस कलाम में दिल के उसी गहरे मलाल और एक कड़वी हकीकत को लफ्ज़ों में बयां किया है। वो कहते हैं, जो वजूद जो मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसके खो जाने का ज़माने से शिकवा करना महज एक नादानी है। जॉन एलिया की शायरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी बनावटी तसल्ली का सहारा नहीं लेते, बल्कि ज़माने के कड़े सच को सीधे आईने की तरह सामने रख देते हैं। उनकी इसी नफीस नज़्म को जब एक मखमली और ठहरे हुए सूफियाना अंदाज में सुना जाता है तो वो हर दिल में सुकून पैदा करता है जो किसी अधूरेपन की कशमकश से गुजर रहा हो। गज़ल का मिसरा कुछ यूं है, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, अब तो अपना भी कोई सिलसिला ही नहीं। फिर कहते हैं, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, इस शहर में कोई हमें अपना मिला ही नहीं। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और सूफियाना मुकाम पर ध्यान से सुनते हैं जॉन एलिया साहब की इस लाजवाब पेशकश को, जो था ही नहीं कभी मिला ही नहीं।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय। और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी, जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
3: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूं।
2: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय। इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
3: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्यात्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं। और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं, तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं। उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज हम परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं, और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले, अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं, और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
2: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है? या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
3: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीज

0: चीजों से हो सकता है या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: तो नशा सिर्फ शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है, दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान समय की ये पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
0: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो जब बाजार में जाता है तो वो सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदि हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है।
0: जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, नशे से दूर होने के लिए इसे व्यक्ति कहता है आज मेरा शराब पीने का मन है या कहीं कहता है कि मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है, वो है आत्मा, और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं, बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है सिगरेट पीकर के आता है तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पीकर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए, और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है। और मान लीजिए अगले दिन व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने 1 सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है। शाबाश।

0: आश वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निःशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तम्बाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी है, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
1: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
1: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाए और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
8: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, 90.8 FM।
8: किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छपवा के आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा जो किसान है वह उन्नत से उन्नत खेती करे, अपनी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही अपनी खेती में आ रहे नए बदलावों को समझे और अपनी खेती में नए से नए उपकरणों का इस्तेमाल करे, नई से नई किस्मों का इस्तेमाल करे और हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी जो कृषि चल रही है और हमारे जो अलग दूसरे किसान हैं उनके साथ कैसे एक नवीनतम तकनीक द्वारा कैसे हम उन्नत और उपयोगी कृषि कर सकते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं को मध्य नजर रखते हुए हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
8: किसान साथियों, अभी बरसात का समय चल रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो अच्छी खासी बरसात हो चुकी है। तो किसान साथियों, अभी समय आ गया है, अभी हमारी फसलों में आपको कीटें दिख जाएगी, खरपतवार हमारे खेतों में बहुत से दिखने लगेंगे। तो आज का जो हमारा खेती बाड़ी का जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कैसे हम टमाटर, बैंगन और मिर्ची की खरपतवारों को उसमें कैसे उसकी फसल का हम प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे अंगूर की खेती में जो बेल होती है उसमें भी अभी कुछ कीटनाशक आ जाते हैं तो उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
9: बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या खास बातें आप इस वक्त बताना चाहेंगे?
10: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मौसम है, जो ही बारिश प्रारंभ होती है
9: जी,
10: पहली बरसात के बाद ये तीनों फसलें जो हैं, आप बैंगन की भी खेती प्रारंभ कर सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च की भी खेती इस मौसम में किसान भाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि उन्हीं किसान भाइयों को अधिक फायदा होता है जिनकी फसल जो है जितनी अगेती मार्केट में आती है। तो जो किसान भाई अगर नर्सरी ज्यादा जल्दी अगर उगा लेते हैं तो उनकी फसल स्वाभाविक है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी आएगी। और जैसा बैंगन जो है पूरे भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, उनको ये देखना है कि आपके एरिया का जो मार्केट है वहां किस प्रकार की बैंगन की प्रजाति की प्रेफरेंस मार्केट में है। जैसे कई जगह गोल मार्केट में प्रेफर किया जाता है, कई जगह लंबी प्रजाति होती है, कई जगह कम बीज वाला लोग पसंद करते हैं, कई जगह जैसे महाराष्ट्र का रीजन है वहां जो चूचू बैंगन होता है, वेरीगेटेड होता है, उसमें अधिक बीज वाला वहां वो पसंद करते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जो टमाटर की फसल है, खास करके जो हम खरीफ मौसम में और बारिश की मौसम में, एक विषाणु जो होता है लीफ कर्ल, जिसको किसान भाई मरोड़िया बीमारी बोलते हैं, उससे हमको कैसे बचाना है। मिर्च में भी इस मौसम में अगर हम करेंगे तो बारिश के मौसम के लिए कुछ खास प्रकार की ही किस्मों का चयन करना होता है और कुछ खास प्रकार से इसकी अगर हम नर्सरी भी तैयारी करते हैं तो जो विषाणु जनित यानी वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनको हम किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, आज हम इस पे हम अधिक से अधिक अगर हम फोकस करें
9: तो से चर्चा इस बात पर हम करेंगे कि बैंगन, मिर्च, टमाटर की अच्छी उपज आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती की जा सकती है। पहले बात करते हैं टमाटर की। जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीज की बुआई पौधशाला में करते हैं। इसके लिए मुक्त पराकित किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 250 ग्राम बीज को 1 ग्राम कैप्टॉन या थीरम से उपचारित करके 17x3 फीट के आकार की 8 ऊंची क्यारियों में लगाएं। हल्का पानी का फवारा देते रहें। आप टमाटर की पूसा रूपी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहार, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार और पूसा हाइब्रिड 2 किस्में लगा सकते हैं। जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है। टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए उपाय जरूर करें। वहीं बैंगन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सही रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अच्छी जमाव क्षमता वाले 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों के बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। आप अगेती बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा शामला, पंजाब सदाबहार और काशी प्रकाश किस्में लगा सकते हैं। मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना, कैसे आपने जो मिर्ची की खेती है, मिर्च का पौधा है वो कितना सेंटीमीटर पर होता है, और अगर आप पूसा किस्म का जो आप लगाते हैं उसमें इस ये किस्म काफ़ी अच्छी होती है और आपको अधिक से अधिक लाभ इस किस्म के द्वारा मिल सकता है। किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ अंगूर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: अंगूर के बगीचे जो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो वनस्पतिक जो वृद्धि है वो हो रही है पौधों की। इसमें बारिश के मौसम में कीटों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, और जैसे कि मिलीबग, कैटरपिलर्स जो स्पोडोप्टेरा है, और लाल रंग का एक स्टेम बोरर तना छेदक, उसका भी इस समय काफी अटैक हो जाता है
1: जी।
2: और साथ ही साथ में थ्रिप्स है, उसकी भी काफी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश आने के बाद में नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है, तो उसके ऊपर में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीटक है जो कि अंगूर के अंदर बारिश के मौसम में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, विस्तार से आज हम जानेंगे कि ये जो कीट है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए किसानों को किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।

0: फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने से ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित होती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। लेकिन इस समय पूरे देश में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं, ऐसे में अंगूर में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका हो जाती है। ऐसा ही एक कीट है लीफ हूपर। ये ज्यादातर उत्तर भारत में अंगूर की बेलों में मिलता है। ये कीट जून से अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये निम्फ और परिपक्व पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से पत्ती के सूखने और टूटने से पहले इसका रंग पीले से भूरा हो जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते खाने वाली चैफर बीटल भी अंगूर की बेलों को नुकसान पहुंचाती है। चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है और रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है। बालों वाली सुंडियां नई बेलों की पत्तियों को खाती हैं। इनके साथ साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा और पतला कीड़ा होता है, टहनियों, शाखाओं और तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिल्कुल सुखा देता है। इन कीटों से बेलों को बचाने के लिए पॉलीथियोन या मेलाथियोन या डायाजिनोन का 0.05% से 0.1% का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितंबर तक करते रहें। लेकिन किसी भी दवा के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कीटे हैं अंगूर की कोमल पत्तियों को खा जाती है और उनके अपनी जो बेले हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही उन्हें सुखा भी देती है। तो इस ऐसे समय में हमें किस कैसे और कितने समय में हमें दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने जाना। यहाँ पर हम रुक करेंगे मिर्ची, बैंगन और टमाटर की खेती के ऊपर। अभी बारिश का समय चल रहा है तो इसमें कौन सी किस्में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किस्में आजकल बाजार में मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी किस्म का पौधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें खराब किस्म का पौधा मिल गया था तो मिल जाए तो उसमें हमारी जो पैदावार है यह काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें ज़रूरी है, ज़रूरत है अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव करना, अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करना और अपनी बागवानी में लगाना। तो चलिए किसान साथियों, जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम तौर पे क्या होता है, जब किसान भाई सोचते हैं कि कोई भी टमाटर हम खरीफ में लगा सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे जो किसान भाई टमाटर लगाते हैं वो जाड़े के मौसम में लगाते हैं, उसमें जो ये विषाणु जो जनित बीमारियां होती हैं, जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं या किसान भाई उसको मरोड़िया बीमारी कहते हैं, ये नहीं होता है। लेकिन अभी जो किसान भाई लगाएं उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ऐसी प्रजाति लगाएं जो अधिक तापमान पर टमाटर में फलन की क्षमता रखती हो, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं जुलाई अगस्त में तो अक्टूबर तक जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ खास करके रात का तापमान 20-22 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री तक रहता है। तो एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि चूंकि बारिश के मौसम में नमी भी रहती है, तापमान भी अधिक रहता है, तो जो सफेद मक्खी होती है इसका प्रकोप काफी होता है, और ये सफेद मक्खी जो होती है वो वेक्टर होता है जो हमारी मरोड़िया बीमारी के लिए। तो इस मौसम में हमें उन्हीं प्रजातियों का चयन करना है जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, और इसके लिए जैसे वाराणसी में जो हमारा भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उनकी कुछ प्रजातियां जो उत्तरी भारत के लिए हैं, जैसे काशी अमन एक प्रजाति है, इसका आप एक चयन कर सकते हैं। अगर जो लोग कर्नाटक में या उस इलाके में अगर देख रहे हैं तो वहां की काफी पॉपुलर प्रजाति है अर्का रक्षक, जो हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर की प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और काशी के जो हमारा वाराणसी का है इनके द्वारा कुछ और प्रजातियां विकसित की गई हैं, जैसे काशी अमूल है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हाल में ही जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा भी कुछ प्रजातियां विकसित की गई हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली है वहां से भी इस वर्ष एक प्रजाति विकसित की गई है जिसमें वायरस जनित यानी वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, जो लीफ कल असिस्टेंट, टोमेटो लीफ कल असिस्टेंट 6 नाम के वैरायटी इसी साल अभी आइडेंटिफाई की गई है, तो इनका आप चयन कर सकते हैं। आपको ये 100% ध्यान रखना है कि कोई भी प्रजाति लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो, तभी इस मौसम में आप टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो इन जो किस्म है इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है जो भी आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं, खासतौर पर खरीफ के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताएं हमें कि इस मौसम में किस तरह की कीटों का प्रकोप हो सकता है, खासतौर पर कैटरपिलर के बारे में आपने भी बताया था कि इसका प्रकोप हो सकता है, तो किस तरह से ये फसल को प्रभावित करता है और कैसे इससे बचा जाए?
4: जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है बारिश के बाद में और बादल हो जाते हैं, तो जो कैटरपिलर है, जो स्पोडोप्टेरा है, उसको जैसे लोकल लैंग्वेज में सुंडी भी कहते हैं
3: जी,
4: तो वो क्या करता है कि पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है, और कच्चे अगर थोड़े स्टेम है तो तना है उसको भी खा सकता है, और पत्तों को पूरा अगर ज्यादा अटैक हो जाए, ज्यादा आक्रमण हो जाए इसका, तो पत्तों को पूरा खा सकता है वो, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो बाधित होती है पौधे की। इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या सलाह देते हैं कि बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जो हमारे बगीचों में मित्र कीटों को बढ़ने के लिए मौका देता है। आर्द्रता ज्यादा होगी, मित्र कीट काफी अच्छे तरीके

0: से पढ़ेंगे तो हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग बताते हैं कि आप करें अपने किसान भाई अपने बगीचों के अंदर में। जो अन्य विधियां हैं जैसे कि लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो कि कैटरपिलर के जो पतंग होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। एक चीज अंगूर के बगीचों में खासतौर पर ध्यान रखनी है कि बाकी फसलों में क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप होता है वो बगीचे के फसलों के अंदर खेत के अंदर लगाया जाता है, पर अंगूर के बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाया जाता। अंगूर के बगीचे से 15 से 20 फीट दूर उसको लगाया जाता है ताकि जो कीट है अंगूर के बगीचे के वो बगीचे से बाहर चले जाए और लाइट ट्रैप में जाके मर जाए। अगर लाइट ट्रैप को हम बगीचे के अंदर लगाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है कि जो लाइट ट्रैप है उसके आसपास के जो पौधे हैं उनके ऊपर में कैटरपिलर का ज्यादा अटैक हो सकता है क्योंकि वहां पतंग ज्यादा आएंगे, उस पर अंडे ज्यादा देंगे
1: जी,
0: और उसके ऊपर में आसपास में पौधे हैं वो ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं पौधे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बगीचे के बाहर ले जाके लाइट ट्रैप को लगाएं, उससे दूर रखें। और बाकी फसलों में एक और चीज होती है कि जो लाइट ट्रैप है वो फसल से ऊपर लगाया जाता है, पर अंगूर के अंदर में क्या होता है कि जमीन से एक या दो फीट ऊपर लाइट को लगाया जाता है। तो ये जो मुख्य बातें ध्यान देनी है हमको, और साथ ही साथ जो बायोजेंट्स हैं जो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है जो स्पोरोप्टेरा के लिए जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए चर्चा करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
2: जी हाँ, जो नर्सरी, देखिए नर्सरी का जो प्रबंधन होता है, जो भी हमारी पूरी फसल प्रबंधन है, उसका आधार जो होता है बीज, और बीज से जो हमारी उगाई हुई नर्सरी होती है। और जैसा मैं बार बार किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि जब नर्सरी में अगर हम पौधों को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, नर्सरी में दो प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक होती है जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, यानी जहाँ पे हम नर्सरी उगाते हैं कुछ उनके जो रोगों के जो स्पोर्स होते हैं वो पहले से मृदा में या मिट्टी में रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और जो किसान भाई जागरूक हैं वो सॉइल सोलराइजेशन इसको जानते हैं, यानी जिस एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं वहाँ की मिट्टी को हम सौर ऊर्जा की मदद से हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी रोग और कीटाणु के जो स्पोर्स हैं उनसे हम उनको मुक्त कर सकते हैं। पहली चीज मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम था उसमें अगर हम सफेद रंग की पॉलीथीन से जिस एरिया में हम नर्सरी बनाते हैं उसको सीधा हमको पहले उसकी जुताई कर लेनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है, और उसके बाद कम से कम 400 गेज की जो सफेद रंग की पॉलीथीन है उससे उसको हम अगर ढक देते हैं और चारों किनारे से फिर मिट्टी डाल देते हैं तो अंदर का जो तापमान होगा वो काफी बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम 30-35 दिन तक रखते हैं, ये बिना किसी खर्चे के है, मैं इसलिए आपको ये भी बता रहा हूं, ये जैविक तरीका भी है, आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके अगर जो किसान भाई ऐसा रखते हैं अगर 15-20 दिन तक अगर हम ऐसा रखें तो उसके अंदर के जो भी स्पोर्स हैं जो पिछले सालों के या और भी किसी जो जैसे सॉइल में हमारा डाइथेन ये हमारी जो बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इस प्रकार की बीमारी आती है जो हमारी नर्सरी में खास करके जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, डैम्पिंग ऑफ एक मेजर समस्या है, ये सब सारी समस्याएं उसमें खत्म हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें वायरस जनित बीमारियां हैं, इनके जो बाहक कीट होते हैं उनके भी कुछ अंडे उसमें अगर हैं तो वो खत्म हो सकते हैं। और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, मिट्टी की जो मृदा की जो सेहत है वो भी इससे अच्छी होगी। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, चूंकि ये बारिश का मौसम है तो हमेशा नर्सरी जिस एरिया में हम बनाते हैं वो मिट्टी बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए, यानी वहां के पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वहां फुल धूप लगनी चाहिए। कई बार किसान भाइयों को यह लगता है कि अगर हम थोड़ी छांव में, चूंकि गर्मी बहुत है, अगर हम थोड़ी छांव में अगर हम नर्सरी उगाएंगे तो अच्छी बनेगी, लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि नर्सरी के एरिया में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश कम आएगी तो जो उसके जो जड़ कम बनेंगे और पौधा ऊपर की तरफ अधिक बनेगा। जबकि हमें नर्सरी में यह ध्यान रखना है कि नर्सरी में हमें ऐसी वातावरण बनाना है जिससे पौधा का जितना विकास ऊपर की तरह हो उतना ही विकास उसका जड़ों का नीचे की तरह हो। अगर आपके नर्सरी के पौधे ऐसे बनते हैं जिनकी जड़ जितनी लंबी होती है तना भी अगर उतना ही लंबा होता है, ये नर्सरी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको ऊंचे जमीन पे बनाना है, फिर हमको करना है कि करीब 1 से 1.5 फुट की चौड़ाई की हम और कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची और हल्का जिसमें दोनों किनारों पे भी ढाल दे के हम 1.5 मीटर या 2 मीटर लंबी हम क्यारी बना सकते हैं। और क्यारी के ऊपर जब भी हम अगर, चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में अगर हम ट्राइकोडर्मा मिला के जिसका अगर हम नर्सरी में अगर हम उपयोग करेंगे तो बाकी भी अगर कोई जो मृदा जनित बीमारी है उसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चूंकि इस मौसम में हम बार बार वायरस की समस्या को हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वायरस एक बार लग जाता है पौधे पे हमको उखाड़ के ही उसको खत्म करना पड़ता है या पौधे को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, यही एक नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले अगर हम नियंत्रित करें, नर्सरी में आमतौर पर हमारे 35 से 40 दिन तक हमारी फसल जो होती है वो नर्सरी में होती है। इस दौरान अगर हम इसको कीट से अगर हम बचाने के लिए, जैसे हम अपने आप को कीट से बचाने के लिए हम मच्छरदानी या हम लगाते हैं रातों को सोने के लिए, इसी प्रकार अगर हम नेट हाउस का अगर हम प्रयोग करें, यानी जिस एरिया में अगर हम नर्सरी बना रहे हैं वहाँ हम कम पैसे में है, अगर उसको हम कीट अवरोधी जाल होता है 40 मेस की या 50 मेस की, अगर उसके अंदर अगर हम नर्सरी तैयार खास करके करते हैं तो 35 से 40 दिन तक जो आपके पौधे होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उसमें किसी प्रकार की वायरस से उसको हम मुक्त रख सकते हैं। उसके बाद जब हम खुले खेत में लाएंगे तो उसमें हम कुछ उपचार करके फिर हम चाहेंगे कि खेत में भी वो पौधा हमारा स्वस्थ रहे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी नर्सरी से हम स्वस्थ पौधे हम बना सकते हैं और कम खर्चे में और बिना किसी रसायन के उपयोग के भी हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
3: तो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी जो अच्छी उपज है उसकी उम्मीद की जा सकती है। उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि ऊंची ऊंची जमीन पर बनाए और इसके साथ ही वहां पर जो धूप है वो पूरी तरह से पहुंच सके इसका इंतजाम करना बेहद जरूरी है, ताकि जो जड़ है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके और जल जमाव न हो इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं और अंगूर के बागों में कीट प्रबंधन के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं हमें कि और किस तरह के कीटों का प्रकोप इस मौसम में हो सकता है अंगूर के बागों में, जैसे मिलीबग का भी प्रकोप कई बार होता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है।
4: मिलीबग जो है कीट, ये क्या करता है कि जड़ों के अलावा जो भी अंगूर के अंदर में ऊपरी भाग है उनपे कहीं भी रस चूस सकता है, जहां भी फ्लोएम है वहां पर रस चूसेगा और जो ऊर्जा पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खाना जो पौधे को भी यूज होना था वो मिलीबग देता है और पौधा काफी कमजोर हो जाता है।
3: जी जी,
4: जब फल का मौसम होता है जब अंगूर लग रहे होते हैं तो फलों पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है मिलीबग का, पर ये अभी फल का मौसम नहीं है, अभी ऑफ सीजन है। तो इस समय मिलीबग क्या नुकसान कर सकता है कि गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल या मई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो मिलीबग एक बार ज्यादा तापमान की वजह से कम हो जाता है, पर जैसे ही जून जुलाई का मौसम होता है बारिश शुरू हो जाती है तो एकदम से बिल्कुल सही मौसम मिलता है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, और मिलीबग काफी ज्यादा संख्या के अंदर में बढ़ जाता है। तो किसान कई बार काफी चिंतित हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिलीबग आ गया मैं क्या करूं, और कई सारे जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं बगीचों के अंदर में, पर मिलीबग एक ऐसा कीट है जितना हम ज्यादा रसायन यूज करेंगे, जितने कीटनाशक ज्यादा यूज करेंगे उतनी आने वाले टाइम में आने वाले समय में इसकी समस्या बढ़ती जाएगी। और बारिश के मौसम में मिलीबग का हमारा अनुभव ये है कि अगर हम बारिश के मौसम में जैसे मिलीबग काफी तेजी से बढ़ता है और ऑफ सीजन के अंदर में ज्यादा नुकसान अंगूर के अंदर में ये नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ज्यादातर वृद्धि हमको अंगूर के पौधे की चाहिए होती थी उतनी हो जाती है तब तक, तो जो मुख्य तना है उसके ऊपर में हमको ज्यादातर जो मिलीबग है उसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। वहां पर अगर हम एक से डेढ़ महीने तक कुछ भी ना करें, कोई भी रसायन का प्रयोग ना करें और उसको मिलीबग को वैसा का वैसा छोड़ दें तो मिलीबग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से उसका नियंत्रण हो जाएगा। जो सही मौसम मिला है मिलीबग को वृद्धि करने के लिए वो सही मौसम उसके जो मित्र कीट है उनको भी मिला है, तो वो मित्र कीट है उनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, एक डेढ़ महीने में अगर हम छोड़ देते हैं वैसे तो मिलीबग काफी अच्छे तरीके से अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा। पर जो किसान नियंत्रित जल्दी करना चाहते हैं और ज्यादा चिंतित हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मित्र हमारे जो बायो एजेंट्स हैं उनका जैव नियंत्रण के लिए जो एजेंट्स होते हैं जैसे मेटारिजियम एक है फंगस है फफूंद है जो कि कीटों को काफी अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है, तो उसका प्रयोग आप मुख्य तने को धोने के लिए कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मिलीबग कंट्रोल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मिलीबग को भी कंट्रोल नियंत्रित में किया जा सकता है और उपाय आपके सामने है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है फसल में और ऐसे में जो बीज है अगर उसके स्तर पर ही कुछ उपाय कर लिए जाए तो कई रोगों से बचाव पहले ही हो सकता है, तो ऐसे में बीजोपचार की कितनी महत्ता बढ़ जाती है और बैंगन मिर्च टमाटर के मामले में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ बातों का ध्यान अगर हम जिस समय हम बीज हम लेते हैं, पहली चीज जैसे है जब हम बीज का चुनाव करते हैं जैसे मैं बताया भी, तो प्रजातियों के चुनाव में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जो बीज हम लाते हैं खरीद के उसको हम अगर हम ट्राइकोडर्मा से हम अगर हम जैविक तरीके से अपनाना चाहते हैं तो हम ट्राइकोडर्मा 4 से 5 ग्राम प्रति प्रति केजी के हिसाब से हम बीजोपचार हम कर सकते हैं। इससे हमें खास करके जो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास अगर वो नहीं उपलब्ध है तो अगर हम रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो जैसे कार्बेंडाजिम है या कैप्टान है या थीरम है, इनसे हम 2 या 3 ग्राम प्रति केजी बीज में इनसे भी हम उपचारित करके इनको हम नर्सरी में लगा सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बैगन की बात करें, बैगन में कुछ बीमारी आती है जैसे फोमोप्सिस है, फोमोप्सिस ब्लाइट काफी भयंकर बीमारी होती है, ये खास करके ये बीज से ही जाता है। अच्छा। जैसे अगर बैगन का अगर जब हम बीज लेते हैं तो अगर कोई पौधा जिसमें फोमोप्सिस है यानी गला हुआ फल होता है उससे अगर हम बीज लेते हैं तो बीज वहां इन्फेक्टेड होता है और ये बीज फिर अगले पौधे में जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ अगर हम बीजोपचार अगर हम कर लेते हैं तो इसकी संभावना कम होती है। इसके साथ साथ एक दो चीजों मैं और बताना चाहूंगा कि बीजोपचार के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अगर किसान भाई बिल्कुल जहां फसल लगा रहे हैं उसी समय से अगर उसका ध्यान रखें तो हमें दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैंगन लगाएं या मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें इस मौसम में वायरस जनित बीमारियां आती हैं और इसके बाहर खास करके सफेद मक्खी होती हैं और कुछ जो थ्रिप्स वाली जो बीमारियां हैं वो भी जैसे मिर्च में भी आती हैं। इनके लिए जैसे जिस खेत में आपको लगाना है उससे अगर 15-20 दिन पहले अगर उसके बॉर्डर पे अगर हम मक्का की अगर हम 3-4 लाइन लगा लें या जो सोरघम होता है वो ज्वार होता है अगर उसकी अगर हम 3-4 लाइन अगर हम पहले से लगा के रखते हैं तो जब हम खेत में हम पौध अपना हम लगाएंगे ट्रांसप्लांट करेंगे उससे पहले वो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अगर कोई सफेद मक्खी या बाकी कीड़े आते हैं तो उनके पत्तों में आप देखते हैं कि रेशे होते हैं उस पे वो चिपक जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने लिए मास्क का प्रयोग करते हैं कोरोना से बचाने के लिए उसी प्रकार हमको पौधों को भी जो बॉर्डर क्रॉप्स इनको हम कहते हैं या कैच क्रॉप्स कहते हैं या ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं कि जो इसके जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर में जो किसान भाई लगाते हैं टमाटर में या बैगन में भी निमेटोड की एक समस्या होती है, इसलिए जब हम अगर हम बैगन या टमाटर की जब नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय में अगर हम थोड़ी गेंदा जो होता है जो गेंदा का फूल होता है उसकी भी हमें थोड़ी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और टमाटर के 10 से 15 लाइन के पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति अगर हम गेंदा फूल की भी अगर हम लगा देते हैं तो उसमें टमाटर ये इसमें निमेटोड की भी समस्या कम होगी और खास करके जो कुछ फल छेदक जो कीड़े होते हैं उसकी भी समस्या कम होती है। तो इस प्रकार हमको जब नर्सरी प्रबंधन करें वहीं से हमको ये सोच रखना है कि हमें कम रसायन का उपयोग करना है जिससे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा।
3: बिल्कुल, इसलिए उचित है कि इन बातों का ध्यान शुरुआत में ही रख लिया जाए कि किस तरह से रोगों की आशंका हो सकती है और कम से कम रसायन में अच्छी गुणवत्ता युक्त जो फसल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंगूर के बागों में हम देखते हैं कि कई बार लीफ हॉपर या बीटल जैसे कीटों का भी आक्रमण हो जाता है, इससे फसल को कितना नुकसान होता है और इससे बचाव के लिए अगर कुछ उपाय आप बता सकें हमें।
4: दो कीटक हैं जो कीट हैं जिनकी आपने बात की कि लीफ हॉपर और जो चाफर बीटल है वो।
3: जी,
4: लीफ हॉपर पत्तों के नीचे से रस चूसता है पत्तों का और पत्ते मुड़े तुड़े हो जाते हैं और ज्यादा उसका प्रादुर्भाव हो जाए तो लीफ बर्न भी कई बार हो जाता है। पत्ते मुड़े तुड़े हो जाएंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लीफ हॉपर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लाइट ट्रैप हमने बताया था कि जो कैटरपिलर के लिए हम बताते थे कि बगीचों के बाहर लगाइए तो वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लीफ हॉपर लाइट ट्रैप में काफी अच्छे मात्रा में मिलते हैं हमें और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर लीफ हॉपर के लिए जो मुख्य है उसको नियंत्रण करने के लिए वो है कीटनाशकों का प्रयोग। लीफ हॉपर कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, जो अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, जो कि अंगूर में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर्ड हैं भारत देश के अंदर में, उनका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक खास चीज लीफ हॉपर के बारे में ध्यान रखने की ये है कि अंगूर के अंदर में हमने जो अनुसंधान किया उसमें हमने ये पाया कि शाम के समय अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनपे जो लीफ हॉपर है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है दिन की बजाय। तो अगर हम जो पेस्ट जो कीटनाशक का प्रयोग है अगर हम शाम रात के टाइम में करेंगे उस समय करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा उसका नियंत्रण मिलेगा। एक और चीज है कि जैसे कि मैंने बताया कि लीफ हॉपर लाइट ट्रैप के द्वारा उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं।
3: जी,
4: लीफ हॉपर प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, जो सफेद रंग का प्रकाश है उसकी तरफ में वो ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं। अगर जो किसान भाई हैं रात के समय फवारणी करने जा रहे हैं कीटनाशक की, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे की तरफ में जहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है वहां पे अगर सफेद रंग का ज्यादा वाट का बल्ब लगा ले, तो क्या होगा कि वो बल्ब की वजह से जितने भी लीफ ऊपर है वो उसके पास में आकर्षित होंगे और जहां पे हमारा फवारणी जा रहा है, जहां पे हमारा स्प्रे जा रहा है उसके पास में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हमारा लाइट के पास में लीफ ऊपर है और साथ में हमारा जो स्प्रे है वो जा रहा है तो इमीडिएटली उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा जो है इसको कंट्रोल करने में। जो कीटनाशक है जो आप प्रयोग कर रहे हैं रात के समय कीजिए और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बल्ब लगा के रखिए तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नियंत्रण लीफ ऊपर का दिखाई देगा।
3: बिल्कुल।
4: दूसरा जो कीटक है जिसकी बात की आपने, चाफर बीटल। चाफर बीटल बारिश जब शुरू होती है तब बाहर निकलता है और काफी कम समय तक ये बगीचों के अंदर में रहता है। चाफर बीटल का जो गर्भ होता है वो जमीन के अंदर रहता है जिसको हम पाइप गर्भ कहते हैं, जो कि गन्ना या दूसरे अन्य फसलों के अंदर में सब्जियों में मूंगफली में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो व्यस्त अवस्था होती है वो चाफर बीटल होता है। ये क्या करेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा, अंगूर के अंदर में व्हाइट कलर की समस्या नहीं पाई जाती पर आसपास के खेतों से वो आ सकता है और वो क्या करेगा बाहर निकलने के बाद बारिश के बाद में किसी बड़े पेड़ के ऊपर में जाके बैठने की कोशिश करेगा। तो आपके अंगूर के बगीचे के पास में अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे के अंगूर के पौधे आप देखेंगे तो उनमें आपको ज्यादा नुकसान दिखेगा। फिर दूसरा कि जो सीमा के ऊपर में बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो पौधे अंगूर का उसके ऊपर में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। तो ऐसे पौधों को रात के समय, चाकर बीटल रात के समय निकलेगा, दिन के समय छुपा हुआ रहेगा, तो रात के समय जाके देखिए आपको

0: सैकड़ों की संख्या में पौधों के ऊपर में बैठे हुए दिखाई जाएंगे। और क्या होता है कि किसान आजकल जो सोशल मीडिया उनके माध्यम से वीडियो और उनके फोटो डालते हैं, तो बाकी किसान भी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके बगीचों के अंदर में चाकर बीटल है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा कीटक है जिसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रात के समय जब चाकर बीटल के पौधों के ऊपर बैठा हुआ है तो उसी समय हमको उसी टाइम में फवारनी करनी है हमको लैम्डा साइलोथ्रिन, जो 4.9 CS का जो फॉर्मुलेशन है, आधा मिली एक लीटर पानी के हिसाब से अगर पत्तों के ऊपर फवारनी करेंगे तो सुबह के समय आप देखेंगे, रात के समय फवारनी करेंगे, सुबह के समय आप देखेंगे जितने भी चाकर बीटल आपके पौधों में बैठे हुए थे आपको नीचे मरे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत
1: अच्छा। किसान साथियों, अभी आपने कृषि एक्सपर्ट से जैसे कि सुना, हमें मेहनत करनी है लेकिन उसे सही दिशा में करने की आवश्यकता है। हम दवाइयां हमारे खेतों में बहुत डालते हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से समय में डालना उचित होता है और कौन से समय में नहीं। यहाँ पर जैसे कि हमने कृषि एक्सपर्ट से सुना, रात के समय में हमें इस दवाई का प्रयोग करने से और उसी के साथ हमें जो सफेद कलर का जो प्रकाश है उससे जो कीट है वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें कम मेहनत पे अधिक रिजल्ट मिल पाएगा। जो सफेद प्रकाश है वह उससे कीट है वो आकर्षित होता है और वही उसी जगह पे जब हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हमें पूरा ज्यादा एरिया वहां कवर करने की जरूरत नहीं है, हम उस सफेद प्रकाश के मदद से अधिक कीटों को सफेद प्रकाश अपनी तरफ आकर्षित करेगा और वहीं पर हमें हमारी दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमें अधिक फायदा होगा और वहां हमारी लागत भी बचेगी, साथ ही हम हमारा समय बचा सकेंगे और एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकेगा। किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आपने अंगूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने मिर्ची, टमाटर और बैंगन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसे यहाँ पर किसान साथियों वक्त है कि हम एक किसान भाई का एक सवाल लेते हैं, जिन्होंने हमें आग्रह किया था कि उनके जो मिर्ची के पौधे हैं उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फूल जल्दी ही झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, यह क्यों होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्या होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है।
3: जी।
2: जैसे मैं अभी बार बार बात भी कर रहा था, कोई भी जो फसल होती है, चाहे टमाटर है, मिर्च है, इसका एक नियमित तापमान होता है, उसी तापमान पे इसमें फल लगेगा। जैसे आप हर बार देखते हैं कि जो ही उत्तर भारतीय मैदानी इलाके में जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में टमाटर की कीमत आसमान छूने लगती है। क्यों होता है ऐसा? कि जो ही तापमान अगर 24-25 डिग्री से, खास करके रात का तापमान अगर 24 डिग्री से ऊपर होता है तो टमाटर में फल लगना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मिर्च में भी है कि मिर्च में भी अगर रात का तापमान अगर 25-26 डिग्री से अगर ज्यादा होने लगता है तो उस समय में मिर्च में भी फल लगना बंद हो जाता है। कई किसान भाई ये सोचते हैं, अच्छी बात है कि हम अगर बेमौसम का उगाएंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कारण से ये समस्याएं होती हैं। जब तापमान बहुत कम होता है तब भी उसमें फलन बंद हो जाता है, और जब तापमान बहुत अधिक होता है और खास करके ये जो रात का तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर, तो उसमें फल लगने में समस्या होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? तो कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे एक प्लानो फिक्स करके आता है, कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका अगर आप छिड़काव करते हैं तो कुछ हद तक आप इसमें फलन जो है वो प्रारंभ इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश हो गई है और मौसम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो मिर्च में ये समस्या जो है धीरे धीरे फिर खुद ही खत्म हो जाएगी।
3: बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर मिर्च की हम बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस समय मिर्च की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की किस्मों का चुनाव करना चाहिए।
2: जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आजकल बहुत सारे किसान हैं जो हरी मिर्च के लिए खेती करते हैं।
3: जी,
2: और जो भी उनको प्रजातियां हरी मिर्च के लिए बहुत सारी ज्यादा प्रजातियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, अगर हम खास करके जो हमारे सरकारी संस्थानों से, और इसमें लेकिन हमको अगर ऐसी प्रजाति अगर हमें मिलती है जिसमें जो लीफ कर्ल वायरस है इसके प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा अगर आपने भी दिखाया, और हमारे पूसा संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सदाबहार, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रजाति होती है ऊपर की तरह गुच्छे में फलती है तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। आमतौर पर किसानों की ये भी डिमांड होती है कि अगर लंबाई थोड़ी अधिक हो तो कुछ जगह उसकी कीमत अधिक मिलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उसमें तीखापन होता है, आजकल मार्केट में जिस मिर्च में तीखापन अधिक होता है उसकी डिमांड अधिक होती है, तो ये जो पूसा सदाबहार है इसमें तीखापन काफी अधिक है जिस कारण से मार्केट में इसकी कीमत आपको अधिक मिल सकती है। इसी प्रकार हमारा जो भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है उनकी भी कई प्रजातियां हैं, जैसे काशी अनमोल एक अच्छी प्रजाति है जो हरी मिर्च की हम बात करें, जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है उनकी भी, जो खास करके जो दक्षिण भारतीय जो राज्य है वहां से उनकी प्रजातियां ले सकते हैं, या जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी हैं जैसे CH1 CH3, ये काफी पॉपुलर प्रजातियां हैं, इनका आप चयन कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो मौसम के अनुसार, इसके अलावा क्षेत्र के अनुसार और किस तरह के आपके नजदीक में बाजार की स्थिति है, वहां पर मांग किस तरह की निकल रही है, उन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अंगूर में कीटों के बारे में हमने यहां पर बात की और कई तरह के कीटों से बचाव के उपाय भी आपने बताए, कुछ और बताएं कि इस मौसम में और किस तरह के कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है।
4: पिछले कुछ सालों से अंगूर में एक लाल रंग का तना छेदक है, उसका काफी ज्यादा आक्रमण होता जा रहा है और ज्यादातर बागों में, पहले मैं महाराष्ट्र में मिला था, अभी कर्नाटक में भी उसको हम काफी मात्रा में मिल रहे हैं। लाल रंग का जो तना छेदक है ये अंगूर का कीट नहीं था, ये मुख्यतः जंगल का कीट था जो कि अभी अंगूर के अंदर में नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। नुकसान पहुंचाने का इसका तरीका क्या है कि जुलाई और अगस्त के महीने में लाल रंग का एक जो कैटरपिलर टाइप का जो होगा वो छाल के नीचे को देके हमको खाता हुआ दिखाई देगा
3: जी।
4: एक जाल बनाएगा और विष्ठा होगी उसकी, वो ही छाल के नीचे ही उसका चिपका हुआ हमको दिखाई देगा। चूंकि ये छाल के नीचे खा रहा है हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे बगीचे में इसका आक्रमण हो चुका है। दो महीने तक ये छाल के नीचे खाएगा और उसके बाद में ये तने के अंदर जाके वहां पर खाना शुरू कर देगा। एक बार अगर वो तने के अंदर चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता
3: जी।
4: कोई भी कीटकनाशक है जो इसके ऊपर में काम नहीं करेगा एक बार अंदर चला गया तो, कोई भी तरीका नहीं है इसे हम कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लाल रंग का जो तनाछेदक है उसको हम कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें। करने का तरीका क्या है इसका कंट्रोल करने का, कि अगर हम बगीचे के अंदर में छाल है जो ढीला छाल है पौधे में, पुराने पौधे होते हैं जो ढीला छाल हो जाता है, उसको निकाल दें तो ज्यादातर कीट ये जो है उसी से ही नियंत्रित हो जाएगा। क्यों?

0: है उड़ के उसको हमको धोना है छाल निकालने के बाद में, 10 से 15 दिन बाद में उसको फिर से हम एक बार और एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा नियंत्रण हमको इसका मिल जाता है। काफी ही खतरनाक कीटक है, सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना है जिसमें हमको इसके लिए काम करना है, इसको नियंत्रण करना है। और इस समय जो किसान भाई और बहन है वो सचेत रहें कि आपके बगीचों में जाके देखें छाल के नीचे लाल रंग का कोई कीटक तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है जो कि आपको खा रहा है अंगूर के अंदर में, अगर है तो उसको उसी टाइम में उसका नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये 2 महीने चले गए फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे होने वाला जो नुकसान है वो काफी ही ज्यादा घातक होता है अंगूर के बगीचों के लिए और अंगूर की उत्पादकता काफी कम हो जाती है।
1: जी, ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते अगर कीट आपको नजर आ रहे हैं तो उनसे बचाव के जो उपाय है वो जल्द से जल्द अपनाए जा सके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चौधरी, अब आपसे जानना चाहेंगे बैंगन की कुछ अच्छी किस्मों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंगन के आकार को लेकर, रंग को लेकर, बीजों के बारे में भी आपने बताया कितने तरह के विकल्प जो है वो किसानों के पास होते हैं, ऐसे में किन किस्मों को उन्हें चुनना चाहिए?
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसान भाई भी इन बातों का ध्यान रख के ही प्रजातियों का चयन करें। जैसे बैंगन में आम तौर पे जो सबसे जो पॉपुलर प्रजातियां होती हैं वो जो बैगनी रंग का बैंगन होता है, और उसमें जो लंबी प्रजाति अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, कुछ हाइब्रिड प्रजातियां अभी आई हैं, पूसा हाइब्रिड 20 है, इनका आप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गोल प्रजाति जो है, खास करके जो लोग भरता बनाते हैं तो लंबा बैंगन में बीज अधिक होता है, गोल बैंगन में आमतौर पर बीज कम होता है, तो जो भरता के लिए लोग गोल बैगन पसंद करते हैं तो उसमें आप पूसा उत्तम ले सकते हैं। हमारे यहाँ के पूसा हाइब्रिड 9 है, जो हमारा वाराणसी का सेंटर है उसकी काशी संदेश है, इनका आप चयन कर सकते हैं। जब आपने रंगों की बात की, जैसे आजकल हरे रंग का बैगन है
1: जी,
2: वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। हमारे संस्थान के यहाँ से भी पूसा हरा बैगन 1 विकसित किया गया है, तो इसका चयन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल सफेद रंग का बैगन जो है, और कुछ बैगन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल देखने में, बैगन को अंग्रेजी में हम एग प्लांट कहते हैं, जो देखने में बैगन बिल्कुल अंडे की तरह होता है, तो ऐसा भी अगर बैगन आप लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा सफेद बैगन 2 और 1 है पूसा सफेद बैगन 1, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं, हमारे संस्थान की भी पूसा अंकुर है, जो महाराष्ट्र के लिए जो मैं बात कर रहा था, जो वेरीगेटेड बैगन होता है उसमें आप पूसा बिंदु है, इनका आप चयन, जो छोटा बैगन होता है लेकिन इसमें बीज थोड़ा अधिक होता है, इसलिए जब सब्जी बनाते हैं तो इसके जो फलियां होती हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, यानी वो गलती नहीं है। तो जिस इलाके में जैसी डिमांड हो ऐसी बैगन की प्रजाति का आपको चयन करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास है और इन प्रजातियों का चयन करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव, अब आपसे जानना चाहेंगे हम कि अंगूर के बागों को थ्रिप्स और माहों से कितना खतरा है और किस तरह से इससे बचाव के उपाय अपनाए जा सकते हैं।
0: थ्रिप्स सबसे महत्वपूर्ण कीट है अंगूर के अंदर में, जो अंगूर में नुकसान पहुंचाते हैं उनमें से। अभी जो वेजिटेटिव सीजन है, जो ऑफ सीजन हमारा अंगूर का चल रहा है, इसमें जब नई ग्रोथ आती है, नई वृद्धि होती है शाखाओं की, तो उसमें थ्रिप्स ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जमीन से ऊपर कोई भी अंगूर का भाग जो कि कोमल है उसपे थ्रिप्स नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके अंगूर में अभी भी आपको वृद्धि चाहिए तो नई ग्रोथ पे आपका थ्रिप्स दिखाई देगा। बारिश के मौसम में कई बार क्या होता है कि अगर तेज बारिश आ गई तो थ्रिप्स 2 या 3 दिन के लिए अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से नियंत्रित हो जाएगा, तो उस समय आपको कोई भी कीटनाशक की छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मौसम की भविष्यवाणी देखें कि अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी है क्या, अगर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है तो थ्रिप्स उसमें तुलते कम हो जाएगा, पर यह नियंत्रण आपको सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मिलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नियंत्रण नहीं मिलेगा आपको। तो हमें कीटनाशक है उनका प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है, तो जो पंजीकृत कीटनाशक है उनका प्रयोग हम अंगूर के अंदर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि जिन बगीचों में वृद्धि पूरी हो चुकी है, हमको ऑफ सीजन में क्या चाहिए कि कैन डेवलपमेंट करना है, कैन का विकास हो गया है, तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो कि अतिरिक्त वृद्धि है जो हमें नहीं चाहिए, तो उस पे थ्रिप्स का नुकसान आ सकता है, उसका प्रादुर्भाव हो सकता है अंगूर के अंदर में। पर वो ग्रोथ अननेसेसरी है, हमको वो नहीं चाहिए. अगर उस पे थ्रिप्स का प्रादुर्भाव होता है तो भी हमें उस पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है.
1: जी.
0: क्यों? क्योंकि वो अतिरिक्त वर्दी है, उसको हम हाथ से अगर टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे समय समय पे, हफ्ता 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में एक बार उसको निकाल देंगे, तो थ्रिप्स अपने आप से उसके अंदर में नियंत्रित हो जाएगा. तो हमें कुछ कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं.

0: और काफी कम खर्चे के साथ हम इसको नियंत्रण कर
1: सकते हैं। तो
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: जी, सबसे पहले तो जो ये मौसम है इसमें हमें पोषक प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम आमतौर पर चाहते हैं कि किसान भाई की उपज ज्यादा से ज्यादा हो, जो किसान भाइयों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है, लेकिन उन्हें गोबर की खाद अधिक मात्रा में डालनी है। कम से कम हमें 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम कुछ बेबेड़िया बसियाना या जो और भी हैं, जैसे एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, अन्य प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक मींस जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इनको भी अगर हम उपयोग करते हैं तो खेतों की जो हेल्थ है, मृदा की जो सेहत है वो अच्छी बनती है। इसके अलावा हमें खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं वो भी साफ रहते हैं, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रोग और कीटाणु भी कम मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई इसमें अगर चाहें तो हर्बिसाइड है एक, जैसे पेंडीमिथिलीन है जो स्टॉम्प के नाम से मिलती है, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से जब हम रोपाई करते हैं उससे जस्ट पहले हम चाहें तो इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। तो 30 से 35 दिन तक आपका खेत जो होगा वो वीड फ्री रहेगा। उसके बाद फिर आप जब भी हमको मिट्टी चढ़ानी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो 35-40 दिन के बाद आप एक बार हैंड वीडिंग करा सकते हैं और फिर पौधों पे जड़ों पे मिट्टी हम चढ़ाते हैं तो इससे उनको एरेशन भी अच्छा मिलता है और उनको जो पोषक तत्व स्वयं हम स्प्लिट डोज जो हम डालते हैं, आमतौर पर जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो हम लोग संस्तुति करते हैं कि 100-60-60 ये हम डाल सकते हैं।
1: जी जी,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, कैसे हमें मिर्ची, बैंगन और टमाटर की जो फसलें हैं उसमें कैसे उसमें कीटों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कीटों से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमने ये जाना कि हमें उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उन्हें कैसे उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, साथ ही जो मिट्टी अभी बारिश की वजह से धूल के नीचे उतर जाती है उसे कितने दिनों में हमें फिर से चढ़ाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयास हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। तो किसान साथियों, यहां पर अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किसान साथियों, आप खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आजीविका को सशक्त बनाने हेतु, हमारी कृषि में नवीनतम बदलाव लाने हेतु कृषि उपकरणों का, कृषि यंत्रों का सहज उपयोग करने हेतु, उन्नत किस्मों की जानकारी हेतु और हमारी कृषि भूमि की देख रेख हेतु और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु हम अपने इस कृषि कार्यक्रम के माध्यम से इन सब जानकारियों को लेते हैं और हमारी कृषि को हम सशक्त बनाते हैं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कैसे हम चारा प्रबंधन कर सकते हैं, चारा कैसे हमें उसका रखरखाव करना चाहिए, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे इसका रखरखाव हम करें और इसको कैसे सड़ने से बचाएं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बागवानी के बारे में, जो भी किसान भाई अभी नई नई बागवानी लगाना चाहता है तो कैसे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आदि जानकारियों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमें चारा प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे घरों में हम बैल हमारे घर में होते हैं, साथ ही दूध का उत्पादन के लिए हम गाय है, भैंस है, बकरी है, आदि आदि पशुओं का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, हमारे खेतों में, जिससे उसका खाद बना पाए, आदि जरूरतों के लिए हम हमारे हमारे घरों में पशुपालन करते ही हैं। तो उन सभी के लिए एक पोषण आहार की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि हमारे पशुओं को हम पौष्टिक आहार दें ताकि हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहे और हमारे दूध उत्पादन में भी हमें भरपूर लाभ मिल सके।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो पशुधन भी रखते हैं और पशुओं में कुछ किसान भाई गाय रखते हैं, कुछ भैंस रखते हैं, कुछ गाय और भैंस दोनों रखते हैं। अगर हम कुल इसकी लागत का देखें, जो हमारी पशुधन में लागत आती है, उसमें 60-70% जो है उसके खान पान का हिस्सा रहता है। अब किसान भाइयों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पशु के स्वास्थ्य को अगर सही ढंग से हमें मेंटेन करना है, वो दूध उत्पादन काफी समय के लिए लेना है, तो हरे चारे की इसके लिए बहुत उपयोगिता है। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत का कुछ हिस्सा हमें चारे के लिए भी रखना है। काफी किसान भाई इसका ध्यान रखते हैं और काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि खेत का जो बिल्कुल बेकार हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं चारे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा खेत का चारे के लिए पहले से तैयार करके रखना चाहिए। उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के लगा के रखें। और अभी जो चारे हैं उसमें ज्वार सबसे मुख्य फसल है और इसमें मल्टीकट ज्वार आती है, आपको बाजार में इसका अच्छा बीज भी मिल जाता है। इसके अलावा जहां पर थोड़ी पानी की कमी है वहां बाजरा लगा सकते हैं और इसको संतुलित करने के लिए जैसे ये घास खुल के चारे हैं और फिर आपका दलहनी चारे भी हैं जिसमें लोबिया मुख्य फसल एक है, तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो जो पशु का जो एक प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो भी सही ढंग से होने के लिए लोबिया जो दलहनी चारा है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ज्वार भी लगाइए और कुछ कुछ में आप लोबिया भी लगा सकते हैं या दोनों के दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति आप लोबिया की भी लगा सकते हैं, जिससे पशु को संतुलित आहार मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी उसका अच्छा होगा।
8: जी, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
9: पशुओं पशुओं का दूध बढ़ाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए चारा काफी जरूरी होता है। खासकर हरा चारा पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, साथ ही ये पचने में भी आसान होता है। चारे को ज्यादातर हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा चारे का उत्पादन हो जाता है, लेकिन वो इस्तेमाल ना होने पर खराब हो जाता है। ऐसे में चारे का प्रबंधन जरूरी है, जिससे पशुओं को साल भर चारा मिलता रहे। हरे चारे का संरक्षण और भंडारण अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उनकी पौष्टिकता भी वैसे ही बनी रहती है। दरअसल साल के कुछ महीनों में चारे की ज्यादा उपलब्धता हो जाती है, जबकि कुछ महीनों में चारे की कमी हो जाती है, जिसके लिए चारा प्रबंधन काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा संरक्षित चारा खिलाने से पशु आहार में दाने की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है और इस तरह पशुपालन में संपूर्ण आहार की लागत भी कम हो जाती है। चारा प्रबंधन करने से पूरे साल उच्च प्रोटीन और ऊर्जा मूल्यों के साथ उच्च सुपाच्य चारे की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। हरे चारे के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली हे बनाना और दूसरी साइलेज बनाना। हे बनाना विधि में घास को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे काटा और सुखाया जाता है। सूखी हुई घास को हे कहते हैं। हे में पोषक तत्वों की मात्रा पैरा भूसी या तुड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं उच्च नमी की मात्रा वाली फसल का नियंत्रित अवायवीय किण्वन करने के बाद बनाए हुए उत्पाद साइलेज कहलाते हैं। साइलेज बनाना चारा संरक्षण का एक प्रभावी और सामान्य तरीका है। साइलेज को साइलेज पिट में तैयार किया जाता है। ऐसी फसलें जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सूखने में काफी समय लगता है, उन्हें हे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर चारे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चारा प्रबंधन काफी जरूरी है।
4: किसान साथियों, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, हमें हमारे पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारे की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हरा चारा हम हमारे पशुओं को हरा चारा दे। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, हमें अभी भरपूर मात्रा में हरा चारा मिल सकता है, लेकिन समय के साथ फिर ये चारा जो होता है फिर सूख जाता है, तो उस समय हमें बड़ी समस्या होती है हरे चारे को लेकर। इसके लिए हमें पुनः हमारे खेतों में हरे चारे के लिए फिर से हमें फसल का डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी हम जो हमारे आसपास अभी बारिश के समय में जो हरा चारा जो पौष्टिक चारा जो अभी उग रहा है उसे हम उसका प्रबंधन कर ले, जैसे कि हमें इस रिपोर्ट में हमने सुना कैसे दो विधियों के माध्यम से हम चारे को उसका प्रबंधन कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा, और ये इस चारे की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसको काटने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक विधि से इसकी कटाई करके उसको हम इसका प्रबंधन करते हैं तो ये इस चारे की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी, साथ ही हमारे जो पशु है उनको भरपूर पोषण मिल पाएगा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: किसान साथियों, चलिए डालते हैं एक नजर बागवानी के ऊपर। हमारा जो किसान है, बागवानी बहुत सारे किसान करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बागवानी हमारे लिए एक फायदेमंद सौदा बन सकती है, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
10: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और बागवानी का जब बगीचा आप लगाने जा रहे हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो आनन फानन में जो पौधे लाते हैं और उनको लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि बगीचा लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसमें आपको जो है अपनी लगन और निपुणता के साथ साथ इसमें जो है उन्नत किस्में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। तो जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वहां की जो है मृदा और जल वो कैसा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके बगीचे की स्थापना का। तो जैसे कि आपकी अगर मृदा का पीएच मान है, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन देखता है, तो उसी तरीके से किसान भाइयों को पीएच उसी के रूप में काम करता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से ऊपर है तो उसमें जो है जो फल वृक्ष है उनका चुनाव अलग होगा, 8 है 9 है तो वो अलग होगा, उसकी विद्युत चालकता कितनी है जल की, उनका जो है उन कौन से फल वृक्ष उसके लिए सुटेबल होंगे वो उनका अलग अलग होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि 5 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में है आपका पीएच, तो इनमें आप जा सकते हैं आम हो गया नींबू हो गया, लेकिन अगर आपका पीएच है मृदा का वो 8 से ऊपर भी जा रहा है तो उन क्षेत्रों पर हम किसान भाई जो है बेर बेल आंवला उस तरीके के फल वृक्षों की स्थापना करेंगे तो उनको आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
8: जी तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट कि कैसे नए बागों की स्थापना की जाए, कैसे हमारे किसान की आय इससे बढ़ सके।
9: ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जाँच जरूर कराए, मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उन्नत किस्मों का ही चयन करे। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें। आम के नए बाग लगाने की तैयारी पहली बारिश से ही शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। वहीं अमरूद के बाग लगाने के लिए भी हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाग लगाने के लिए कलम तैयार करने के लिए 1 महीने की आयु वाले इकहरे आरोह का चयन किया जाता है। मूल वृंद और कलम को 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर दोनों को जोड़कर अल्काथीन की एक पट्टी से लपेट दिया जाता है। जब कलम से अंकुर निकलने लगे तो मूल वृंद से अलग करके उसे लगा दिया जाता है। इसके अलावा नर्सरी में तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में रोपे। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
4: किसान साथियों, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने सुना, हमें हमारी मृदा और पानी का परीक्षण करवाने की आवश्यकता है और हमें देखना है कि हमारी मृदा और पानी का जो पीएच मान है वो कितना है, उसके हिसाब से हमें हमारे खेतों में हमारी जमीन में पौधों को लगाने की आवश्यकता है। किसान साथियों, जो पौधा अगर हम पीएच और हमारी मृदा का और पानी का जो पीएच लेवल है उसको अगर हम देख के हमारे खेतों में पौधों को लगाएंगे तो उनकी पैदावार, उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी जो बढ़वार है वो अच्छी होगी और साथ ही हमें जो फल है

0: है वो समय के साथ उसमें पानी की जो मात्रा है उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम हमारे कुओं से, नदी से या जल स्रोतों से, जहां से भी हम पानी अभी ले रहे हैं, मोटर के माध्यम से हम लेते हैं और सीधा हमारे खेतों में अनावश्यक रूप से वहां पर सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जल स्रोतों का जो स्तर है, पानी का स्तर है, वो भी कम होता है और जितना अनावश्यक पानी खेतों से बाहर निकल के चला जाता है और यहाँ पर हमको पौधों को उपयुक्त समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है, ना कि एक ही बार में ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं और एक सप्ताह तक फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो पौधा है उन्हें हमें हर दिन और जितना आवश्यकता अनुसार पानी देने की आवश्यकता होती है। इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखकर जो हमारे नए किसान हैं वो अपनी बागवानी को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। किसान साथियों, अभी आपने बागवानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों को जाना है, समझा है, सुना है, तो अभी आइए थोड़ा सा पुनः रुक करते हैं चारा प्रबंधन के ऊपर। कौन कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए चारे के लिए, कौन सी फसलें का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ज्यादा पौष्टिक वाली फसलें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके उनको प्रबंधन के लिए रख सकते हैं, आदि बातों को आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे खेती की जमीन है उसमें चारा फसलों में सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं। जैसे खरीफ की बात करेंगे, जो अभी सीजन खरीफ का सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन है अभी, इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें आप चारा फसलों के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहां थोड़ा सा पानी की कमी हो वहां बाजरा की फसल लीजिए, और जहां भरपूर पानी है, पानी की अच्छी सुविधा है, वहां पर आप ज्वार की फसल लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे घास कुल की फसलें हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये घास कुल की फसलें हैं, लेकिन दलहनी चारों में हमारे को लोबिया की फसल इसमें लेनी है। और अगर रबी की बात करें, जब सर्दी का मौसम होता है, तो उसके अंदर मुख्य फसल बरसीम है, और जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां बरसीम की फसल ले सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। लेकिन जहां थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, आप वहां रिजका की फसल ले सकते हैं, जो दलहनी चारे हैं। लेकिन वहां घास कुल में आप जई की फसल भी ले सकते हैं, जो कि काफी तेजी से इसका एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा मात्रा में चारा चाहिए, तो जो रबी की फसल में आप जई की फसल लगा सकते हैं। भारतीय कृषि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, काफी अच्छी किस्में इन लोगों ने निकाली है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है वहां से भी किस्में काफी निकली हुई हैं। किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी किस्मों का बीज वहां से मिल जाएगा, और वो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत में कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा चारे के लिए जरूर छोड़ें, क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हरे चारे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, जब पशु दूध नहीं देता है तो उसको हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी आगे गाय वापस से दूध देना चालू करेगी तो वो जो टाइम गैप होगा जब हरा चारा आपने नहीं खिलाया उसको, तो उसके अंदर आपका पशु का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो इसे हमेशा ध्यान रखना है कि हरे चारे को बिल्कुल खिलाना बंद नहीं करना है, भले आप थोड़ा खिलाइए लेकिन आप पशु को चारा जरूर दीजिए, और दोनों सीजन में आप चारा फसल के लिए अपने खेत को तैयार कीजिए। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें भी हैं, अभी काफी तेजी से इनका एरिया बढ़ रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर घास है, और आपका जहां सिंचित क्षेत्र है वहां पर अब बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का एरिया काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम में से काफी किसान ऐसे हैं जो फलों की खेती करते हैं और जिसमें अमरूद और पपीता काफी मुख्यतः अपने झाबुआ जिले में इसको किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर वो पिंकिश कलर का जो अमरूद आता है उसकी कौन सी किस्म है वो जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पपीते में कौन कौन सी किस्में आती है, कौन सी किस्म की पपीते हमें लगाने चाहिए। कभी कभी होता है हम आनंद फानंद में ले आते हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन कुछ को पौधे खराब निकल जाते हैं, तो उसका चुनाव हमें कैसे करना चाहिए और कौन सी किस्मों के पौधों को हमें लेना चाहिए, कौन सी किस्में हैं, उनके नाम आदि सब कुछ जानेंगे और लेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: किस्मों के बारे में जानना चाहा तो अमरूद की जो किस्में हैं वो इलावा सफेदा है, सरदार है, श्वेता है, ललित है। ललित जो कि उसका पिंक फ्लैश होता है और ये श्वेता है उसका एकदम सफेद होता है, तो उस तरीके की किस्मों पे आप जा सकते हैं। और पपीता का रहा सवाल, तो पपीता की जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप, क्योंकि पपीता नर और मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको जो है उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे रेड लेडी हो गया, सिंटा, पूसा डिलीशियस, पूसा जायंट, इस तरह की किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको उस तरीके की समस्या नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्या किसान भाई बीज तो ले आते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे पपीता ही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नर पौधा है या मादा पौधा है। तो उसमें उभयलिंगी पौधा होगा तो इन किस्मों में जो उभयलिंगी किस्म के पौधे होते हैं जिससे कि उनका फलन और पुष्पन अच्छा होता है, तो इनको आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और पपीता के बारे में जैसे मैं अभी कहूंगा कि जैसे बरसात का मौसम आया हुआ है, तो पपीता अगर आपका क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे वहां तो पाले की समस्या नहीं होगी, लेकिन जहां जिस एरिया में पाले की समस्या है वहां पे जो है पपीता का आप चुनाव ना करें। और अभी भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा रुकेंगे अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो, क्योंकि इसमें अभी जो डैम्पिंग ऑफ है आद्र गलन वाला रोग होता है शुरू में, तो उससे बचाया जा सकता है आपको। तो अभी थोड़ा सा आप पपीता अमरूद को तो आप सर्वोत्तम समय है लगाने का, लेकिन पपीता को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: किसान साथियों, अभी आपने जाना कि जो अमरूद लगाने का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, यह सबसे उचित समय है कि जहां पर हम अपने अमरूद को लगा सकते हैं, और जो पपीते की फसल लेना चाहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसे सब्र की आवश्यकता है, थोड़ा समय और उसको इंतजार की आवश्यकता है, उसके बाद वो भी हम पपीता लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ पुनः हम रुक करते हैं चारा प्रबंधन को लेके। चारा प्रबंधन को लेके हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे, आइए उसे जारी करते हैं।
3: फसलें हैं जो चारे की फसलें हैं, आप ज्वार लगा सकते हैं वहाँ। और सबसे ज्यादा जो अपने देश में अगर इसका ज्वार का बीज आता है तो हैदराबाद से ही आता है वो, या कहीं भी नजदीक में आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी मिल जाएगा। इस सीजन में आप ज्वार लगा सकते हैं, आप मल्टीकट ज्वार लगाइए जिसको कि आप एक बार से ज्यादा बार काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसके अंदर कि आप अपने खेती के लिए जो अच्छी जमीन है वो खेती के लिए काम में लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बंजर टाइप जमीन है, तो आप उसमें घासें भी लगा सकते हैं। तो घास वाली फसलों में आपका सेनक्रस एक ग्रास है जिसको हिंदी में अंजन बोलते हैं, और स्टाइलो एक घास है, दलहनी घास है। ये दोनों घास के बीज को आप जो थोड़ी बंजर टाइप जमीन है उसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो आपकी दोनों घास जो है बहुत साल तक चलती हैं, आपकी कम से कम 4-5 साल तक आपको चारा मिलता रहेगा। एक बार शुरू में आप 5-6 महीने तक उसको नहीं काटिए, लेकिन बाद में आप उसको जैसे ही बारिश होगी तो 30-40 दिन के एक अंतराल के बाद में गैप पर आप उसको काट सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घास अगर हो गई है उसमें तो आप काट के सुखा भी सकते हैं, जैसे अभी चैनल में बताया गया, ज्यादा मात्रा में घास है तो आप काट के सुखा लीजिए, और जब आपके पास चारा नहीं है उसमें आप पशुओं को उसके अंदर दाना मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी अच्छी जमीन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ी बेकार जमीन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में या हर गांव में कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं जो बंजर टाइप की होती हैं और चरागाह के लिए सरकार छोड़ती है, तो उन चरागाह की जमीनों का विकास ही बहुत जरूरी है। हमने ये पाया है कि जहां जागरूक किसान है और ग्राम सभा बहुत एक्टिव है, प्रधान बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जागरूक रहिए, उन चरागाह की जमीनों में भी जो पेड़ लगे हुए हैं उसके बीच में जो मैंने घासें बताई आपकी अंजन घास है या स्टाइलो घास है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी तरह से होती है, वहां के लिए वेराइटीज है। इन घासों को लगाने पर आप जोड़ दीजिए और बारिश के सीजन में लगाइए, जिससे इनका बीज जम जाएगा और आपके पशु का, काफी पशु ऐसे भी होते हैं जो चरागाह में चरने जाते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो घर में ही लोग अपना पशुओं को चारा और दाना देते हैं, लेकिन खास करके जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय वगैरह है, इनको लोग चरागाह में चराने ले जाते हैं और अच्छी वैरायटी अगर घास होगा तो इन पशुओं को भी फायदा होगा। स्पेशली जो गरीब किसान हमारे हैं, भूमिहीन है या छोटे किसान हैं, उनके पास में जमीन नहीं होती या बहुत कम जमीन होती है चारे के लिए, जमीन वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो चरागाह का अगर अच्छा विकास आप लोग कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया दोनों तरह की घास, सेंक्रस घास भी और स्टाइलो भी आप लगाइए, उसके अंदर बहुत अच्छी बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, क्योंकि वहाँ बारिश काफी अच्छी होती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसलिए मैं ये किसान भाई को कहना चाहूंगा जो हमारे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पर और प्रचार किया हम लोगों ने, तो वहाँ बहुवर्षीय चारों में आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा नेपियर हाइब्रिड को लगाइए अगर आपके पास में पानी की सुविधा सिंचाई की है तो, क्योंकि क्या होता है जैसे बारिश के मौसम में तो ठीक है, बाद में सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसका ग्रोथ कम होती है बाजरा नेपियर हाइब्रिड की, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको साल के 10 महीने तक अच्छा चारा इससे प्राप्त होगा। और थोड़ा अगर पानी का जैसे अरेंजमेंट आपका नहीं होता तो गिनी घास है, गिनी घास भी बाजरा नेपियर हाइब्रिड की तरह ही एक बहुवर्षीय घास है, ये आपका बीज से भी हो जाता है और इसकी जड़ें भी लगती हैं, तो आप इसमें 50x50 सेंटीमीटर या 2 फीट के गैप पर जो है खेत अच्छा तैयार करके उसमें आप ये घास की जड़ें लगा दीजिए, आपके कम से कम 30 से 35 हजार जड़ें 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगी और पूरे वर्ष आपको इसे चारा मिलेगा, पूरे वर्ष इसे चारा मिलेगा, आपको बार बार बीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुवर्षीय घास मैंने बताई, सिंचित क्षेत्र में बाजरा नेपियर हाइब्रिड और जहां थोड़ा सिंचाई की सुविधा नहीं है, रेनफेड एरिया है, तो गिनी घास, सुडान घास आपने बताया वो भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्विंटल चारा जो है पूरे वर्ष में आप इससे ले सकते हैं, 8 से 10 एक 30-40 दिन के गैप पर जो है आप जो है चारा काट सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैसे मैंने पहले किसान भाई को बताया आपके एरिया के अंदर जो बहुवर्षीय चारा जैसे मैंने बताया जो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है ये काफी तेजी से वहां फैल रहा है, आप अपने एरिया को थोड़ा एरिया उसमें डेडिकेट कीजिए, आपके खेत का जो एरिया है उसके अंदर बहुवर्षीय चारा लगाइए बाजरा नेपियर हाइब्रिड, क्योंकि बारिश काफी अच्छी होती है आपके उधर, बारिश काफी अच्छी होती है, पानी की कमी नहीं है वहां पर, तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्वार अगर आप अपना खेत को पूरे हर सीजन के लिए एंगेज नहीं करना चाहते आप ज्वार लगाइए, उसमें एमपी चरी है, मल्टीकट ज्वार की काफी वैरायटीज हैं, उसको लगाइए और सर्दी के मौसम में बरसीम लगाइए उसके अंदर दलहनी चारों के अंदर, और जई भी वहां अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से आप अपने खेत का हिस्सा बांट लीजिए, कितने हिस्से में आपको बहुवर्षीय चारे लगाने हैं और कितने हिस्से में आपको एक वर्षीय चारे लगाने हैं, क्योंकि कई बार समस्या क्या आती है कि जो खेत खाली होता है तो वहां पूरे गांव में जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो काफी किसान इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम बहुवर्षीय चारा नहीं लगाएंगे हमारा खेत नष्ट हो जाएगा, तो आप ज्वार लगाइए खरीफ के मौसम में और लोबिया लगाइए दलहनी चारे के रूप में, और रबी के मौसम में बरसीम लगाइए और जई लगाइए, लेकिन अगर आपका थोड़ा फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था है तो आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी लगा सकते हैं जो पूरे वर्ष आपको अच्छा चारा देगा, सिर्फ जब आपको पानी कमी होगी उसमें सिंचाई देने की, सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो बारिश से जो पानी मिल रहा है उससे भी उसे काम चल जाए।
1: इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो पानी का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, पानी थोड़ा सा खारा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कौन से चारे का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा चारा हमें लगाने की आवश्यकता है?
3: देखिए आपके यहाँ जो पाली में पानी है थोड़ा पीएच ज्यादा है मेरे को मालूम है, सेलाइन वाटर वहां पर है, तो कुछ ग्रासेज हैं, घासें जैसे हैं, जैसे अंजन घास है आप ये लगा सकते हैं। एक बार आप थोड़ा वहाँ काजरी एक संस्था है जो पाली में सेंटर भी इसका है, वहां से थोड़ा संपर्क कीजिए, कुछ वैरायटी ऐसी हो जो वहां सस्टेन कर जाए, नहीं तो घास काफी अच्छी होती है सेलाइन वाटर के अंदर, एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है, तो अंजन घास वहां काफी अच्छी होती है, उसको आप वहां पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको पूरे साल अच्छा चारा मिलेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: हाँ किसान भाइयों, अभी जैसे सरकार के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हमारा काफी बड़ा क्षेत्र जो है उद्यान की फसलों में जा रहा है, तो इसमें एक समस्या आती है कि जो उद्यान की फसलें हैं, जो पेड़ हैं, वो काफी साल तक चलते हैं। आपका एक पेड़ लगा है 20-25-30 साल तक चलता है। अब एक समस्या आती है कि इस पेड़ों के बीच का जो गैप है, कम से कम 10-12 फीट का गैप रहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छा मैं कहूंगा, शुरुआत में जब पौधों की हाइट बहुत कम होती है, उसमें आप जो चारे की फसलें जैसे मैंने बताई, आपका ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है या आपका सर्दी में रिज़का है, ये फसलें आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती जाती है, उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है, तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर आता है। उसमें हम ये कहेंगे, जैसे पेड़ की हाइट ज्यादा है, पुराने बगीचे हो गए हैं, तो उसके बीच में आप गिनी घास, जो शेड लविंग बोलते हैं, जो छाया में भी अच्छा उत्पादन देती है, आप गिनी घास लगा सकते हैं। जो भी पानी पेड़ों को मिल रहा है उसी पानी से वो हो जाएगी, या बारिश के पानी से भी वो सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जैसे फलों के बगीचे हैं, तो आप सेंक्रस अंजन घास है वो लगा सकते हैं, स्टाइलो लगा सकते हैं, या 2-3 लाइन आपकी सेंक्रस से लगाइए, बीच में 2 लाइन आप स्टाइलो के लगा दीजिए, तो इससे आपको दलहनी और जो घास कुल की दोनों घासें आपको मिलेंगी और पशुओं को बहुत अच्छा चारा आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आप फलों से आपको आमदनी हो रही है और आपको बीच में जो घास है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। न केवल आपका पशुओं का स्वास्थ्य ऐसे सुधरेगा, आपका जो पशुओं का जो बजट खर्चा है उसमें कमी आएगी, आप उसको बेच के अपना अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं इससे।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, हम लगातार चारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। किसान साथियों, हम कौन सा चारा जो होता है जो 12 महीने हमको मिल सकता है, और हाँ बिल्कुल, हमको चारे की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे सभी के घरों में अधिकतर पशु मिलते हैं, दूध उत्पादन हम करते हैं, साथ ही उनके गोबर से जो हमारी मृदा है उसका संरक्षण होता है, उससे जो खाद बनाई जाती है उससे हमें जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पशुओं की बहुत आवश्यकता है, तो पशुओं के लिए चारे की हमें उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, हम लगातार ये जान रहे हैं कि कौन सी जो घास है वो अति उत्तम होती है, कौन सी घास हमें कौन सी जमीन में हमें लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी गुणवत्तापूर्ण घास होती है, और इस घास का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी ऑन सीजन है जहाँ पर हमें अधिकतर चारा मिल सकता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है उस समय हमें घरे चारे की काफी दिक्कत होती है। जिसके पास मोटर है वह हरे चारे की फसल को डाल के वहां पर अपनी फसल को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिन किसान भाइयों के पास फसल की पानी का जो प्रबंधन उतना अच्छा से नहीं है, वो किसान भाई कैसे इस समय में चारे का प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे इस चारे को लंबे समय तक अपने संग्रहालय में रख सकते हैं, ताकि समय आने पर हमारे पशुओं को एक उपयुक्त और पौष्टिक आहार हम दे सकें। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और आइए यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एक्सपर्ट की राय, कैसे हम हमारे चारे का और अच्छे से इसका प्रबंध कर सकें। आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की

0: राई।
1: हमारे देश में जो बहुवर्षीय चारा फसलों का प्रचलन है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि हर सीजन में एक तो बीज का अरेंजमेंट करना, अच्छे बीज का अरेंजमेंट करना किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुवर्षीय चारों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित चारा इसमें है वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। नेपियर एक अफ्रीकन हम कह सकते हैं प्लांट टाइप है, जिसकी हाइट, उसको हाथी घास भी बोलते हैं, वो हाथी भी उसमें छिप जाता है जाके, लेकिन उसकी पोषक तत्व तो ज्यादा नहीं थे। तो बाजरा के अंदर पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं, तो बाजरा और नेपियर का क्रॉस करा के वैज्ञानिकों ने एक नया प्लांट टाइप निकाला, बाजरा नेपियर हाइब्रिड। और पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में भी आपका जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय है और दक्षिण भारत में भी अलग अलग वेराइटीज उन एरिया के हिसाब से निकाली जा चुकी है। कोयम्बटूर से भी अच्छी वैरायटी निकली है, हमारा चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से भी निकली है, धारवाड़ से भी अच्छी वैरायटी निकली है, पंजाब हिसार से भी निकल चुकी है। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करके और खेत का कुछ हिस्सा आप इसमें बहुवर्षीय चारों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे भी ट्रायल किए गए हैं जिसके जरूरी नहीं कि आप पूरा क्षेत्र अपना खेत का जो है बहुवर्षीय चारों में दे दीजिए। आप उसमें एक ट्रैक्टर क्रॉस कर जाए 10 फीट का गैप रख के, आप कुछ पंक्तियां बहुवर्षीय चारों के लगा सकते हैं और बीच में सीजन के हिसाब से, जैसे आपका खरीफ में ज्वार लगा दीजिए, आप लोबिया लगा दीजिए, और रबी सीजन में बरसीम लगा दीजिए, या आप कुछ एरिया ऐसा भी है जहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, जैसे मैंने राजस्थान या गुजरात का एरिया है, वहां पर इसका भी लगा सकते हैं उसके बीच में आप जो है। इसके अलावा जई भी लगा सकते हैं, तो आप बहुवर्षीय चारों का फायदा भी उठा सकते हैं और जो एनुअल क्रॉप फोटो क्रॉप बोलते हैं, एक वर्षीय चारे बोलते हैं, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। पूरे वर्ष भर आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और एक बात और है कि अगर आपके यहाँ बहुवर्षीय चारों की फसल लगी हुई है तो आप अपनी लागत, जो दूध की लागत आती है जो उत्पादन की पशुओं की, उसको भी आप घटा सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य भी इससे काफी बेहतर होता है।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: हमारा किसान जो है आम का बहुत ही बड़ा शौकीन है, तो आइए जानते हैं आम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कैसे और कहां से हमें पौधा लेना चाहिए और कौन सा पौधा अच्छी किस्म का होता है और किस पौधे से हमें ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: आप बाग लगाना चाहते हैं तो वहाँ आप पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वहाँ की जो मिट्टी और जल का आप जो है परीक्षण करवा लें, और उसके बाद में आप जाएं और उसमें जो उन्नत किस्में हैं वो, क्योंकि आम में अनियमित फलन और पुष्पन की समस्या होती है, जो नियमित फलन देती हैं वो जो हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका, इस तरह की किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा होगा। और क्योंकि जो इनके जब वृक्षारोपण भी आप करने जा रहे हैं तो आम में कुछ किस्में ऐसी हैं जैसे आम्रपाली है, और तो ये जो है इसको सघन बागवानी में भी आप लगा सकते हैं, तो इनकी जो दूरी होगी पौधे से पौधे की वो जो है 2 से 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्में हैं जो उनका जो छतरक का विकास है वो ज्यादा क्षेत्र में होता है, तो उनके लिए आपको कम से कम 8x8 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने गड्ढे नहीं खोदे हैं तो इस साल एक्चुअली इनका जो आपको लगाने चाहिए बाग, उनका गड्ढों का खोदने का सही समय जून का है, तो जून में जब आप गड्ढे खोदेंगे 1 महीने के लिए उनको खाली छोड़ देंगे, और 1 महीने में जैसे ही आपने वो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी निकली है उसकी आधी मिट्टी और आपके जो सड़ी, अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, और अगर आपके वहां कोई दीमक की समस्या है तो दीमक की जो दवा है क्लोरोपाइरीफॉस, उसको 100 ग्राम उसमें मिला करके, और इन मिट्टी, गोबर की खाद और क्लोरोपाइरीफॉस को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, कुछ ट्राइकोडर्मा भी डाल देंगे और उसको भर देंगे आपने जब गड्ढा खोदा है उसके 15 से 20 दिन बाद में, और भरने के बाद में उसको पानी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसकी हीट होगी अंदर की वो उससे निकल जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने गड्ढा भरा है और उसमें तुरंत आपने पौधा लगा दिया तो उसमें जो है पौधे की मोर्टिलिटी की संभावना होगी, तो वो 10 दिन पहले करीब उसको अच्छी तरीके से भर दें। और जब आप ये उन्नत किस्में लें, लेकिन सबसे पहले आप ये बात का भी ध्यान रखें कि ये उन्नत किस्में लेंगे कहाँ से, तो जहां से आप लेने जा रहे हैं या तो आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या फिर आप जो है कोई जो कृषि विश्वविद्यालय है या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से ही कलमी पौधे लें। अगर वहाँ पे भी आपको सुनिश्चित नहीं हुआ है कि हमें पौधा नहीं मिला है, तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसकी एक्रेडिटेड नर्सरी, जो प्रमाणित नर्सरी है, जिनकी 3-स्टार रेटिंग है, उनसे पौधा लें, तो उससे क्या होगा कि आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये पौधा फला किस्म का ही है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहर आनन फानन में जब हम पौधा खरीदते हैं, तो बाहर से जो पौधा लिया उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कौन सी किस्म का है, और बाद में जो है वो बीजू पौधे से तैयार होते हैं, तो उसमें जो है फलन काफी देर बाद में होता है, तो उसमें किसान को जो है थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरीके की आपको सावधानी रखनी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: किसान साथियों, आइए जानते हैं, अगर कोई हमारा किसान भाई है वो बागवानी लगाना चाहता है, तो इसमें हमें सरकार द्वारा क्या अनुदान मिल सकता है, क्या इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें अनुदान मिलेगा, और कहां से क्या प्रोसेस हमें करने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
3: तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार, इसमें काफी मदद किसानों को बगीचे स्थापना के लिए दी जाती है। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप उसका क्राइटेरिया क्या है, आपका जो है 0.4 हेक्टेयर से और 4 हेक्टेयर तक आप जो है बगीचा लगा सकते हैं, और इवन जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए ये जो सीमा है ये 0.2 हेक्टेयर ही है। और इसमें जैसे आप 1 हेक्टेयर के लिए जो आप बगीचा लगाने जा रहे हैं, आम नींबू अनार अमरूद, तो इसके लिए क्या है, अगर आप ड्रिप के साथ लगाने जा रहे हैं तो उसकी अनुदान राशि जो है करीब 30,000 से 40,000 रुपए, या जो कॉस्ट आ रही है उसका लगभग 50% अनुदान उसमें दिया जाता है किसान भाई को, और 50% वो अपना लगा सकता है, और बिना ड्रिप के अलग है। तो उनके लिए क्या करना होगा, किसान भाई को अपना जो है जो आवेदन करना होता है, और उनके जो जिस राज्य में जहाँ है वो, उसके जो है कृषि विभाग या जो उद्यान निदेशालय है वहाँ जो कृषि अधिकारी के संपर्क करके, और वो उस तरीके का अपना आवेदन करेंगे, तो इस तरीके की वो जो अनुदान राशि है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अनुदान राशि है वो उसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल खरीदने के लिए, और जो स्थापना करने के लिए, और जो ये क्या कहते हैं आपके कीटनाशक वगैरह दवा खरीदने में आपको सहायता करेगी और आपको अनुदान राशि दे होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम धनराशि का बोझ नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आप बगीचा लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी आगे बढ़ेगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: इसमें जो है आप ये CISH है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने आम की बहुत सारी किस्मों को निजात किया है, और उनका क्षेत्रीय केंद्र भी है वहाँ मालदा, तो उसके पास से आप जो है उसकी उन्नत किस्में लेंगे, और चाहे आप वहाँ कौन सा जो है प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है, इसके अलावा नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, शाहपुर में भी एक वहाँ केंद्र है, और वहाँ एक सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो आपके राजेंद्र नगर में है, वहां से भी आप जो है इसके जो उन्नत किस्मों का प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं, और वो गड्ढों की साइज और स्पेसिंग है उनके लिए आप टेक्निकल जो है डिस्कशन कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ से भी कर सकते हैं, और जो गड्ढे हैं वो किस्म के हिसाब से आप खोदें, जैसे कोई बौनी किस्म है और आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो जैसे आम्रपाली वगैरह है तो 2.5 x 2.5 मीटर पे आप उनकी जो है पौधारोपण करेंगे, और जो दूसरी ओजस्वी किस्म है जिनका जो है छतरक ज्यादा बड़ा होता है तो उनको आप 6 से 8 मीटर की दूरी पर स्थापित करें।
0: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप अभी तक लगातार घास प्रबंधन को लेकर काफी चर्चा को आप सुन चुके हैं। साथ ही आपने उन्नत आम की उन्नत किस्मों के बारे में भी सुना। अब ये जो समय चल रहा है, यह बागवानी के लिए उत्तम समय है और जो भी किसान भाई बागवानी में रुचि रखता है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पर आपने बहुत सी उन्नत किस्मों के आम के बारे में जाना है, तो आप आम लगा सकते हैं, साथ ही अमरूद भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आम और अमरूद के साथ ही साथ घास से संबंधी और कुछ और जानकारियों को जारी करते हैं और आइए सुनते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: की जो किस्में हैं, इसमें आप जो उन्नत किस्में हैं इलावा सफेदा, सरदार और जो नई किस्में हैं उनमें श्वेता और ललित है। तो ललित का जो है उसका जो पिंक फ्लेश होता है तो उसका प्रोसेसिंग क्वालिटी अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो इनका आप एक मिश्रण कर सकते हैं अपने जब पौधा रोपण कर रहे हैं। और इनकी पौध की सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो CISH है आपके लखनऊ में, वहाँ पे ये पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों के लिए आपको जैसे अभी आपने संपर्क कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ के जो भी नर्सरी इंचार्ज होंगे उनसे आप फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़ के उनसे संपर्क करेंगे और उनका जो रिक्विजिशन लेटर है उस पे आप जो है लिखेंगे तो वहाँ से आपको पौधे की सामग्री जरूर मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको फोकस किया है कि जो इनके जो लगाने की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो आप जो अमरूद को है 6x6 मीटर दूरी पे लगाएंगे। और अगर सघन बागवानी में जाना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी पहले एक और बात की जो है कि अमरूद में जो समस्या आती है वो उखटा रोग जिसे विल्ट बोलते हैं, अगर आपके जो मृदा का पीएच है वो 8 से ऊपर है या 8 और 9 के लगभग है तो वहां जो ये फ्यूजेरियम एक फंगल होता है वो उसके मतलब इतने चांस होती है कि वो पौधे के मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि उस मृदा में जो है विल्ट की

0: समस्या है, जो उकठा रोग है वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो अगर इस रेंज में है आपका पीएच, तो इसमें जो है आप अमरूद ना लगाएं, और इससे नीचे है तो आप अमरूद लगाएं। ये उन्नत किस्म है, आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो सीआईएच इंस्टीट्यूट है, या जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है, या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे इन किस्मों के जो है चुनाव करके आप इनको लगाएं, और 6x6 मीटर पर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: हमारा झाबुआ का किसान जो है अधिकतर जंगल के पास का जो चारा होता है, जो जंगल में जो चारा होता है, उसी से उसी चारे को काटकर उसका प्रबंधन करता है। तो क्या ये चारा हमारे गाय भैंसों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा है या नहीं, और इसका प्रबंधन अगर कोई करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, आइए इसमें लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: किसान भाइयों, जो हमारा जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, इसके आसपास भी काफी लोग निर्भर रहते हैं पशुओं के चराई के लिए। अभी काफी जो फॉरेस्ट एरिया के ऑफिसर्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस करते हैं चरागाह फसलों के बारे में, तो किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं। वहाँ आपस में पार्टिसिपेटरी मेथड से जंगल के विभाग के साथ मिलके आप लोग उसका मैनेजमेंट अच्छा अगर करें, जिसमें आपका अंजन घास है, जहां पर जो बारिश है 400 से 500 मिलीमीटर कम से कम बारिश होती है, अंजन घास आप लगा सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान का एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, तो वहां पर आप सेवन घास जो होती है वो 200 मिलीमीटर की बारिश में भी अच्छी हो जाती है, और काफी साल तक आपको 8 से 10 साल तक उसको अच्छा चारा मिलेगा। और सेवन घास के तो 50 साल तक की हमने देखे हैं कि पहले भी लगाई हुई घास है उसकी फुटान अच्छी होती है, और वो काफी तेजी से उसके बीज फैलते हैं और काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो जंगल विभाग के आसपास के एरिया या जंगल के अंदर के एरिया जहां तक पशु चरने के लिए जाते हैं, उनको वहां से भी जो बीच का जो खाली स्पेस है पेड़ के बीच का, वो एक चरागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को जो चराई पर डिपेंड है, छोटे किसान है, भूमिहीन किसान है, उनको फायदा मिल सके।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने चारा प्रबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों और कौन सी किस्मों का चारा लगाना चाहिए और हमारे पशुओं को कौन सा चारा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कैसे पशुओं का देखरेख करना, और हमारे चारे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कौन सा चारा अच्छी किस्म का है, आदि जानकारियों को आपने जाना। साथ ही आपने जो किसान बागवानी करना चाहता है वो अभी उनके लिए जो उपयुक्त समय चल रहा है, और कौन से आम है, अमरूद है, इनके कौन से अच्छी किस्म के पौधे हैं, आदि जानकारियों को आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याभील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।
6: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से।
7: जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे।
6: आइए दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कलाकार प्रोग्राम में। ये मंच है नए टैलेंट्स का, नए गायिकाओं का, नए गायकों का, नए संगीतकारों का। और आज हमारे साथ जो टैलेंट मौजूद है हमारे साथ, उनका नाम है लीना जी। बाकी जाहिर है अगर लीना जी ही अपने बारे में बताएंगे तो जरा ज्यादा मजा आएगा। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
8: जी सर, पहले तो मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है लीना पवार और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ सर।
6: जी बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना, लीना जी एक हाउस मेकर है। उस काम को आसान ना समझिएगा, कभी करके देखिए दोस्तों, हवा निकल जाती है। इतना भारी भरकम काम होता है, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट उसमें लगता है जो कि किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में सिखाया नहीं जाता। चारों तरफ घर में सब चीजों का मैनेजमेंट करना, परिवार का मैनेजमेंट करना आसान काम नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, एक कॉलेज है अपने आप में। बहुत खूब। तो चलिए लीना जी, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपका ये गीत सुनते हैं। दोस्तों पेश खिदमत है।

0: बहुत बहुत ही प्यारी गायकी लीना जी, थैंक यू सो मच। लीना जी मुझे ये बताइए, आज तक की जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी असफलता, फेलियर क्या रही और उससे आपने क्या सीखा? आप बुरा ना मानिएगा, ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि हम एक दूसरे की कुछ गलत हो जाता है और फिर आप उस गलती से सीखते हैं तो हमें भी सीख मिल जाती है, इसलिए पूछा। जी, प्लीज बताइए
1: जी। असफलता ऐसे तो कुछ नहीं सर
0: जी,
1: बट ये बात का बुरा है लगता है कि मैं सिंगिंग में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई।

0: मतलब मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाई सही से, तो बस जो मैं 2019 में मैंने स्टार मेकर ज्वाइन किया
1: जी।
0: उसके बाद मैं सभी बड़े जो अपने लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनको सुन सुन के मैं जो उस पे कैराओके ट्रैक्स रहते हैं उस पे मैंने मतलब गाना गा गा के सुन सुन के ही मैंने जो भी आज जो मैं गा रही हूँ वो बस उसी की वजह से।
1: बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात लीना जी। मेरा बहुत बहुत दृढ़ विश्वास है इस चीज में कि जब कोई भी व्यक्ति एलिजिबल बनता है, पात्र बनता है किसी कला को पाने का, तो वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने आप से सीखता है। तब एक लेवल पर आने के बाद शिक्षक, टीचर, अध्यापक प्रकट होते हैं कि यार इस शख्सियत ने, इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है और एक मुकाम हासिल किया है, तो अब इसको आगे की शिक्षा दी जाए। आप चिंता मत कीजिए लीना जी, आप बिल्कुल सही राह पर हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप
0: धन्यवाद सर,
1: प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि आप इस चीज को प्यार करते हैं, तो बस लगे रहिए, चिंता मत करिए। बहुत खूब, चलिए दोस्तों फिर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जिसको लीना जी ने बहुत बहुत मेहनत से सीखा है, अपनी मेहनत से।

0: बहुत खूब। लीना जी, आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी प्रशंसा क्या मिली है, एप्रिसिएशन क्या मिला है?
1: सर, एक्चुअली मुझे सुनने वाले जो भी है मेरे फॉलोअर्स, तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
0: वाह।
1: और जी, और आप सुर में गाते हैं।
0: उन्होंने सच बोला है साहब, उन्होंने सच बोला है।
1: ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: क्या बात है।
1: जी,
0: इस संसार में लीना जी हर एक कोई सुनना चाहता है कि मतलब मुझे कोई सुने, और अगर उसके अंदर प्रतिभा है, अपनी आवाज को सही तरीके से इस्तेमाल करने की प्रतिभा है। आवाज हम लोगों को इस प्रकृति में सारी बाकी की प्रकृति से अलग करती है, क्योंकि हमारी आवाज हम मोल्ड कर सकते हैं, हम उसे घुमा फिरा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और जाहिर सी बात है इतने सारे लोग आपकी अगर इस बात पे प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि सारे लोग झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, उन्हें सचमुच अच्छा लग रहा होगा। जी
1: जी जी, मुझे गाने के साथ साथ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूब।
1: जी,
0: वो तो ठीक बात है लीना जी, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप गाएंगे कैसे? ये तो पहला पहला जो नियम है वो तो सुनना ही है, उसके बाद ही तो आप गा पाएंगे।
1: जी, बोला जाता है ना कि अच्छा तानसेन होने से पहले अच्छा कानसेन होना जरूरी है।
0: अरे वाह, क्या बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही साहब। आज तो एक नई चीज मिली मुझे, अच्छा तानसेन होने से पहले आपको अच्छा कानसेन होना जरूरी है। क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक इसी तरीके का प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत प्यारी गायकी। लीना जी, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए, जिन्होंने आपकी जिंदगी पर, आपके पर्सनालिटी पर, आपकी शख्सियत पर इन्फ्लुएंस डाला हो, आपको प्रभावित किया हो, आपको आगे बढ़ने में, अपने आप को सुधारने में मदद की हो, कौन है वो
1: जी? सबसे पहले तो मेरे पापा
0: जी।
1: ये उन्होंने मतलब कोई भी काम को छोटा नहीं माना, हमारे लिए बहुत मेहनत करके, हम तीन भाई बहन हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, अच्छा और अच्छी ट्रेनिंग सब ये किया। और मतलब मेरे पापा तभी, मतलब मैं स्कूल में जाती थी
0: जी।
1: तभी वो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम लिया वहीं पे
0: जी।
1: उनका जॉब छूट गया था पहले इसीलिए, तो फिर मतलब स्कूल वालों ने भी बोला कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में
0: जी।
1: तो आप कर पाएंगे यहाँ पे, कि उनको भी शायद थोड़ी शर्म आ जाए कि, या आपको भी थोड़ा अच्छा ना लगे
0: जी।
1: तो उन्होंने वही बोला था कि देखो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, और मैं कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे बच्चे भी बुरा नहीं मानेंगे इस चीज को
0: जी।
1: तो उन्होंने तभी वो भी काम किया वहाँ पे और किया हमारे लिए बहुत, वो चीज मैं नहीं भूलती हूँ। और दूसरी है मेरी बेटी, तो राजलक्ष्मी नाम है उसका
0: जी।
1: तो वो एक कम एज में भी बहुत समझदार है, और 8 साल की है तो भी वो समझदार है, मेरी सिंगिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट वो ही करती है, मेरे सॉन्ग सुनती है, खुश होती है।
0: वाह
1: जी।
0: जो तीसरा व्यक्ति?
1: और तीसरे तो बोलूंगी तो मैं जिन जिन के सॉन्ग सुन के, जो लेजेंडरी सॉन्ग जिनके जो सिंगर्स है उनके सुन के मैं अभी जो गा रही हूँ, मतलब उनके जब गाने सुनती हूँ तो उनके जो छोटी छोटी हरकतें वो सब सुनती हूँ मैं अच्छे से
0: जी।
1: जो किस बारीकी से उन्होंने गाना गाया है वो सब सुन के मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा गा पाऊँ, तो वो भी एक मेरे लिए, उनका बहुत प्रभाव है मेरे गाने पे या जो भी है जीवन पे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात। दोस्तों, आपने सुना, लीना जी अपने पिताजी से और अपनी बेटी से बहुत प्रभावित हैं, ये इनके सचमुच ट्रू मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जिन्होंने लीना जी को मोटिवेट किया है, बड़ी प्यारी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये गीत हम इनके पिताजी को, इनकी बिटिया को समर्पित करते हैं, और जाहिर से बात है वो लेजेंडरी सिंगर्स जिनको सुनकर लीना जी ने गाना सीखा उनको तो हमेशा ही नमन है। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गायकी। लीना जी, अपने आप को फिट और एक्टिव, सक्रिय रखने के लिए आप क्या तरीका अपनाती हैं, कैसे फिट रहती हैं आप?
1: जी, मैं मानती हूँ कि फिट और सक्रिय रहने के लिए अपने शरीर और मन दोनों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो शरीर के लिए तो हम लोग अच्छा, मतलब पौष्टिक खाना खाना, पानी भरपूर पीना, व्यायाम करना, वो तो करते ही है। मन के लिए भी थोड़ा अच्छे सॉन्ग सुनना, क्योंकि सॉन्ग सुनना, गाना, उसके वजह से कैसे माइंड रिफ्रेश रहता है, तो वो भी एक अच्छी बात होती है अपने खुद के लिए। तो मैं वही चीज करती हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं अपने को एक्टिव रखने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस आध्यात्म संगीत, उसमें ये बहुत बहुत जरूरी कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको हम अपनाएं तो बहुत कुछ हद तक हम अपने आप को एक्टिव और फिट रख सकते हैं। बहुत खूब बात कही। आगे बढ़ते हुए आइए दोस्तों, फिर हो जाए लीना जी की ही आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: क्या बात है। तो ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं लीना जी, मैं इसका बिल्कुल सच सच जवाब की उम्मीद करता हूं। डरिएगा मत, बताइएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। फर्ज कीजिए कि अगर रात को 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाए, सुबह 8 बजे तक के लिए, हमेशा के लिए, मतलब 8 बजे से 8 बजे तक, तो आपको क्या लगता है हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, किन किन पहलुओं में बदलाव आएंगे?
1: ये मतलब मेरे लिए आप बोल रहे हो ना सर?
0: आप और आपकी फैमिली के बारे में ही बता दीजिए, वही काफी होगा।
1: जी एक्चुअली मैं ना रात में ही गाना गाती हूँ स्टार मेकर पे
0: जी,
1: तो 8 बजे के बाद वगैरह, मतलब सब पूरा घर का काम वगैरह सुबह सब ये करके फिर रात में ही मुझे थोड़ा सुकून से टाइम मिलता है
0: जी।
1: कि मैं गाना गा सकूं, सुन सकूं पार्टी रूम में जो स्टार मेकर के, तो मेरे लिए वो बंद हो जाएगा
0: जी
1: अगर ऐसा हो तो
0: जी।
1: तो यही है बात है सर कि मुझे वही टाइम पे सही टाइम मिलता है गाना सुनने के लिए और गाने के लिए, गाना पोस्ट करने के लिए, तो वो मेरे गाने पे थोड़ा असर हो सकता है वो टाइप पे।
0: और आपकी फैमिली के लिए?
1: फैमिली के लिए सर तो फैमिली तो पास में ही है, तो उसके लिए इंटरनेट की कोई ये नहीं है ना सर, आवश्यकता तो नहीं है।
0: ओके, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा लीना जी, मैं बताना चाहूंगा और मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, मैं मानता हूं जब इंटरनेट बंद होगा तो बहुत विरोध होगा इस बात का, क्योंकि हमें
1: जरूर जरूर
0: आदत पड़ चुकी है, हमने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है
1: जी।
0: लेकिन बहुत बहुत
1: लेकिन सर बहुत बार ऐसे होता है कि इंटरनेट सेवाएं बंद भी पड़ जाती है
0: जी,
1: तो
0: क्या जिंदगी रुक जाती है?
1: नहीं रुकती है सर
0: जी,
1: कोई ना कोई हम लोग उसका ये तो निकाल ही लेते हैं ना, मतलब कॉल वगैरह सब बाकी तो चीजें होती ही है
0: जी।
1: तो ये तो आदत हम लोगों ने लगाई क्योंकि मोबाइल कंपनियों ने पहले तो डेटा सब फ्री दिया है बहुत सारा, तो उसके वजह से थोड़ा वो आदत लगी है सबको कि डेटा ज्यादा यूज करने की, और फिर उन्होंने अभी प्राइस भी हाइक कर दी, तो वो फिर भी खरीद ही रहे हैं ना उसके लिए
0: जी। हाँ बहुत खूब, तो चलिए दोस्तों।

0: काम रात की तरफ इंटरनेट से ही होता है, लेकिन अपने परिवार के संबंधों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत सारे लोग, मैंने सुना, देखा नहीं है, मैंने सुना, वो कितना सच्चा है मुझे पता नहीं, कि रात के एक एक दो दो बजे तक लोग इंटरनेट पर वेब सीरीज देख रहे हैं। तो अगर रात में दो बजे तक कोई इंसान जागेगा तो उसके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ पूरा जमाना बुरी तरीके से बीमार पड़ रहा है, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। मैं वो जानना चाहता था कि 8 बजे अगर इंटरनेट बंद हो तो क्या होगा।
1: मैं तो बोलना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा बंद होना चाहिए ताकि फैमिली थोड़ा साथ में अपना टाइम ले। इंटरनेट बंद है तो वो एक साथ बात करे, एक साथ बैठ के खाना खाए। तो मैं तो चाहती हूँ उल्टा बंद हो बीच बीच में, तो लोगों को मोबाइल साइड में रख के थोड़ा एक दूसरे के लिए टाइम मिल सके।
0: क्या बात है दोस्तों, लीना जी की बात सुनिए आपने, सोचिएगा। किसी को भी इस बारे में रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपना मनन करने की आवश्यकता है। चलिए
1: जी, अपना अपना सही है
0: जी। आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं लीना जी की ही आवाज में।

0: नीला जी, मुझे अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताइए, अपनी सहेली या दोस्त या मित्र जो भी हो उनके बारे में बताइए, वो कौन है और वो आपके सबसे अच्छे दोस्त भला क्यों है।
1: हाँ सर, मुझे SM में स्टार मेकर में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। दोस्त बोले बोलिए, भाई बहन बोलिए, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो मेरा सिंगिंग बहुत पसंद करते हैं, वो दिल से पसंद करते हैं।
0: जी
1: उनमें से ही एक रिंकू भाई करके हैं, वो मेरा, मैं जब भी सॉन्ग पोस्ट करती हूँ ना, वो तुरंत ही सुन लेते हैं और उनको बोलने की या शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अरे वाह,
1: तो जी, तो वो बहुत मतलब ऐसा सपोर्ट मिलता है ना सर, तो गाने के लिए भी मोटिवेशन मिल जाता है
0: जी
1: कि जी। तो ऐसे बहुत है, अभी ही मैं नाम किन किन के लिए ऐसा है
0: जी,
1: तो बट वो पहले रहते हैं इसलिए मैंने उनका नाम लिया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सारे लोगों का मानना कभी कभी ये भी होता है कि प्रशंसा कभी कभी किसी किसी इंसान को कुछ गलतफहमी भी दे देती है कि साहब मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हो गया हूँ, बहुत सीख गया हूँ। कुछ लोगों का मानना है ऐसा, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, आप आगे की जर्नी, आगे की यात्रा कैसे शुरू करेंगे। गौर कीजिए ना, हम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं, वो गलती करते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि कोई बात नहीं है, आप दोबारा कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उस प्रोत्साहन के चलते वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ भी तो सेम है।
1: सर मैं भी वही चाहती हूँ कि मतलब मेरे जो भी गलत मैं गा रही हूँ या कहीं पे गलत हो रहा है तो मुझे बताए कोई, तो मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। सर तो कोई भी 100% सही नहीं होता है, तो और म्यूजिक ऐसी चीज है कि आप जितना सीखो वो कम ही है।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: ऐसा कभी नहीं लग सकता कि हम 100% ही गा रहे हैं या हम पूरी शिद्दत से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम पूरा 100% ही गा रहे हैं ना सर।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: बस कोशिश करते रहना वो इम्पोर्टेंट है।
0: बहुत खूब। तो ये जो आपके मित्र हैं जो आपको फौरन सुनते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, क्या आप उन्हें हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे?
1: जरूर जरूर सर, जरूर।
0: तो चलिए साहब, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत लीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। लीना जी, हमारे सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए और आपके जैसे गायकों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगी उनसे आप?
1: जी सर, मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को पहले तो बहुत दिल से शुक्रिया, मुझे आपने दिल से सुना। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गाने से माइंड बहुत रिफ्रेश रहता है
0: जी।
1: तो आप सुनते रहिए, गाते रहिए। और ऐसा बोला जाता है ना कि व्हेन यू आर हैप्पी यू एंजॉय द म्यूजिक एंड व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही साहब, वाह
1: जी जी। तो संगीत ऐसी चीज है ना सर कि आपको सुख और दुख दोनों में भी वो चीज उतनी ही प्यारी लगती है
0: जी।
1: तो ये मेरा मानना है सर, तो बस गाते रहिए, खुश रहिए, सुनते रहिए
0: भाई। वाह,
1: और
0: जी
1: जी
0: कहिए कहिए।
1: बस यही सर कि आपको, समीर जी आपको, नितिन सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे गाने सुनाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और संतोष जी हैं, संतोष प्रसून सर, उन्होंने मुझे यहाँ ये आपके बारे में बताया है तो उनका भी बहुत शुक्रिया यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। तो
0: बहुत खूब लीना जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे प्रोग्राम में लीना जी को सुन रहे हैं। इसी तरह से गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू,
1: धन्यवाद सर।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।
3: नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड आज के कलाकार का। हमारे साथ जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर, जो गायक मौजूद हैं, वो हैं बिप्लव दत्ता जी बेंगलोर से। बाकी सारी की सारी बातें अभी हम बिप्लव जी से ही करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कौन हैं। तो बिप्लव दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। तो हमारे सभी सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: जी बिल्कुल, मेरा नाम बिप्लव दत्ता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम असम, बट काम के चक्कर में यहाँ पर बेंगलोर पे हूँ। अभी हो गया है काफ़ी साल यहीं पे रहा हुआ और बस ऐसे ही चल रहा है।
0: ऑलराइट, वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपने जाना, यूं तो बिप्लव असम से हैं लेकिन काम के सिलसिले में बेंगलोर रहते हैं और बहुत ही प्यारी गायकी करते हैं। चलिए ना उनके संगीत की, उनकी गीत की, उनके म्यूजिक का आनंद उठाते हैं और सुनते हैं ये प्यारे से गीत, और फिर हम वापस लौटते हैं बिप्लव के पास।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गायकी विप्लव, अमेजिंगली अमेजिंगली गुड।
1: शुक्रिया
0: विप्लव। मुझे आपके, आपको समझने के लिए आपके संगीत के बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे, संगीत सुन भी रहे हैं तो बहुत कुछ तो वहीं से पता चल जा रहा है, वो भी हम पूछेंगे आपसे, लेकिन पहले आपके बारे में जान लेते हैं जरा। तो जब आप छोटे बचपन में थे आप छोटे थे है ना
1: जी,
0: तो आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या सोचते थे कि मैं बड़े होकर ऐसा बनूंगा? किसी को देखा होगा, किसी को आपने रोल मॉडल तय किया होगा, क्या बनना चाहते थे आप बड़े होके?
1: जी हाँ, मतलब मैं क्लास फोर फाइव से ही मुझे थोड़ा सा संगीत से लगाव था, क्योंकि असम से हूँ तो जुबिन गर्ग जी जो हैं वो तो हम लोग सभी लोगों का आइडल है, तो इसीलिए बस उन्हीं को ही सुन के जो भी है जैसा भी है पहले वैसे ही गुनगुनाते थे छोटे स्टेज पे, जैसे कि हम लोग का वहाँ पर छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम होता था वहाँ पर जाते थे और साथ में अपना पढ़ाई जो भी है पूरा कंटिन्यू करते थे। लेकिन क्या है, फिर मेरा घर पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जैसे कि मेरा फादर एक्सपायर हो गया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अपना म्यूजिक का जो जर्नी है उसको क्लोज करना पड़ा था। लेकिन फिर भी बीच बीच में बस ऐसे ही गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं जब भी मन करे।
0: तो बचपन में आप सिंगर ही बनना चाहते थे ऐसा बोल रहे हो आप?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: ओके ओके, और फिर उसके बाद आपने जो भी पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत करी, उसके बाद आप हाँ। अपने काम में लग गए, यही जी, बात जी। हुई ना?
1: जी हाँ।
0: तो अगर आपको मैं पूछूं, यूं तो खैर आपका थोड़ा बचपन मुश्किलों में गुजरा है ऐसा लगता है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी आपको अपने बचपन की कोई बड़ी प्यारी सी क्यूट सी कोई शैतानी याद है तो हमें बताइए ना।
1: वैसा शैतानियां तो हाँ, मेरी दो बहन है तो मतलब वही थोड़ा सा छेड़खानियां हो गई थी बहन के साथ ही, तो मुझे पापा पूरा एक दिन बाहर ही खड़ा करके रखा था।
0: That is so nice. तो अभी
1: मतलब हम लोग का घर पे एक डॉगी था, तो पापा मुझे डायरेक्ट बोला था कि तुम डॉगी के साथ ही रहना है एक
0: दिन। डॉगी के साथ सोना होगा आज आपको।
1: लेकिन सो तो नहीं पाया, लेकिन उसके साथ ही बस पूरा रात भर दिन भर पूरा बिता लिया था।
0: चलो बॉस, मतलब लेकिन देट वॉज क्यूट, और ठीक है यार बचपन में ये सारी की सारी शैतानियां होती है, ये बड़ी अच्छी लगती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विप्लव के ही गाए हुए इन प्यारे से गीतों का जरा आनंद उठाइए, तब हम वापस लौटते हैं विप्लव को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए। सुनिए ये गीत।

0: करना है। बहुत बढ़िया विप्लव, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुली सॉन्ग, बहुत ही प्यारी गायकी विप्लव। आगे बढ़कर आपके ही बारे में मुझे अगर थोड़ा सा और जानना हो तो पूरी जिंदगी में संगीत के अलावा, देखिए संगीत तो आपको पसंद ही है, गायकी तो आपको करनी है और वो तो आपकी लाइफ फोर्स है, लेकिन फिर भी संगीत के अलावा ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, कोई ऐसी चीज जिससे आप खुश हो जाते हो बस संगीत के अलावा?
1: जी हाँ, वैसे तो खुश करने वाला मेरा और एक चीज है जो मैं अपने मम्मी से सीखा है।
0: That's nice.
1: हैंड एम्ब्रॉयडरी।
0: ओह वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल।
1: जी okay, हाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो गया, फिर आपका क्रोशिया जो होता है, क्रोशिया का जो वर्क रहता है वो भी मुझे काफी मतलब आता है मुझे।
0: okay.
1: तो वैसा ही ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह भी कभी कभी मिल जाता है तो वो भी कर लेते हैं। और स्पेशली क्या है, जो बाल गोपाल जी होता है हम लोग का घर पे, तो उनका जो पोशाक होता है स्पेशली ठंडियों का मौसम के लिए, वो लिन वाला जो पोशाक होता है वो सब भी मैं मतलब बना लेता हूँ।
0: ओह वाओ, अरे यार दैट इज सो अमेजिंग। ये तो जी, एक गजब की स्किल है जो बहुत मुश्किलों से लोगों के पास होती है। वाओ दैट इज सो ब्यूटीफुल। अरे यार ये तो सुनकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। इस तरीके की कोई भी स्किल अगर हम लोग डेवलप कर लें दोस्तों, थिंक अबाउट इट, कितना मजा आए, अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय करने में वैसे भी बहुत मजा आता है।
1: जी हाँ, कभी अभी यहाँ पर तो बेंगलोर पे अकेले रहता हूँ तो कभी कभी मन करे तो वही कान्हा जी का, हम लोगों का घर पे भी बाल गोपाल जी का है तो अपने भगवान के लिए ही बना लेता हूँ पोशाक एक दो, तो वो यहाँ से भेज देता हूँ घर पे।
0: अरे वाह, दैट्स नाइस, खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, विचार कीजिए आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और तब तक हम लोग इन प्यारे से गीतों का मजा लें, एंड देन वी शुड कम बैक अमेजिंग।

0: बहुत खूब विप्लव भाई। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके संगीत की बात कर लेते हैं।
1: जी,
0: संगीत में आपने कोई ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो जब आपने गाना गाया हो, अपना गीत पेश किया हो, चाहे वो स्टेज पर हो, चाहे वो किसी महफिल में हो, चाहे कहीं आप बस में हो, ट्रेन में हो, आप गुनगुना रहे हो, कोई ऐसा मोमेंट जब चारों तरफ अचानक आप मस्त हो अपने आप में और अचानक लोग बाग आपकी तारीफ करने लगे, ताली बजाने लगे और अचानक आपको लगे अरे मैं कहाँ खड़ा हूं और मैं गा रहा था, एंड तब आपको बहुत मजा आया हो, कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको?
1: हाँ, वैसा एक प्यारा सा मोमेंट मुझे अभी भी याद है। मैं फर्स्ट टाइम जब बेंगलोर पे यहाँ पर आया था, तो फर्स्ट मैं जॉब पे ज्वाइन हुआ था, तो स्टार्टिंग में तो कोई मुझसे इतना ज़्यादा बात नहीं करता था, मैं भी नहीं करता था क्योंकि मैं भी नया हूँ यहाँ पर, अनजान लोग, अनजान शहर, तो बस अपना काम पे पूरा अपना धुन पे मगन था, काम भी कर रहा था और साथ में मतलब ऐसे ही मन ही मन गुनगुना रहा था। तो मेरा साथ में ही काम करने वाली एक स्टाफ आ गई, तो वो बोले कि वाओ आप तो बहुत ही अच्छा सिंगिंग कर रहे हो, क्या आप जोर से गुनगुना दो कि ताकि हम सभी लोगों को सुनाई पड़े।
0: अच्छा।
1: तो मैं सडनली हाँ ठीक है चलो फिर मैं गुनगुना देता हूँ, चिल्ला चिल्ला के ही गुनगुना देता हूँ। और बेस्ट क्या है पार्ट, उसने हम लोगों का जो मैनेजर था, मैनेजर नहीं थे, तो सडनली मुझे अच्छा लग गया कि यार मुझे तो आज गाने के लिए मौका मिल जाए तो गुनगुना लेता हूँ, चिल्ला चिल्ला के पूरा गा लेता हूँ, गुनगुनाना क्या है क्योंकि आज बॉस भी नहीं है तो पूरा फुल फ्रीडम पे गा सकते हैं। तो गाए तो सभी लोग पूरा इकट्ठा हो गया, सुनने लग गया, तो फिर सभी लोग पूरा अप्रिशिएट किए कि वाओ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग का ऐसा एनुअली एक फंक्शन होता है, तो उसके लिए स्पेशली मुझे बोला कि सिंगिंग कर लो अच्छा लगेगा, तो मेरे साथ ऐसे ही मतलब पूरा सरप्राइज हो गया था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही।
0: That's very nice. That is so cute. मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि एक आध मैंने, मैं तो गायक नहीं हूँ लेकिन मैंने कई बार देखा कि ट्रेन में वैसे तो वो भिखारी वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी उनमें भी बहुत जबरदस्त टैलेंट होता है।
1: जी,
0: और वो कुछ गा रहे थे और बहुत प्यारे ढंग से गा रहे थे और सब लोग बहुत प्यार से सुनते रहे और उसके बाद सब लोग बहुत जबरदस्त क्लैपिंग की। खैर उसको ऑलरेडी मालूम होगा शायद कि ऐसे ही उसको करना है, बट दैट वाज अमेजिंग। मैंने ऐसी सोच रहा था कि जस्ट इन केस उसका इंटेंशन अगर भीख मांगना ना होकर वो अपने में मस्त होकर गा रहा होता तो उसको कितना अच्छा लगता।
1: सही बात,
0: वो चीज मुझे याद आ गई इसलिए मैंने आपसे पूछा। वाह, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए तो फिर बहुत प्यारे से इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन वी शुड कम बैक।

0: प्यार।
1: बहुत बढ़िया। आपने अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल लेसन, यानी कि कोई सबक जो आपने सीखा हो, सबसे मुश्किल अपनी पूरी जिंदगी में, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। व्हाट डिड यू लर्न, क्या सीखा आपने जो बहुत मुश्किल से सीखा हो?
2: जी, वैसा तो मुश्किल सबक मेरा जब पापा का देहांत हो गया था, तभी मुझे सबसे बड़ा मुश्किल सबक मिला था, क्योंकि मुझसे जो छोटी बहन है उसका पढ़ाई, और उस टाइम पे मेरा भी पूरा पूरा पढ़ाई, उसके बाद घर चलाना, मम्मी तो अकेले पड़ गई थी पापा जाने के बाद,
1: ऑफ कोर्स,
2: तो पूरा घर का खर्चा वगैरह सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया था। तो तब मुझे पता चला कि घर पे बड़े बुजुर्गों का रहना कितना जरूरी है, और पैसा, मतलब लोग यहाँ पर क्या है, कुछ लोग होते हैं जो घर वालों के पैसे से पूरा मौज मस्ती करते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो मुझे अपना लाइफ से जो सबक से मतलब सीखने के लिए मिला, मैं वो बस बोल रहा हूँ।
1: वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन चीजों का वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हमारे जिंदगी में जब हम सीखते हैं तो।
2: जी जी,
1: बहुत खूब जी, कहिए कहिए, आप कुछ कह रहे थे।
2: जी हाँ, तो मेरा पापा जब एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरा पढ़ाई भी था तभी, उसके बाद मेरा छोटी बहन जो थी उसकी भी पढ़ाई हो रही थी, तो मैं तो तब कॉलेज पे था, तो मैं क्या करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, कॉलेज से जाता हूँ, कॉलेज से आके एक पार्ट टाइम जॉब करता था रात को 9-10 बजे तक, तो उसका जो भी होता है, जैसा भी होता है, बस तनख्वाह जो भी मिलता है उसी से ही बस घर चलाता था, और मम्मी भी वही थोड़ा सा सिलाई वगैरह जो भी है एम्ब्रॉयडरिंग का वो भी करती थी मम्मी, तो ऐसे ही बस खींचा तानी करके चल रहा था।
1: तो आसाम में, आपने बताया कि आप आसाम से हैं।
2: जी हाँ।
1: आसाम में कहाँ से, मतलब आसाम में तो बहुत सारे शहर हुए ना, सबसे पहला हाँ, तो आप गुवाहाटी ही हो गया।
2: जी हाँ।
1: तो कौन सा, डिब्रूगढ़, कौन सी जगह?
2: जी नहीं, मैं जोरहाट से हूँ।
1: हाँ, ऑल राइट।
2: जी
1: हाँ हाँ, तो वही। ओके, सो दोस्तों, इस तरीके की जो मेहनत होती है ना, वो हमें एक बहुत बेहतर इंसान बनने में मदद करती है, और हमारे विप्लव भाई के साथ यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन वी शुड कम बैक।